सुप्रभात FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास के 27वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026, प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सेवा आरंभ हो रही है।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुन सकेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बनेगा।

0: यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 500,000 आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। समय है चिंतन का। आज सुनिए अनिल कुमार भारती के वाचन स्वर में दृढ़ता विषय पर चिंतन।
3: दृढ़ता क्या है और व्यक्तित्व के लिए इसका क्या महत्व है, इसे समझने के लिए हमें पहले 2-3 बातों को समझना होगा। दृढ़ होने का कतई ये अभिप्राय नहीं है कि आप दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव रखें या उन्हें डराने धमकाने का कार्य करें। दृढ़ होने का अभिप्राय है दूसरों के अधिकारों का हनन किए बगैर अपने अधिकारों के लिए डटे रहना। इसका तात्पर्य यह है कि आप स्पष्ट रूप से ये संदेश देते हैं कि आप अपने और दूसरे दोनों की भावनाओं और अधिकारों के प्रति सम्मान रखते हैं। ये व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्म छवि का अभिन्न अंग है। दृढ़ता को एक तरह से व्यक्ति के मतों और आवश्यकताओं की ईमानदार अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। हम में से अधिकांश की सोच और काम करने का तरीका उन प्रभावों पर निर्भर करता है जो जीवन के शुरुआती वर्षों में हमारे मन पर पड़ते हैं। इन प्रभावों का एक बड़ा हिस्सा हमारे परिवार और आसपास के माहौल का होता है। अगर किसी को बचपन से ही बोलने पर निरुत्साहित किया गया हो तो बोलने या कुछ भी पूछने से घबराना उसके व्यक्तित्व का स्थायी गुण बन जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि अक्सर ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों या हितों की अनदेखी होती है और वो चाहने पर भी कुछ नहीं कह पाते। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो दृढ़ता से अपनी बात कहने की आदत विकसित करें। किसी काम के लिए नहीं कहने में घबराएं नहीं और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने दिमाग से नकारात्मकता को हटाने का प्रयास करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो काम की शुरुआत ही हिचकिचाहट के साथ करते हैं। जब भी वे किसी बात पर अपना मत व्यक्त करते हैं तो उनकी आवाज बहुत हल्की हो जाती है और शारीरिक हाव-भाव में भी एक तरह की अनिश्चितता आ जाती है। इससे निपटने के लिए आवश्यक है कि किसी भी कार्य का आरंभ दृढ़ निश्चय के साथ करें। अगर दूसरा किसी कार्य के लिए कहता है और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो साफ तौर से ना कहने में हिचकिचाएं नहीं। साथ ही ऐसा करके मन में अपराध बोध महसूस न करें, बल्कि दूसरे को स्पष्ट रूप से इसका कारण भी बता दें। दृढ़ता का अर्थ यह है कि अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप अपनी बात पर कायम रहें, फिर भले ही आप पर किसी भी प्रकार का सांसारिक दबाव हो। दृढ़ता और आत्मसम्मान का आपस में गहरा संबंध है। आत्मसम्मान की कमी दृढ़ता की अनुपस्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए अपने रुख पर कायम नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं इससे दूसरा नाराज ना हो जाए। इस तरह के दृष्टिकोण के कई नुकसान हो सकते हैं। इससे दूसरे आपकी असाधारण क्षमताओं या योग्यताओं को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते। ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दृढ़ता संभवतः मानवीय व्यक्तित्व की परिचायक है। यद्यपि दृढ़ता से किसी अवसर पर आपको या दूसरों को सक्षमता का अभाव हो सकता है, किंतु दीर्घावधि में ये सदैव लाभदायक होती है।
2: अनिल कुमार भारती के वाचन स्वर में अभी आप सुन रहे थे चिंतन। विषय था दृढ़ता। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम का आरंभ करते हैं मातृभूमि वंदन से। देश हित ही स्वहित स्वकल्याण हो ध्येय जिसका, ऐसे मातृभूमि के रक्षक को मेरा बार बार नमन है। और मातृभूमि की मिट्टी को भी मेरा नमन है जिसने ऐसे बलिदानी और वीर पुरुषों को जन्म दिया है।

और अब ये वंदन वाणी जयराम के स्वर में गिरधारी मोहन सांवरिया को स्मरण करते हुए। तेरी दहलीज को छूने भर से ही कमाल हो गया, मेरे आंसू से बरसे मोती पर बस तेरा ही नाम हो गया। मेरे जीवन की शाम ढलते ढलते सुबह बन गई, मेरी हर सांस पे सांवरिया तेरा नाम हो गया।

गुरु ज्ञान की ज्योति है, जिनसे मिले प्रकाश। गुरु है कृपा का हाथ, सदा रखिए गुरु पर विश्वास। वंदना की इस प्रस्तुति में आइए सुनते हैं ये शब्द।

आइए करते हैं उस अभूतपूर्व क्षण का अनुभव जब प्रभु मुस्कुराहट लिए हुए बाल रूप में समक्ष आ खड़े हुए हैं। तुलसीदास कृत इस रचना को स्वर दिया है पंडित भीमसेन जोशी ने।

जब जीवन की राह में अंधेरा घिर जाए तो प्रभु नाम ही दीप बन जल जाए। वो दीन दयाल प्रभु करुणा के सागर, उनकी शरण में कोई दुख कहाँ टिक पाए। इसी भावना के साथ वंदना की अगली प्रस्तुति में सुनते हैं मोहम्मद रफी का स्वर, रचना पंडित रामचंद्र बगुरा की, भावना निस्वार्थ निश्चल जीवन जीने की प्रेरणा। आइए सुनते हैं ये भजन।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति।

पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, न ही उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरद्वाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर।

हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज रात्रि 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम साहित्यिकी के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर नीता कुकरेति द्वारा काव्य पाठ मेरे लाल। ये कहानी आप तक पहुंचेगी राजीव वर्मा द्वारा, और गुरु अर्जुन देव का जीवन दर्शन, इस विषय पर आप सुनेंगे हमारे वार्ताकार ज्ञानी रोहताश सिंह द्वारा वार्ता। रात्रि 8:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल।

संध्या 7:50 का समय रहेगा विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार का। किसान भाई अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे शाम 7 बजे। आज के कार्यक्रम में श्री पवन कोठारी से होगी भेंटवार्ता, जिसका विषय होगा खेतों में व्यावसायिक गतिविधियां। संध्या 5:45 पर आप तक पहुंचेगा पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत। कार्यक्रम में आज प्रसारित होने वाली लोक कवि गोष्ठी में भाग लेंगे हेमवती नंदन भट्ट, मुकेश हटवाल, संजय सती और इंद्रमणि थपलियाल। युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:10 पर। शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज जानेंगे अभिनेता और निर्माता मिथुन चक्रवर्ती को।

शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार अता हुसैन खान द्वारा झप ताल और तीन ताल पर तबला वादन सुनिएगा। मेजर विवेक सिंह भंडराल के बारे में जानेंगे दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। दिन में 1:30 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। दिन में 12:30 पर महिला जगत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर चंद्रा पंत से गीता राणा की स्वास्थ्य भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा बच्चेदानी में रसौली, कारण, लक्षण और इलाज।

0: दिन में 12:12 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे अवधेश कौशिक के गाए गीत। 10:35 का समय रहेगा लोक संगीत के कार्यक्रम का। आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में गुजराती लोकगीत। 9:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी। 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। शैल संगीत के कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 7:30 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कलाकार शांति बिंजोला के गाए कुछ गढ़वाली लोकगीत। अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत लोक रसधार। 9:05 पर होंगे सदाबहार फिल्मी गीत। पूर्वान 11:00 होंगे आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर गीत। 1:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा। 3:02 पर होंगे गाने नए तराने। 7:40 पर फिल्म संगीत और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीत। श्रोताओं, ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। प्रातः के 6:55 होना चाहते हैं। कुछ ही क्षणों में आप हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः सम्बन्धः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्यानन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र 11 संधिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनम् संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बन्धानाम् उन्नतिः सह विश्वासानाम् प्राथमिकतानाम् भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायाम् यात्रायाम् श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरम् कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। 50वें G7 शिखर सम्मेलनम् ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानाम् अर्थव्यवस्थानाम् नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयम् कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह जी सेवन देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं, नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं, भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिक सहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोक सेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिकपरीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एविया पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय पर रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। केंद्र ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के संबंध में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। कार्बो काडो करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बादल फिल्म में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसविंदर नरूला और अनमोल मलिक को। संगीतकार थे अनु मलिक और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। लोक रसधार में अगली प्रस्तुति फिल्म नौकर से, स्वर है आशा भोसले और किशोर कुमार के।

0: ये था कार्यक्रम लोक रसधार। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। समय है उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में सहकारिता विभाग के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा, राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने केदारनाथ यात्रा से जुड़ी भ्रामक सूचना और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊधम सिंह नगर के बागवाला क्षेत्र में निर्मित 1800 से अधिक आवासों को आवंटन जल्द किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नए पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से जुड़ी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण, दस्तावेज प्रबंधन, शिकायत निवारण, नामांकन सत्यापन, ऑडिट प्रबंधन तथा MIS रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉ. रावत ने चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। नवनियुक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने प्रत्येक विकासखंड में सहकारिता नेटवर्क को मजबूत बनाने का आह्वान किया। डॉ. रावत ने बताया कि सरकार प्रत्येक विकासखंड में एक सहकारिता ग्राम विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार ने केदारनाथ यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने तथा ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं और मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में आयोजित बैठक में श्री जोशी ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा। उन्होंने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, शटल सेवा, यातायात और पार्किंग व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील स्थलों पर आवश्यक मशीनरी तथा राहत और बचाव संसाधनों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। टिहरी गढ़वाल में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय 25 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने वन विभाग को पिरुल संग्रहण के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीमती अग्रवाल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2: 25 सूत्रीय कार्यक्रम एक चल रहा है जिसमें जनपद को विभिन्न विभागों में अलग अलग कार्य के लक्ष्य दिए जाते हैं, उसकी प्रतिपूर्ति के संबंध में बैठक ली गई। विभिन्न विभागों को निर्देश दिए गए कि वो टाइम से लक्ष्य को पूर्ण करेंगे और उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें उपलब्ध कराना चाहिए। किसी लक्ष्य को पूर्ण करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी टाइमली फ्लैग करेंगे ताकि उसको रिजॉल्व कराया जा सके।
1: राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लगभग 24,000 आवेदनों में से करीब 22,000 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। बैठक में बच्चों के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को सभी विकास खंडों के टीकाकरण संबंधित आंकड़े स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि प्रत्येक बच्चे का समय से टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ऊधम सिंह नगर जिले में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। जिले के बागवाला क्षेत्र में लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1800 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। श्री किशन ने कहा कि बागवाला में बनाए गए फ्लैट लगभग तैयार हैं और उनका आवंटन जल्द शुरू किया जाएगा।
4: 1872 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, ये हमारे फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। आपके माध्यम से जितने हमारे लाभार्थी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपने इंस्टॉलमेंट जो भी निर्धारित है, जैसे 3 लाख रुपए प्रति लाभार्थी निर्धारित है, वो अपने इंस्टॉलमेंट दे दें, ताकि हम उनकी रजिस्ट्री और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और इसके अलावा उनको फिजिकल पोजेशन फ्लैट का दे सकते। इसके क्रम में हम लोग लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं दूरभाष के माध्यम से एवं पत्र के माध्यम से भी, ताकि जल्द से जल्द जो लाभार्थी अंश है वो हमें प्राप्त हो और हम आगे की कार्रवाई कर सकें।
1: आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि ये योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
5: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। उत्तरकाशी जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और निर्वाचन अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री आर्य ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुगम और त्रुटि रहित बनाने में डिजिटाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय बद्ध रूप से पूरा करने का आह्वान किया। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी सभी अभिलेखों और प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित प्रभारियों का कार्य में तेजी लाने तथा इसकी दैनिक प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमेरिका ईरान में समझौता की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी हुई है। अमर उजाला लिखता है अमेरिका ईरान में युद्ध विराम करार, हुरमुज जलमार्ग खुलेगा। दैनिक जागरण ट्रंप के हवाले से लिखता है दोनों देशों ने 107 दिन पुरानी जंग खत्म करने के लिए समझौते को दिया अंतिम रूप। देहरादून के बैरागीवाला में भाजपा नेता की हत्या पर हिंदुस्तान की सुर्खी है बैरागीवाला बवाल में 150 लोगों पर केस और एक गिरफ्तार। देहरादून के लच्छीवाला नेचर पार्क पर नवोदय टाइम्स का शीर्षक है एक दिन में 7,500 पर्यटक आए, 6 लाख से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में सहकारिता विभाग के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। कहा राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने केदारनाथ यात्रा से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊधम सिंह नगर के बागवाला क्षेत्र में निर्मित 1800 से अधिक आवासों का आवंटन जल्द किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: सवेरे के 7:30 हुए हैं। शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए शांति बिंजोला के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ ढोलक संगत पर हैं सतेंद्र सिंह, तबला पर सैकत मंडल, हुड़का पर रामचरण जुयाल, बांसुरी के साथ सौरभ कुमार और हारमोनियम पर सुरेंद्र सिंह।

0: श्रोताओं, शैल संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं शांति बिंजोला के गाए कुछ गढ़वाली लोकगीत।
1: पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।

श्रोताओं, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से आप सुन रहे हैं शैल संगीत का ये कार्यक्रम। आज आप तक पहुंच रहे हैं शांति बिंजुला के गाए गढ़वाली लोकगीत।

शांति बिंजोला के स्वर में अभी आप आनंद ले रहे थे गढ़वाली लोकगीत का, जिनके साथ ढोलक संगत पर थे सतेंद्र सिंह, तगला पर सैकत मंडल, हुड़का पर रामचरण जुयाल, बांसुरी के साथ थे सौरभ कुमार और हारमोनियम पर सुरेंद्र सिंह। शैल संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 87।
2: हम आकाशवाणी।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
5: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
5: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा। वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से

0: 70 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor.
2: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Mr. dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
1: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future."
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Slovakia has filed this report.
4: Several historic decisions with the potential to significantly strengthen India-Slovakia relations were taken during the Prime Minister's visit to Bratislava. 11 MOUs were signed yesterday during Prime Minister Narendra Modi's visit.

नमस्कार। देहरादून के इस अंक को लेकर हाजिर है आपकी आज की रेडियो होस्ट शिखा दीक्षित। स्वीकारिएगा हार्दिक अभिनंदन और दिल से एहतराम। जहां सूर्य की किरणें पहुंचे वहां अंधकार दूर हो जाता है, जहां प्रेम की भाषा बोली जाती है जग परिवार हो जाता है। श्रोताओं, प्रेम की अपनेपन की भाषा दिल से बोली जाती है और अपनेपन से बंधे हुए रिश्ते फिर जाति धर्म नहीं देखा करते, दिल से जुड़ जाते हैं। चाहे कितनी भी दूर रहें, जैसी ही ज़रूरत होती है समय मिलता है, एक दूसरे के साथ खड़े आते हैं नज़र। सच्चे रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती है वादे और शर्तें लगाने की, बस दो खूबसूरत से दिल चाहिए और उनमें से एक निभा सके और दूसरा इस रिश्ते को समझ सके।

श्रोताओं, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को मात्र देखने भर से हम ऊपर से दिखने वाली दुनिया की बस कल्पना कर सकते हैं। वहां से मंजर कैसा दिखेगा ये तो वहां जाकर ही पता चलता है ना। और इन ऊंचाइयों पर पहुंचे लोग ही सफल होकर रच डालते हैं इतिहास। इतिहास के पन्नों पर दर्ज तारीखों में वो लोग और उनकी कहानियां लोग हमेशा याद रखते हैं। आइए डालते हैं आज यानी 16 जून के इतिहास पर एक नज़र और जानते हैं क्या है खास आज के इतिहास में। 16 जून साल का 167वां दिन है, अपने आप में विभिन्न विशेष घटनाक्रमों को समेटे हुए। सन 1606 में आज ही के दिन जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को लाहौर में भयंकर यातना देकर मार डाला गया था। 1858 में आज ही के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई थी। 1983 में हुई थी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना। 2006 में 16 जून को नेपाल में माओवादी सरकार में शामिल होने पर सहमत हो चुके थे। 16 जून 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी थी। 2008 में आज ही के दिन मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फिराक गोरखपुरी पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें आज के दिन जन्म लेने वाली कुछ मशहूर हस्तियों के बारे में तो सन 1936 में 16 जून को जन्मे थे उर्दू के मशहूर शायर अख़लाक मोहम्मद खान शहरयार। 1920 में 16 जून की तारीख में जन्म लिया था हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने और 1950 में जन्मे थे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता मिथुन चक्रवर्ती। 16 जून 1956 को जन्म लिया था प्रसिद्ध साहित्यकार सुरेश कांत ने और 1918 में आज ही के दिन जन्मे थे स्वतंत्रता सेनानी और दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश। कुछ महान हस्तियां जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया से विदा ली थी वो हैं रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाने वाले भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था 16 जून 1944 के दिन। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का 1925 में आज ही के दिन निधन हुआ था और भारतीय सिने अभिनेता चंद्रशेखर का निधन हुआ था 16 जून 2021 में। श्रोताओं, ये थी आज के इतिहास पर एक नज़र और अब लीजिए सुनिए हेमंत कुमार की आवाज़ में ये गीत और इस गीत के माध्यम से आइए करते हैं उन्हें उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित।

अभी आपने सुना हेमंत कुमार के संगीत और स्वर से सजा हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म 20 साल बाद से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज। ये दिन मनाया जाता है उन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिकों के योगदान के सम्मानित करने के लिए, जो माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में विदेशों में रहकर अपने परिवारों और देश के विकास के लिए पैसे भेजा करते हैं। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता भी दी गई है। श्रोताओं, जीवन की इस बहुत सुंदर यात्रा में कुछ रिश्ते दूरी के बावजूद दिलों से जुड़े रहते हैं। अपने परिवार की ज़रूरतें, उनके अच्छे भविष्य की कामना और मेहनत करने का जज्बा उन्हें अपने परिवार से दूर ले जाता है। तो कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो हमारे घरों की व्यवस्था और देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का दिन उन हाथों को सलाम करने का दिन भी है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाकर घरेलू कामगारों के श्रम, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। श्रोताओं, कामकाज की तलाश में दूर गए कदम हो या अपने घरों में हमारे हाथ बटाते कुछ हाथ, आइए हम उन सभी लोगों के प्रति ये कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हम उनके आभारी हैं। उनके परिश्रम से परिवार की खुशियां और सपने जुड़े हुए हैं।

बाहर गए कामगारों के मन के भावों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेषित करता आनंद बख्शी की ये रचना वाला गीत, जिसे संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, स्वर पंकज उधास का, फिल्म का नाम था नाम। श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है आज के अखबारों की सुर्खियां। उत्तराखंड में सहकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई। डॉक्टर धन सिंह रावत ने निबंधक सहकारी समिति कार्यालय के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। सांस्कृतिक नगरी में 7 दिवसीय जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का आगाज विभिन्न शिक्षण संस्थानों की मार्च पास्ट के साथ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। सीएम ने 110.55 करोड़ की विभिन्न 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही जय कंडोलिया महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया। कैंची धाम में सोमवार सुबह 5 बजे बाबा नीप करोरी महाराज को भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए बाबा का द्वार खोल दिया गया। दिनभर तपती धूप के बीच श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा का आशीर्वाद और मालपुए का प्रसाद लेने 1,20,000 श्रद्धालु मंदिर परिसर पर पहुंचे। रात 8 बजे गेट बंद कर दिए गए। श्रोताओं, ये थी आज के अखबारों से ली हुई कुछ सुर्खियाँ। और अब अगर हम बात करें किसी ऐसे अभिनेता की जिसे ऊर्जा, प्रतिभा, अभिनय और राजनीति की छवि में बांधा जाए, तो नाम आगे आएगा मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। ये आज अपना 76वां दिन जन्मदिवस मना रहे हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आए मिथुन को भारतीय सिनेमा में अपने अतुलनीय योगदान के लिए देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं और वर्तमान में सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। 1976 में फिल्म मृग्या से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले मिथुन दा ने डिस्को डांसर, अग्निपथ, जल्लाद जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हालिया फिल्मों में द कश्मीर फाइल्स उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। उन्होंने हर बार साबित किया है कि मेहनत और आत्मविश्वास से सपनों को हकीकत बनाया जाता है। आइए सुनते हैं ये गीत और इस गीत के माध्यम से करते हैं मिथुन चक्रवर्ती को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित।

0: प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म में अभी आप सुन रहे थे बप्पी लहरी और आशा भोसले की युगल आवाजों में ये गीत, जिसे संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और बोल थे इंदिवर के।
1: लाइफ फास्ट मोड पिच और लाइफ घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: तो श्रोताओं, आइए आज के दिन के पलों को शिकायतों में नहीं, संकल्पों और मुस्कान में बदल दें, क्योंकि समय अगर साथ दे तो ज़िंदगी भी मुस्कुराने लगती है। और इसके साथ ही मत भूलिएगा कि बेहद कीमती हैं आप। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और शिखा को दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए अब कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार, देहरादून।

आप आनंद ले रहे थे सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का। प्रस्तुति थी आकाशवाणी के देहरादून केंद्र द्वारा। अब श्रोताओं 9 बजे हैं, सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

0: नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी समाचार देहरादून के साप्ताहिक कार्यक्रम जिले की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मलिक। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग जिले की चिट्ठी की। आलेख है विनय बहुगुणा का। चिट्ठी में बातचीत होगी श्री केदारनाथ धाम में उमड़ रही आस्था, भक्ति और उल्लास के सैलाब की। केदारनाथ यात्रा नए आयाम स्थापित कर रही है। वहीं द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की यात्रा में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उधर जून के दूसरे सप्ताह में कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी गणेश जोशी ने जिले का भ्रमण कर आम जनता से संवाद किया। इसके अलावा विकास योजनाओं की समीक्षा भी की है। तो चलिए चिट्ठी में सबसे पहले बातचीत करेंगे चारधाम यात्रा की। 22 अप्रैल से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा नए आयाम स्थापित कर रही है। कपाट खुलने के दिन से ही धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कपाट खुलने के दिन धाम में रिकॉर्ड 38,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। वहीं मई में प्रतिदिन 25 से 28,000 श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। पूरे महीने कुल 8,64,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जो केदारनाथ यात्रा के इतिहास में नया रिकॉर्ड है। जून 2013 की आपदा के बाद से विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम यात्रा लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अभी तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा को सफल व सुरक्षित बनाने में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन और आपदा प्रबंधन विभाग जुटे हुए हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग पर पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता समेत कई व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया गया है। केदारनाथ सहित द्वितीय केदार मदमहेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ यात्रा के साथ कार्तिक स्वामी में भक्त पहुंच रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं के लिए गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप और जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी रुद्रप्रयाग पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मॉनसून सीजन के दौरान खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले भ्रामक सूचनाओं की निगरानी और तत्काल खंडन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में प्रशासन और पुलिस मॉनसून की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है। इस दौरान जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी विभागों के अधिकारियों साथ बैठक कर संभावित भूस्खलन, अतिवृष्टि, सड़क अवरोध और नदी नालों के बढ़ते जलस्तर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। संवेदनशील स्थलों पर मशीनरी, राहत सामग्री और आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। वही जनपद के लिए एक गर्व की बात भी है कि जिला अधिकारी विशाल मिश्रा को फेम इंडिया मैगजीन की प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ जिला अधिकारी 2026 की सूची में देश के शीर्ष 50 जिलाधिकारियों में स्थान मिला है। उन्हें कुशल प्रबंधक श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में विकास कार्यों की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय में बैलनी के समीप अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन पुल और सुरंग परियोजना तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना में 200 मीटर लंबा पुल और 900 मीटर लंबी सुरंग शामिल है। परियोजना पूरी होने पर केदारनाथ और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा और रुद्रप्रयाग नगर में यातायात दबाव कम होगा। प्रशासन का लक्ष्य है इसे 15 अगस्त तक यातायात के लिए खोलने का है। वहीं जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ धाम में इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण के साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया गया था। जिला मुख्यालय में संगम व्यू पॉइंट सहित विभिन्न स्थानों पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उधर जून महीने के पहले सप्ताह में जिला प्रभारी मंत्री एवं कृषि व कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क समेत स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये थी इस सप्ताह रुद्रप्रयाग जिले में हुई कुछ प्रमुख गतिविधियां, उपलब्धियां और विकास से जुड़ी खबरें। उम्मीद है जिले की चिट्ठी का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आपने अपने जिले में हो रही सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की होगी। इसके साथ ही आज का ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी प्रियंका मलिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: ये थी जिले की चिट्ठी। हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। सवेरे के 9:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत।

गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे हम गुसार चले।

लवर्स फिल्म में अभी आपने सुना अमित कुमार और लता मंगेशकर को, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, रिश्ते वाकई में मुलाकातों के तो मोहताज शायद नहीं होते, लेकिन आवाज लगाना बेहद जरूरी होता है। मुलाकात के बाद हाथ थाम वक्त रोकने की कोशिश करना भी जरूरी होता है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार को आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म बड़े दिलवाला में, संगीत आरडी बर्मन का और रचना है मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखी हुई।

0: श्रोताओं, आप भी कहीं ना जाइएगा, रुकते हैं इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और उसके बाद आपके लिए और भी बहुत सारे सदाबहार फिल्मी नगमे होंगे।
1: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
2: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
3: The all-new Nissan Revive अब CNG में
4: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
3: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
2: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओं, जीवन की राहें चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उनमें प्रेम का उजाला ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। प्यार ही वो एहसास है जो साधारण क्षणों को भी यादगार बना देता है। सुनिए प्रेम की सच्चाई को गुनगुनाता ये गीत। स्वर आशा भोसले और किशोर कुमार के हैं। आर डी बर्मन के संगीत से सजा है मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना।

श्रोताओं, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो उसे हर रंग में, हर खुशबू में उसका ही प्रतिबिंब दिखाई देता है जिसे वो प्रेम करता है। प्रिय की तुलना मौसम, वादी, फूलों से भी होने लगती है। प्रेम की ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति सुनते हैं देवता फिल्म के इस गीत में। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गुलजार के बोल हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, मोहब्बत की नज़र में अपना प्रिय दुनिया की सबसे खूबसूरत रचना होता है प्रकृति की। उसकी हर अदा, हर मुस्कान दिल में एक मीठी सी धुन बनकर बस जाती है। इसी मधुर एहसास के साथ आइए आपको सुनवाते हैं स्वर्ग नर्क फिल्म का ये गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल हैं और राजेश रोशन का संगीत।

श्रोताओं, रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है उम्मीद। उम्मीद जो सपनों को सच होने का हौसला देती है। दिल की गहराइयों में बसे ख्वाब विश्वास और प्रेम की रोशनी में खिल उठते हैं। उम्मीद और विश्वास से सजा ये खूबसूरत सा गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में इंसाफ का तराजू फिल्म से गीतकार साहिर लुधियानवी की ये बेहद खूबसूरत रचना को संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सदाबहार फिल्मी नगमे कार्यक्रम में। अगला गीत आपके लिए इन भावों के साथ कि जब ख्वाब पूरे हो जाएं तो मन खुशियों से भर उठता है। लगता है हवाएं भी कोई मधुर राग छेड़ रही हैं। धरती, आकाश सब हमारे गीत में शामिल हो गए हैं। ऐसे ही उल्लास और जीवन के संगीत से भरा हुआ ये अगला नगमा आप तक पहुंच रहा है। तेरी कसम फिल्म से अमित कुमार की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत है, रचना आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात ये नहीं है कि वो कितना लंबे चलते हैं, बल्कि ये कि उनमें कितना अपनापन है, कितना समर्पण है। जीवन की हर धूप छाँव में साथ निभाने की इसी पावन भावना को स्वर देता ये अमर गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म सौदागर से, शब्द रचना और संगीत है रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, सपनों की तो कोई उम्र नहीं होती। दिल की कोमल जमीन पर जन्म लेते हैं, विश्वास की धूप और प्रेम की बारिश उसे हकीकत का रूप दे देती है। किसी शायर ने कहा है कि ख्वाब आंखों में सजाना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी को मुस्कुराना भी ज़रूरी है। और इन्हीं खूबसूरत ख्वाबों और उम्मीदों की बात लिए चलते हैं अपने कार्यक्रम के इस अंतिम गीत की ओर, जहाँ कह रहे हैं कि अगर सपनों का साथ, किसी अपने का हाथ और विश्वास का सहारा मिल जाए तो मंजिलें भी राह आसान कर देती हैं। आइए सुनते हैं उम्मीदों से भरा हुआ ये मधुर गीत राही बदल गए फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आर डी बर्मन का संगीत है और ये खूबसूरत सी गीत की रचना की है गुलशन बावरा ने।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब आप सुनिए न्यूज़ हेडलाइंस।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप नीता कांठपाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करेंगी। ये परियोजना यमुना की सहायक नदी टॉन्स पर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच प्रस्तावित है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग के अनुसार करीब 1000 रिक्तियों के सापेक्ष 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग के नए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। पोर्टल पर पंजीकरण दस्तावेज प्रबंधन शिकायत निवारण नामांकन सत्यापन और ऑडिट प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी गेट आगामी 14 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वनाधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष चीला जोन पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊधम सिंह नगर जनपद के बागवाला में निर्माणाधीन 1800 से अधिक आवासों का आवंटन लाभार्थियों को जल्द किया जाएगा। 156 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 88% गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। 10:02 हुए हैं। सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना ये गीत शोला और शबनम फिल्म से लता मंगेशकर के साथ स्वर दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी। खयाम का संगीत था और कैफ़े आज़मी का गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं छाया फिल्म के गीत के साथ। लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल आवाज़ों में सलिल चौधरी का संगीत है।

अभी आपने सुना ये गीत जिसे स्वर दिया था मुकेश ने, फिल्म थी अनीता। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सीआईडी फिल्म के इस गीत के साथ। ओपी नैयर का संगीत है, गीता दत्त की आवाज़।

और अब सुनिए ब्रह्मचारी फिल्म से हसरत जयपुरी की रचना को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले के गाए हुए इस गीत के साथ, जिसे संगीत दिया है उषा खन्ना ने, बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम दिल देके देखो।

0: आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: ये आकाशवाणी देहरादून है। 10:30 हुए हैं, सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया है।

संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग के अनुसार करीब 1000 रिक्तियों के सापेक्ष 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। आयोग ने उम्मीदवारों को सूचित किया कि उनके कट ऑफ नंबर और उत्तर सूची अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड सहकारिता विभाग के नए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के नए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि नए पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण दस्तावेज प्रबंधन शिकायत निवारण नामांकन सत्यापन और ऑडिट प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस अवसर पर विभागीय मंत्री ने चयन आयोग के माध्यम से नियुक्त 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा से संबंधित भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर कड़ी निगरानी रखते हुए ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिला कार्यालय सभागार में केदारनाथ यात्रा तथा मानसून सीजन आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने यात्रा मार्ग पर पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, शटल सेवा, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर मशीनरी और राहत बचाव संसाधन पहले से तैनात रखने को कहा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता से जुड़ी समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि करीब 20,000 शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों में TET अनिवार्यता को लेकर अपनाए गए मॉडलों और निर्णयों का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88% से अधिक गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियान की समीक्षा की। उन्होंने गणना फार्म वितरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों की सराहना करते हुए फार्मों के डिजिटाइजेशन कार्य के निर्देश दिए। डॉक्टर जोगदंडे ने मतदाताओं से नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो गणना फार्म के साथ BLO को उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि 8 जून से 7 जुलाई तक घर घर भ्रमण के दौरान मतदाताओं से कोई अन्य दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ऊधम सिंह नगर जिले में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। जिले के बागवाला क्षेत्र में लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1800 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है विविध कलाकारों द्वारा गाए गुजराती लोकगीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों द्वारा गुजराती लोक संगीत।
1: ना, सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।

0: विविध कलाकारों द्वारा गुजराती लोक संगीत का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: सौ दशमलव 5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 11 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। आप सभी श्रोता हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहें, इसी कामना के साथ आइए शुरुआत करते हैं आपका पसंदीदा अपना कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो श्रोताओं, मैसेज एक के बाद एक बहुत सारे हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो सभी श्रोताओं का कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतने सारे मैसेज हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस पहली फरमाइश के साथ, जिसको लिखा है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष ने, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। आप हैं रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। खैर बाजार पानीपत से ये अगली फरमाइश भेजी है नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और इनके पिताजी हैं नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। शामिल कर रहे हैं विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा को बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप जुड़े हैं गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़, गुरु मेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मन कीरत और मनराज। मुंदीचक भागलपुर से आप हैं दिलीप कुमार सोनी और ये मैसेज किसका आया है, आपके नाम हैं किशन वंजैनी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से आपने ये मैसेज भेजा है। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है, आप हैं कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा डाबी, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाबी, टुंकिया जिला बालोतरा राजस्थान से आपने ये मैसेज किया है। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप जुड़े हैं अहमदपुर खैगांव खंडवा से, आप हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वेदिका फूलमाली। अगले श्रोताओं का ये मैसेज मोहाली पंजाब से आया है, आपके नाम है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और ये मैसेज हम शामिल कर रहे हैं अपर कोट मोहल्ला चौखनटी बुलंदशहर से, आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम मेरे हजूर।

अगला केस सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। आप हैं, आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना और रचिता, साथ में है केशो रिधान खुराना। अगली फरमाइश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं अदनान अली मंसूरी, अरमान अली, साथ में हैं चांदनी, अनमता और आशु भाई। आपने ये मैसेज किया है रामपुर से। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता। आप हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश आई है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे, प्रणय और प्रतिभा की, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। अगले श्रोताओं को हम शामिल कर रहे हैं वीरम गांव गुजरात से। आप हैं, आप हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, साथ में है रोशनी और बेबी प्रियांशी। आपने ये मैसेज किया है शाहू नगर यवतमा।

से। रानीगंज बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं रवि और इंदर, दिल्ली से आप हैं ध्वनि और सानवी। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश भेजी है मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई ने। साथ में है चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। अगला मैसेज गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से पहुंचा है और इसको लिखने वाले हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में युवान रावल को ग्राम दिलावरा से। और ये मैसेज किसका है? ये मैसेज आया है वली उल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और शबनम बानो का। पुराना तालाब डुमराव से आप हैं, जेल रोड बक्सर से हमारे साथ जुड़े हैं राज SD अंसारी और फातिमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से आप हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। ये अगला मैसेज राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से आया है, लिखने वाले श्रोता हैं नरेंद्र नरवाणे, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, राजा फिल्म से युगल स्वर उदित नारायण के साथ अलका याग्निक का।

अगला गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं बटीडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। ये अगला मैसेज जिसको लिखा है सोनाली, आशा नारंग, सुरेश नारंग ने सहारनपुर से कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं इस अगली फरमाइश को, जिसको लिखने वाले श्रोता हैं तेलंगाना चोटुपल से हैं कस्तूरी रामडू, वुमा देवी, प्रधुवी और नारायण। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है आनंद देवघरे, इनका नाम है, साथ में है विद्या तलेगांवकर, गजानन सिंह सिन्हा, गिरिजा देवघरे, आपने यवतमाल महाराष्ट्र से ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में ग्राम पुटपाक तेलंगाना से भवानी वेंकट, मास्टर मिथुन और महादेव को। अगले श्रोताओं का ये संदेश पहुंचा है मोहल्ला बारदरी, महमूद खां रामपुर से आप हैं, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर को मोहल्ला हलवाइयाँ, शेरकोट जिला बिजनौर से आपने ये मैसेज किया है। अगले श्रोताओं का ये मैसेज मोताला महाराष्ट्र से आया है, आपके नाम है विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं चोट्टुपुल से हैं कस्तूरी रामडू, वुमा देवी, प्रधुवी और नारायणा शामिल कर रहे हैं इस अगली फरमाइश को। ग्राम जखड़ गांव अहमदनगर से आप हैं मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल। अगले श्रोताओं का यह मैसेज हम तक पहुंचा है पंचकुला से आप हैं वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, अंजलि, नेहा, गुरमीत कौर। अगले श्रोताओं का ये मैसेज पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से आया है, आपके नाम है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। शामिल कर रहे हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल को। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक भाटिया और रजत भाटिया, झज्जर हरियाणा से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। भोपाल गढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। अगले श्रोताओं का ये मैसेज कस्बा मुंडिया नवी बक्सर से आप हैं फारूक अहमद, तफसील अहमद, हारून अहमद। अगले श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं हैदराबाद से आप हैं मोनिका बालू और विनय कुमार। कार्यक्रम का ये अगला मैसेज हम ले रहे हैं आपका, आप हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली, वेदिका फूलमाली, खैगांव खंडवा से। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु संस्कृति और पौरुष। तेलंगाना स्टेट करीम नगर से आप हैं लक्ष्मी नारायणा, विजया, अभिनय और साई किरण। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, तेजाब फिल्म से आवाज़ है अलका याग्निक और साथियों की।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: 7.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइशों का, व्हाट्सएप फरमाइश का, और शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश जिसको लिखा है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया ने। ये अगली फरमाइश आई है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। आप हैं दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। आप हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द सिंह राहुल। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आया है। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। शेरकोट बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल जी। समस्तीपुर नरहन स्टेट से ये अगला मैसेज आया है जिसको लिखा है लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पारसर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित ने। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। मुगलपुरा बागपत से ये अगला मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल और उनके बहुत सारे साथी और इनका पूरा परिवार। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। आप हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। शामिल कर रहे हैं ये अगला मैसेज जिसको लिखा है शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी ने। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज आया है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। आप हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली युवान और RK राजा। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी आपके नाम हैं। ये अगला मैसेज रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश, प्रीतेश और इनके पूरे परिवार का आया है परभणी महाराष्ट्र से। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और इन्होंने ये मैसेज किया है मजनू काटीला से। सतना MP से आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है ग्राम पीपर लोड़ सरगांव छत्तीसगढ़ से। आप हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद और तरुण यादव साथ में हैं। श्रीनिका, श्रीनिजा, जेल लोड़ रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखाहिल मुजावर, जैनब मुजावर। मुताला महाराष्ट्र से आप हैं रतनमाला सुरलकर, आरती, कुमकुम और विजय। आजमगढ़ UP से दिलशाद हुसैन, फातिमा कार हैदर, कनीज, हसीना और वसीम। आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए आशा भोसले की मधुर आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम मेरा साया।

अपनी पसंद के गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। और अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं बिहार स्टेट रुमराव से, आप हैं राज वली अंसारी, बेगम शबनम राज और असमानाज राज। जेल रोड बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी, फातिमा राज और असलम राज। कार्यक्रम में ये अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आजन कुमार सिन्हा, वंदना सिन्हा, विज्ञप्ति विनायक सिंह, मोहिनी मोहित सिंह और प्यारी प्यारी कोको रानी। आपने ये मैसेज किया है वाराणसी यूपी से। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है राजकोट से, आप हैं जैमिन कुमार जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन और राकेश जैन। अगली फरमाइश आई है कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ से, आप हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू। ये अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सरगुजा मेन पार्ट से, आप हैं प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और पूरा डोमिन परिवार। तखतपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं रमेश कुमार साहू, राधिका देवी, पूजा देवी और मिश्री देवी साहू। अगली फरमाइश तेरीपारा विलासपुर छत्तीसगढ़ से लिखी के भेजी है आप सभी श्रोताओं ने, आप हैं गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष विवेक और बेबी आयुषी श्रीवास। अगले श्रोताओं का ये मैसेज आया है मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। अगली फरमाइश भेजी है जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु ने नई दिल्ली से। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं अगले श्रोताओं को जो हमारे साथ जुड़े हैं मोताला बाजार से, आप हैं बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान खान। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं, आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। दादरी गेट भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल कुणाल मेहरा। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से ये अगली फरमाइश आई है जिसको लिखा है जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने। अगले श्रोताओं का ये मैसेज कृष्णा कॉलोनी हांसी से आया है, आप हैं सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्लू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुँचा है शास्त्री नगर बीड शहर से, आप हैं किशन सबकाल, आशा सोनिया, साईराज, विशाल सबकाल। माल टेकड़ी अमरावती से आप हैं प्रशांत ढेकरे, वर्षा और श्रावणी ढेकरे। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं स्योहारा जिला बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादर चौधरी आपके नाम हैं। ये अगला मैसेज शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजुबाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन का सब्जी मंडी बुलढाणा से आपने ये मैसेज किया है। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर यूपी से। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रघुवीर नगर से, आप हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, खरगोन एमपी से आपने ये मैसेज किया है और कस्बा चिलकाना से आप हैं नदीम अंसारी, आयशा, नदीम, अजीम शान, आलिया अंसारी, अरहम अंसारी। कस्बा चिलकाना से आपने मैसेज किया है और ये अगला मैसेज आया है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। शामिल कर रहे हैं ये अगली फरमाइश जिसको लिखा है गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा नंदिनी लड्डू ने। तो आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की दिलकश आवाज में, फिल्म का नाम फूल और कांटे।

अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आप हैं। गांव जाखौद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार और पूजा खटक। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। शामिल कर रहे हैं फिरासत हुसैन अल कमर जहां, शिफा सिमरन, मोहम्मद अल फैज को गंज डुंडवारा गणेशपुर से। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष दीपक कुरहाड़े, शांति निवास लेहगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से आपने ये मैसेज किया है। नई बस्ती गंज डुंडवारा से आप हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम अंसारी। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साईं गायकवाड़। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में इस अगली फरमाइश को जिसको लिखा है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से आप हैं मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और राजेंद्र कुमार और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रोता सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। अगली फरमाइश मुजफ्फरपुर बिहार से आई है आप हैं आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं रेलवे रोड गंज डुंडवारा से आप सभी श्रोताओं को आप हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और इनकी भाभी हैं सरिता गौतम। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में बागपत यूपी से ममता डिंगिया और कुणाल डिंगिया को। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है कहां से पहुंचा है ये पहुंचा है समस्तीपुर बिहार से आप हैं मीरा सिंह और ज्योति। कोवात रोहतास बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं सोनम सिंह, अनामिका सिंह। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम हैं रिजवान खान, आयशा, अनस और रेहान, एस असलम सैफी, जेबुनिसा, अकरम, जाहिद, सद्दाम सैफी, आबाद खान इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं बिलराम गेट कासगंज से। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोर टका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। शामिल कर रहे हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक और परी, साथ में है स्वाति प्रयाग चौधरी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म का नाम जिगरी दोस्त। आवाज है लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी की।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आप हैं। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने और पीएस नहावकर। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से आपने ये मैसेज किया है। अगले श्रोताओं का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य और कोयल मल्होत्रा, साथ में इनके पिताजी नानक चंद मल्होत्रा ने यह मैसेज किया है। अगले श्रोताओं का यह मैसेज ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से। कारी राय कारी मीना कारी, पुंजराज आरती आकर्षण जयश्री। शामिल कर रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल को। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आपने मैसेज किया है। आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, हार्दिक, वंश, बत्ता और निहारिका। कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये मैसेज हम तक पहुंचाया है आप सभी ने। ये अगला मैसेज है मदरसा गेट भावपुर मणियाऊ जौनपुर से। आप हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में इस अगली फरमाइश को जिसको लिखा है कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से। आप हैं जरीफ अंसारी, नाइम अंसारी, डॉक्टर आमिर, मुन्ना और नाजिम। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इनके बहुत सारे साथी। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत आशा भोसले और अशोक कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम खूबसूरत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: 107.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइशों का, व्हाट्सएप फरमाइश का। और श्रोताओं, समय हो गया है 11:54, शामिल करते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइशों को। तो अंतिम फरमाइशों में ये फरमाइशें हम शामिल कर रहे हैं। सादुल शहर राजस्थान से आप हैं, राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। कृष्णा पार्क दिल्ली से आप हैं, सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। ये अगली फरमाइश जमशेदपुर झारखंड सुपाही साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी और दीपाली कुमारी, और साथ में है देवेंद्र जी की। कस्बा उगेती बदायूं से आप हैं, देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस गुप्ता, प्रशांत गुप्ता और कार्तिके। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ग्राम व पोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। ये अगली फरमाइश मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत की, दादा बाबू रोड, गिरिडीह झारखंड से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में इस अगली फरमाइश को जिसको हम तक पहुंचाया है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं दरबान सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी, सुरेंद्र मुंडेपी, कुलदीप रावत, लियाकत रराई वाले, बाला वाला देहरादून से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। शामिल कर रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन को पलारी छत्तीसगढ़ से। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, आप हैं प्रवीण हगोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली, पार्थ हगोड़े और इनका पूरा परिवार, कुष्ठा बुजुर्ग, अमरावती महाराष्ट्र से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव, सुनील, रजक, सोना, मोना, हनी और इनके पापा मम्मी। आपने ये मैसेज किया है शिवाजी चौक कटनी से। और कार्यक्रम में ये

अंतिम फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। बम्बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे और इनकी बेबी किट्टू है, इन सभी की फरमाइश पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म का नाम पत्थर के सनम।

0: इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एविया शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारी में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said that despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation.

0: participation. He said democracy has remained an integral part of the country's work culture and thought process. The Lok Sabha speaker said active and inclusive participation in democracy is essential for shaping the nation's future and achieving the goal of a developed India. Ahead of the re-examination of the National Entrance Cum Eligibility Test NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency NTA has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the permanent five members.
1: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: A liquefied natural gas LNG carrier Disha has safely transited through the Strait of Hormuz. The LNG carrier carrying 62,370 metric tons of LNG is one of the first commercial vessels to transit the strait since the announcement of a preliminary ceasefire deal between the United States and Iran. In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second pool A match. Captain and player of the match, Salima Tete and Larum Siami, netted the goals for India. In the FIFA World Cup 2026, Cape Verde displayed an extraordinary performance to secure a goalless draw with global heavyweights Spain. Benchmark domestic equity indices were trading moderately up in the forenoon session today. The Sensex rose 318 points to 76,582, while the Nifty added 66 points to 23,920 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप नीता कांडपाल से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रेनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली किसाओ बहुउद्देश्य बांध परियोजना की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ये परियोजना यमुना की सहायक नदी टॉन्स पर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच प्रस्तावित है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग के अनुसार करीब 1000 रिक्तियों के सापेक्ष 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग के नए पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। पोर्टल पर पंजीकरण, दस्तावेज प्रबंधन, शिकायत निवारण, नामांकन सत्यापन, ऑडिट प्रबंधन और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सोमपति अमावस्या स्नान के बाद हरिद्वार नगर निगम का विशेष स्वच्छता अभियान, रात भर में 90 ट्रैक्टर कूड़ा साफ किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व के सभी गेट आगामी 14 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वन अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष चीरा जोन पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। पर्यटकों ने

0: यहां हाथी सवारी का आनंद लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊधम सिंह नगर जनपद के बागवाला में निर्माणाधीन 1800 से अधिक आवासों का आवंटन लाभार्थियों को जल्द किया जाएगा। 156 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 88% गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे ने मतदाताओं से अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपील की है। आप सुन रहे थे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:12 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए अवधेश कौशिक के गाए गीत।

100.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है सुगम संगीत का। आप सुन रहे हैं अवधेश कौशिक के गाए गीत। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अवधेश कौशिक की ही आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अवधेश कौशिक के गाए गीत। FM 7.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 12:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम महिला जगत और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन नेगी। बहनों, आज हम बात करेंगे कैसे विशेष दिन की, जो उन लाखों लोगों के त्याग, मेहनत और प्रेम को समर्पित है जो अपने परिवार से दूर रहकर उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। बहनों, हर वर्ष 16 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है। परिवार प्रेषण यानी फैमिली रेमिटेंस, वो धनराशि बहनों जो लोग विदेशों या दूसरे शहरों में काम करके अपने परिवार को भेजते हैं। ये केवल पैसा नहीं होता, बल्कि इसमें छिपा होता है माँ की दवा, बच्चों की पढ़ाई, घर की खुशियां और परिवार के सपनों को पूरा करने का संघर्ष। कल्पना कीजिए, एक पिता जो हजारों किलोमीटर दूर रहकर दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना आए। एक बेटा जो अपने माता पिता के बेहतर जीवन के लिए विदेश में नौकरी करता है, या एक बेटी जो अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए घर से दूर संघर्ष कर रही है। इन सभी लोगों का योगदान केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे देश की अर्थव्यवस्था और समाज को भी मजबूत बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला यह दिवस बहनों हमें यह संदेश देता है कि प्रवासी श्रमिकों का सम्मान करें, उनके योगदान को पहचानें और सुरक्षित और सुलभ वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा दें। प्रिय बहनों, आज के इस अवसर पर आइए हम उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जो अपने परिवार की मुस्कान के लिए स्वयं की खुशियां का त्याग करते हैं। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है और यह दिवस विदेशों में काम कर रहे उन प्रवासी श्रमिकों के अथक प्रयासों और बलिदान को सम्मानित करने का दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की शुरुआत सबसे पहले हुई थी वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी आईफेड द्वारा। इसके बाद 16 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता दी गई और तब से ये प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। बहनों, विदेशों में काम करने वाले प्रवासी कामगार अपने परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा होते हैं। ये प्रेषण अलग अलग मध्यम आय वाले देशों के परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बात करें आर्थिक सहारे की, तो जी हाँ, ये धन परिवारों को भोजन, आवास और चिकित्सा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि बात करें तो प्रेषण की राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए किया जाता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। यहाँ तक कि इससे होता है ग्रामीण विकास। इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है, जिससे वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यदि हम सतत विकास की बात करें तो ये प्रेषण गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बहनों, वैश्विक स्तर पर 200 मिलियन से अधिक प्रवासी कामगार हैं जो अपने परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर अलग संस्कृति और माहौल में काम करने के बावजूद वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। उनका यह योगदान न केवल उनके परिवारों की मदद करता है, बल्कि उनके मूल देशों की अर्थव्यवस्था यानी GDP में भी एक बड़ा और अहम योगदान देता है। बहनों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जोर प्रेषण की प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाने पर है। औसत प्रेषण लागत को कम करने के लिए डिजिटल माध्यमों जैसे मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांसफर का उपयोग आजकल तेजी से बढ़ रहा है। डिजिटल प्रेषण से बिचौलियों का खर्च बचता है और पूरी धनराशि सीधे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच जाती है। तो बहनों, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन उनके परिवारों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। यह दिन न केवल प्रवासियों के वित्तीय योगदान को सराहता है, बल्कि सरकारों और निजी संस्थाओं को भी प्रेरित करता है कि वे प्रेषण की लागत को कम करने और प्रवासियों के वित्तीय समावेशन के लिए उचित नीतियां बनाएं। प्रवासी श्रमिकों का ये त्याग और प्रेम वास्तव में मानवता का एक अनूठा उदाहरण है। तो बहनों, याद रखिए, परिवार से दूर रहकर भी जो हर पल परिवार के साथ खड़ा रहता है ना, वही सच्चे प्रेम और जिम्मेदारी का मिसाल होता है। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं फिल्म जॉली LLB 2 से ये गीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: बहनों, आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन नेगी। चलिए आइए अब सुनते हैं बच्चेदानी में रसौली यानी गांठ के कारण लक्षण और इलाज विषय पर वरिष्ठ प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रा पंत से गीता राणा की बातचीत।
5: बहनों, हमारे दैनिक जीवन में हमारा खान पान, हमारा पहनावा, सोने और जागने का समय, ये सब हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और चाहते ना चाहते हुए भी कई बार हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। बहनों, हम गर्भाशय में होने वाली रसौली के कारण, उपचार और निदान के बारे में बात करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर चंद्रा पंत को, जो देहरादून के एक नामी अस्पताल में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर चंद्रा, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
6: नमस्कार, आप लोगों का धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छा विषय रखा है जो कि सारी महिलाओं के जीवन काल में, स्पेशली प्रजनन काल में, जो होता फर्टिलिटी एज ग्रुप में काफी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान क्या क्या होता है और उससे कैसे निदान होते हैं, उसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है।
5: डॉक्टर चंद्रा, सबसे पहले आप हमारी बहनों को बताइए कि रसौली क्या होती है।
6: रसौली जो है ये गर्भाशय की, यूट्रस की जो गांठ कहलाती है, जैसे फाइब्रॉइड को जो हम भाषा में कहते हैं, गर्भाशय की रसौली कहलाती है। जो फाइब्रॉइड होता है ये यूजुअली फर्टिलिटी एज ग्रुप में, जिन दिनों प्रजनन के क्रिया जैसे 15 से 45 साल की उम्र में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये समय वो होता है जब हार्मोनल चेंजेज आते हैं बॉडी में, उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं
5: जी,
6: उनकी वजह से ही ये होता है। मेनली ये एक मस्कुलर फाइब्रॉइड जो होता है, फाइबर्स होते हैं जो कि एक कंडेंस रूप में हो जाते हैं,
5: गांठ से
6: तो गांठ बन जाती है, उसी गांठ को आम भाषा में लोग कहते हैं कि बच्चेदानी में गांठ हो गई, जो कि प्रॉब्लम तो थोड़ी करती है।
5: डॉक्टर, ऐसे कौन से लक्षण या सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण महिला को अपनी जांच करानी चाहिए?
6: बिल्कुल सही, जैसे कि अगर जिनके बच्चेदानी में रसौली है, फाइब्रॉइड है, उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान, और

0: पेन दर्द हो सकता है,
1: जी
0: और अपने पेल्विक एरिया में नीचे वाले पेट में भारीपन हो सकता है, कभी
1: जी
0: कभी ब्लैडर में प्रेशर होने से उससे यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी इंटेस्टीन में प्रेशर होने से उससे
1: जी
0: कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टिनल बाउल हैबिट चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ न कुछ दिक्कत उसमें देती ही है ये।
1: ऐसी कौन सी जांच और टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि गर्भाशय में महिला के अंदर रसौली है या नहीं है?
0: हाँ, बहुत अच्छा। और ऐसे में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं तो सभी महिलाओं को कहूंगी, जो निकटवर्ती आपके पीएससी हैं, प्राइमरी
1: जी
0: हेल्थ सेंटर, या फिर सीएससी गवर्नमेंट के उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आप स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं जाकर
1: जी
0: के, और वो सबसे पहले आपका चेकअप करेंगे। चेकअप करने से भी आधी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं,
1: जी
0: और पूरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बतानी चाहिए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि ये मालूम चल जाता है कि रसौली एक है कि या नंबर में
1: जरूरत से
0: है,
1: ज्यादा भी
0: या
1: है।
0: बिल्कुल हो सकते हैं,
1: जी
0: और वो फाइब्रॉइड या रसौली बच्चेदानी में कहाँ पे है।
1: अच्छा, कई बार ये देखा गया पीरियड्स के टाइम पे अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाना या दर्द होना, ये भी क्या रसौली का संकेत है? जो अविवाहित महिलाएं हैं, युवा लड़कियां हैं, उन पे भी क्या रसौली हो सकती है गर्भाशय में?
0: बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्यों नहीं हो सकता। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप केवल मैरिड में ही हो, अनमैरिड में भी, क्योंकि वो फर्टिलिटी एज ग्रुप है, उसमें हॉर्मोन्स चेंजेज होते हैं। रसौली कई तरह के होते हैं, एक तो रसौली जो बिल्कुल बच्चेदानी के अंदर स्पेस ले रही
1: लेती
0: होती
1: है
0: है, और एक जो बच्चेदानी की वॉल में होती है,
1: जी
0: और एक बच्चेदानी की बाहर होती है। सब सीरस म्यूरल एंड सब म्यूकस कहलाती है, और बहुत बार क्या होता है पडंकुलेटेड भी होती है,
1: उभार
0: तो
1: सा जो आता है।
0: यस
1: जी
0: बहुत इस तरह से, और ये ब्लीडिंग भी ज्यादा करती हैं, और
1: जी
0: बहुत लोगों में जैसे सर्वाइकल फाइब्रॉइड है या फिर वो औस बंद कर रहा है, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। इटसेल्फ फाइब्रॉइड से कोई पेन नहीं होगा,
1: जी
0: लेकिन जो वहां पे पैथोलॉजी क्रिएट हो रही है उसकी वजह से पेन होगा।
1: अच्छा डॉक्टर, ये बताइए किस साइज की रसौली या कौन सी रसौली नुकसानदायक होती है?
0: फाइब्रॉइड एक ऐसी चीज है, कभी कभी तो साइलेंट होते हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे मैरिड लोगों में अपने एक बच्चा दो बच्चा जो भी होना है वो हो भी जाते हैं, और बहुत सालों पता नहीं चलता। वो साइलेंट इटसेल्फ नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसी जगह होता है कि जो
1: नुकसान
0: प्रेगनेंसी
1: नहीं
0: को
1: करता।
0: बाधा ही
1: जी
0: नहीं डालता है, लेकिन जब वॉल में इंट्राम्यूरल हो या सब म्यूकस हो, मतलब आपके बच्चेदानी के कैविटी में हो,
1: जी
0: तो वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं। कैसे कि या तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी नंबर वन, नंबर
1: जी
0: टू प्रेगनेंसी भी नहीं होने देंगी वो कभी कभी, क्योंकि उस जगह तो फाइब्रॉइड है। तो अगर प्रेगनेंसी फर्टिलिटी एज ग्रुप में है और बच्चा नहीं हो रहा है, तो
1: जी
0: ऐसे में आपको वो फाइब्रॉइड निकलवाना पड़ेगा, तभी वहां पे वो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो पाएगा। ऐसे में सर्जरी की जरूरत
1: जी
0: होती है।
1: जरूरत क्या जरूरत से ज्यादा कोई महिला स्ट्रेस लेती है या उसका खान पान जंक फूड है, तो ये भी क्या ये रसौली का खतरा बन सकती है?
0: जंक फूड इटसेल्फ जो है बॉडी के लिए अच्छा नहीं है,
1: जी
0: और आजकल आपने मोस्ट ऑफ केसेस में इवन जो प्यूबर्टी एज ग्रुप में भी देखा होगा, पीसीओडी के बहुत केसेस आ रहे हैं,
1: जी
0: तो ये सब भी हार्मोनल इम्बेलेंस से होता है।
1: जी
0: जबकि फाइब्रॉइड भी है हार्मोनल इम्बेलेंस से है, तो वो सब कोरिलेट हो सकता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए जंक फूड वगैरह लोगों को। इवन बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं
1: नहीं
0: लेना
1: लेना
0: चाहिए।
1: चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए क्या रसौली आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी हो सकती है, कि अगर माँ को कभी रसौली हुई है तो बेटी को भी आगे जाकर रसौली होगी ही,
0: हाँ,
1: क्या इस
0: एक
1: तरह
0: ये
1: का भी
0: पॉइंट
1: कुछ?
0: हम सोच सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि मदर को ऐसा था, तो कभी कभी ये होता है, हेरिडिटरी भी
1: आनुवंशिक भी
0: हो
1: हो
0: सकता
1: सकता
0: है।
1: है।
0: बिल्कुल
1: जी, और रसौली के कारण गर्भधारण में क्या दिक्कत आती है, और अगर महिला का इलाज चल रहा है तो क्या वो मातृत्व सुख उसके बाद प्राप्त कर सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले भी बताया था फाइब्रॉइड जो है बच्चेदानी के अंदर कैविटी में है या फिर उसके
1: जी
0: वॉल में है, जो कि
1: जी
0: इम्प्लांटेशन कहते हैं, फर्टाइल जो ओबम होता है उसको इम्प्लांट नहीं होने दे रहा है, जगह उसकी घेर रहा है,
1: जी
0: तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर अगर सर्जिकली उसको निकाल दिया जाए, यूट्रस भी रिपेयर हो जाता है, आराम से उस प्रेगनेंसी हो सकती है।
1: अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर हम दवा को लें तो उससे रसौली ठीक हो सकती है या फिर ऑपरेशन ही उसका इलाज है?
0: अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए ऐसा है, जो मेडिसिन हार्मोनल होती हैं, चाहे इस्ट्रोजेनिक हो चाहे प्रोजिस्ट्रोजेनिक, वो श्रिंक कर देंगी फाइब्रॉइड को, आजकल चल रहे हैं उन केसेस में जिनमें पेरी मेनोपॉजल,
1: जी
0: मेनोपॉज अब होने वाला है
1: होने
0: और
1: वाला है।
0: बहुत
1: हाँ जी
0: ज्यादा बड़े नहीं है फाइब्रॉइड, तो उनमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, फाइब्रॉइड उससे श्रिंक हो जाता है। मेनोपॉज के पीरियड्स बंद हो गए हैं
1: जी
0: तो वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाते हैं, घुल जाते हैं,
1: घुल
0: तो
1: जाते
0: वो
1: हैं।
0: प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है, बड़ा
1: जी
0: है, ह्यूज है या मल्टीपल है, जो आपको दिक्कत

0: कर रहे हैं तो रसोली निकलवाने में ही फायदा है। अगर आपके फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड हैं तो उसको हिस्टेक्टमी भी कराया जा सकता है। वो एज पे डिपेंड करेगा, वो आपके जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं वो क्या करना है, सर्जरी करनी है या मेडिकल ट्रीटमेंट, वो उसका डिसीजन उन्हीं को लेना है।
1: जी जी, जैसे आपने मेनोपॉज की बात की तो क्या मेनोपॉज के बाद भी महिलाओं में ये समस्या आ सकती है?
0: एज सच बहुत कम चांसेस है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन हार्मोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो ये हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन कहलाती है। कम लोगों में देखा गया है कि वो फाइब्रॉइड बन रहा है, क्योंकि फिर तो वो श्रिंक करने का टाइम आ जाता है।
1: जी, और आपने ऑपरेशन की बात की तो लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी में क्या अंतर है, रसौली के लिए क्या बेहतर होता है?
0: देखिए, जिन केसेस में एडिजन नहीं है और क्लियर कट आपका फाइब्रॉइड दिख रहे हैं तो उनमें आराम से आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बिल्कुल इन्यूक्लेट किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। 3 दिन के अंदर जो पेशेंट होता है, महिला होती है, वो स्वस्थ हो जाती है आराम से। और हाँ, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर ओपन सर्जरी करनी ही पड़ेगी।
1: यदि किसी महिला की सर्जरी हो गई है और रसौली हटा दी गई है, क्या उसके बाद महिला को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए या सामान्य जीवन वो जी सकती है?
0: बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकती है, जब तक कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकाल दिया है तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी।
1: गर्भाशय के रसौली से बचाव के लिए जीवन शैली में हमें क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, रसौली ना हो और उसे बचा जा सके?
0: बहुत अच्छी बात है। हर महिला को, जैसे कि भी आपने एक बहुत बढ़िया कहा था कि अगर हम फास्ट फूड वगैरह लेते हैं तो उससे क्या, जंक फूड, ये चीजें जो प्रिजर्व्ड चीजें होती हैं वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है। स्पेशली महिलाओं में ज्यादा हार्मोनल चेंजेज आ जाते हैं उसकी वजह से, तो वो ज्यादा दिक्कत करती है। ये एक तो आप एक्टिव रहेंगे, दूसरा अपने खान पान का फ्रेश फूड खाइए आप,
1: हमारे यहाँ
0: ताजा फल सब्जियां ये ज्यादा लें। ये बहुत लोगों में ये देखा गया, जैसे रेड मीट लेने वाले और ये सब चीज, उनमें भी फाइब्रॉइड के ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो अवॉइड करिए। डिफरेंट कलर के फ्रूट्स, डिफरेंट कलर की सब्जियां, जो वेजिटेबल्स फ्रेश लेंगे तो उससे मिनरल्स भी मिलेंगे आपको, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, जो कि फ्रेश मिलेगा, तो इससे चांसेस कम हो जाते हैं फाइब्रॉइड या इस तरह की चीजें बच्चेदानी में होने।
1: डॉक्टर, आपने गर्भाशय में होने वाली रसौली के विषय में हमारी बहनों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारी बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपका बहुत बहुत आभार।
0: आप लोगों का धन्यवाद।
2: बहनों, आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर चंद्रा पंत से गीता राणा की बातचीत। और बहनों, आज की तेज भागती दुनिया में हर व्यक्ति सफलता की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने मन की शांति, संतुलन और मानसिक शक्ति को खोते जा रहे हैं ना। जीवन में सफलता तभी सार्थक बनती है बहनों, जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और भीतर आत्मविश्वास की रोशनी जलती रहे। बहनों, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना ही होगा, जैसे कि सकारात्मक सोच रखें, हर परिस्थिति में उम्मीद देखना सीखिए। नकारात्मक विचार धीरे धीरे मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। स्वयं को हमेशा समय दें। बहनों, दिन में कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए। ध्यान, योग, संगीत या नेचर के साथ, प्रकृति के साथ समय जरूर बिताएंगे, आपको वास्तव में अच्छा लगने लगेगा। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि तुलना करना छोड़ें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, ये हम सभी को समझना जरूरी है। दूसरों से तुलना केवल तनाव बढ़ाती है, स्ट्रेस बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं आज हम ये देखते हैं कि लोग रिश्तों को महत्व नहीं देते। परिवार और दोस्तों के साथ संवाद करना, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। और बहनों, अब मैं तो कहूँगी कि असफलता से भी ज़रूर सीखें, क्योंकि असफलता अंत नहीं है बल्कि सफलता की तैयारी है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। याद रखिए बहनों कि मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने मानो दुनिया को जीत लिया। बहनों, जीवन को संतुलित बनाना केवल समय का प्रबंधन नहीं है, लेकिन भावनाओं, जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य और रिश्तों के बीच इनके बीच सामंजस्य बनाना है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव, चिंता और निराशा का शिकार हो रहे हैं। देखें तो कभी पढ़ाई का दबाव है, कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी भविष्य का डर। लेकिन हमें कमज़ोर परिस्थितियां नहीं बनाती, कमज़ोर सोच बनाती है। मानसिक शक्ति तो वो ताकत है बहनों, जो इंसान को हर कठिन परिस्थिति में भी टूटने नहीं देती। थककर बैठना नहीं, रास्तों में हारना नहीं, अंधेरों से डरकर कभी उम्मीदों को मारना नहीं। जीवन में तूफान आएंगे, कई अपने भी आजमाएंगे, पर जो मन से मजबूत होगा ना, वही इतिहास बनाएंगे। मुस्कुराकर हर दर्द सहो, अपने भीतर प्रकाश रखो, दुनिया बदले या ना बदले, तुम अपने मन में विश्वास रखो। इसी सकारात्मक संदेश के साथ चलिए अब सुनते हैं ये गीत।

बहनों, आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कंचन नेगी। तो चलिए चलते हैं सीधा रसोई घर से, जहां आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप खार व्यंजन कैसे बना पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि खार आखिर है क्या, तो केले के सूखे छिलकों की राख से जो बना पानी होता है उसे हम खार कहते हैं। अब भारत के अगर हम असम की बात करें तो वहाँ का ये प्रसिद्ध पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन है। इसका स्वाद हल्का, पौष्टिक और बिल्कुल अलग होता है। इसे आमतौर पर चावल के साथ खाया जाता है। आवश्यक सामग्री आप तुरंत नोट कर लीजिए। कच्चा पपीता 1 कप, आलू 1, अरहर या मूंग की दाल 2 बड़े चम्मच, सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच, तेज पत्ता 1, नमक स्वादानुसार और हल्दी थोड़ा सा। अगर आपको खार ना मिले तो बाजार में असमिया खार मिलता है, इसको आप आसानी से ले सकते हैं। पारंपरिक तरीके से यदि तैयार करने की बात करें तो जो केले के सूखे छिलकों को जलाकर उसकी राख बनाई जाती है, राख को कपड़े से छानकर पानी में मिलाया जाता है, फिर इसे छानकर साफ शारिया पानी निकाला जाता है और इसी को खार कहते हैं। सबसे पहले खार कैसे पकाया जाए, कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें, तेज पत्ता डालें, अब कटे हुए पपीते और आलू डालकर हल्का भून लें, नमक और हल्दी डालें, थोड़ा पानी डालकर सब्जियों को नरम होने तक पकाएं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच खार का पानी डालें, 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। ध्यान रखें कि खार डालने के बाद टमाटर या खट्टी चीजें नहीं डालते। अब इसे परोसने के तरीके की बात करें तो गरम चावल के साथ इसे बेहद पसंद किया जाता है और असम में इसे भोजन की शुरुआत में खाया जाता है। जिसे स्टार्टर्स हम कहते हैं, तो स्टार्टर्स के तौर पे इसे परोसा जाता है। खास बात यह है कि यह पाचन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं, तभी हम अक्सर देखते हैं कि आसाम है, मेघालय है, यहाँ के लोग हमेशा फिट रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, चाहे वो कितना ज़्यादा खाना खाएँ या शाकाहारी या मांसाहारी भोजन वो इस्तेमाल करें, फिर भी उनके शरीर में उसका फ़र्क नहीं दिखता है। इसका स्वाद सादा लेकिन बेहद पारंपरिक होता है। तो बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001। हमारा ईमेल आईडी है jagatmahila@gmail.com। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द आपसे मुलाकात होगी, आप मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। यह आकाशवाणी देहरादून है FM 107.5 MHz पर। दोपहर के 1 बज रहे हैं, आइए सुन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 7.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं उत्तराखंड के प्रादेशिक

0: समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का शीघ्र समाधान किया जाएगा। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 88% से अधिक गणना फॉर्म वितरित, अब डिजिटाइजेशन पर दिया जा रहा जोर। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। और चंपावत जिले में मां पूर्णागिरि मेला संपन्न, इस वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता से जुड़े मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शिक्षक संगठनों से वार्ता कर व्यावहारिक और सुसंगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले करीब 20,000 शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण समस्या से जुड़े सभी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अन्य राज्यों में TET की अनिवार्यता को लेकर अपनाए गए मॉडल और लिए गए निर्णयों का विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने उच्च न्यायालय में लंबित पदोन्नति संबंधी मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि शिक्षकों को जल्द प्रमोशन का लाभ मिल सके। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 88% से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना फॉर्म वितरण वाले शीर्ष जिलों की सराहना करते हुए संबंधित जिलों को दूसरे चरण में फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही जिन जिलों में फॉर्म वितरण का कार्य अभी राज्य के औसत से कम है, उन विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान के तहत गणना फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन करने के कार्य में अतिरिक्त मोबाइल टीमों की तैनाती करने के निर्देश दिए। डॉ. जोगदंडे ने निर्देश दिए कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने का आंकड़ा बहुत कम है, वहां इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने प्रदेश में ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। ऊधम सिंह नगर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफी सफल रहा है। जिले में लिंगानुपात में निरंतर सुधार हुआ है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। लिंगानुपात में निरंतर उन्नति के कारण ऊधम सिंह नगर को देश के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। जिले में लिंगानुपात बढ़कर 957 हो गया है, जो पहले काफी कम था। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने बताया कि जिले में लिंगानुपात में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है।
2: बेटियों की संख्या अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 1000 पुरुषों पर 957 का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हमारे यहाँ आ गया है, तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हुई है, तो बदलाव तो बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हमने जो गाँव से लेकर के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सेकेंडरी विद्यालय डिग्री कॉलेजों में हमने प्रत्येक स्तर पर ये महिलाओं से बालिकाओं से टीचर से एक अभियान चलाया गया था कि बेटियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो, बेटी को भार न समझा जाए और बेटी को शिक्षा में उतनी प्राथमिकता दी जाए जितना एक बेटे को देते हैं, तो उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
1: कल सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में आयोजित स्नान पर्व में 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के कारण विभिन्न गंगा घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्रित हुआ, जिसे नगर निगम की टीम ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर साफ किया। नगर निगम ने पूरी रात लगातार कार्य करते हुए लगभग 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित कर उसका निस्तारण किया। आज सुबह 4 बजे तक सभी प्रमुख घाटों और आसपास के क्षेत्रों से कूड़ा हटाकर व्यापक सफाई कार्य पूरा किया गया। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या के बावजूद निर्धारित समय पर सभी प्रमुख घाटों और मार्गों की सफाई पूरी की गई, जो नगर निगम की सुव्यवस्थित कार्य योजना और कर्मचारियों की अथक मेहनत का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चंपावत जिले में लगभग 3.5 महीने से चल रहा मां पूर्णागिरि मेला संपन्न हो गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस वर्ष मेले में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, जबकि वर्ष भर में मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख से अधिक रही। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता थी।
0: इस बार का मेला जो है विगत वर्षों की अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है। ये 100 दिन से ज्यादा ये मेला चला है और इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेला जो है वो बड़ा निर्बाध रूप से चला है और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी, जो कमियां थी उसको सुधार किया गया, उनको सभी सुविधाएं प्रदान की गई और जो श्रद्धालु सुविधाएं थे उनको और भी बेहतर किया गया। इसमें भारतीय रेल ने भी हमारा सहयोग किया, नगर पालिका और जो जिला पंचायत जो इसकी जो मूल संस्था है जो इसको चलाती है उन लोगों के द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो एक बड़ा ही अच्छे क्रियान्वयन जो है मेले का यहाँ पर किया गया है और वो मेला समाप्त हुआ, लेकिन जो हमारा जो दर्शन का कार्य है वो अभी भी निरंतर चलता रहेगा।
1: देहरादून जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी के मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 19 जून को पुलिस लाइन देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित करीब 770 से अधिक लोग भाग लेंगे। योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के तहत 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों लाखामंडल और हनोल में भी कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का शीघ्र समाधान किया जाएगा। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 88% से अधिक गणना फॉर्म वितरित, अब डिजिटाइजेशन पर दिया जा रहा जोर। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। और चंपावत जिले में मां पूर्णागिरि मेला संपन्न, इस वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: सौ 5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे बेताब फिल्म से ये गीत, आवाज थी शब्बीर कुमार के साथ लता मंगेशकर की। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत बाजीगर फिल्म से। गीत को आवाज दी है विनोद राठौर और अलका याग्निक ने। अनु मलिक का संगीत है, गीतकार हैं गौहर कानपुरी।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अमित कुमार के साथ कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम निश्चय। धुन तैयार की है OP नैयर ने। शब्द रचना है कमर जलालाबादी की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 1:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ।

0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
1: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती भी झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों।
2: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
3: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
2: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
3: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
2: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
4: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
5: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
4: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
5: यस। साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
2: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
3: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
6: सू
4: जी,
6: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
4: जी हाँ
6: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
4: जी डॉक्टर साहब।
6: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
4: मैं पूछती हूँ।
2: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
3: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
7: 15, 14
4: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
7: 13, 12, 11

0: जॉन से?
1: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉनसी को झकझोरा और पूछा,
0: क्या गिन रही हो?
1: 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
1: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
3: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
0: जॉनसी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
1: 6, now it's 6, 5, 4। ओह,
0: जॉनसी, जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
1: Only 4।
0: मेरी तरफ देखो।
1: सू, only 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
0: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
1: 3 पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ, हाँ।
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं। और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉनसी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओ जॉनसी।
3: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
2: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
3: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
2: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
3: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
2: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: 2। ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
3: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
3: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
3: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
1: सू, मेरी दोस्त।
0: हाँ जॉन्सी।
1: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
3: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू।
0: हाँ जॉन्सी।
1: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
0: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
0: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
0: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
0: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
0: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
0: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
0: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
0: जॉन्सी।
1: एक
0: बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
0: वो मिस्टर बेरमैन

0: उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बैरमैन? वही बुरे कलाकार?
0: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
0: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
0: हाँ वही मिस्टर बैरमैन।
1: ओ गॉड,
0: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सु?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सु ने कहा,
0: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
1: हाँ सु, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सु, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉनसी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सु।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सु, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सु।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ।
1: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपने श्रोताओं को पुनः याद दिला दें, 4:02 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अता हुसैन खान से तबला वादन झप ताल पर और 3 ताल पर। सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा फिल्म संगीत 2:30 पर। 3:02 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गाने नए तराने। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। दोपहर के 2 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे।
5: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NEET-UG retest. Message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from centre and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a 2-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi in a social media post noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini.

0: stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in the opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Evian, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month ahead of NEET UG retest. Message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तीन दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित।

0: प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन जागृति यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
0: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए

0: अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: सौ 5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक साथियों, जय हिंद। सैनिक साथियों, इतिहास गवाह है कि हमारे देश पर जब भी बाहरी दुश्मनों ने आक्रमण किया है तो दुश्मनों ने हमेशा मुंह की खाई है। हमारा इतिहास भरा हुआ है वीर जवानों की वीरता की कहानियों से। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे ही वीर जवान की जिनका जीवन साहस, कर्तव्य निष्ठा, वीरता और बलिदान की मिसाल है। उनका नाम था मेजर विवेक सिंह भंडराल। इनके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगाह

श्रोताओं, मेजर विवेक भंड्राल का जन्म आज ही के दिन यानी 16 जून सन 1970 को हैदराबाद में एक सैन्य परिवार में हुआ। उनके पिता थे कर्नल प्रीतम सिंह भंड्राल, जो भारतीय सेना में अधिकारी थे। बचपन से ही विवेक के मन में देश सेवा का जज्बा था और उन्होंने अपने पिता के पदचिह्नों पर चलने का निश्चय बचपन में ही कर लिया था।

श्रोताओं, मेजर विवेक ने अपनी शिक्षा विभिन्न सैन्य नगरों में प्राप्त की और बाद में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा CDS उत्तीर्ण कर भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया। वर्ष 1992 में वो भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। बाद में अपनी अद्भुत क्षमता और साहस के बल पर उन्होंने 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस जैसी विशिष्ट इकाई में स्थान प्राप्त किया।

श्रोताओं, मेजर विवेक सिंह भंडराल ने असम में ऑपरेशन राइनो, कारगिल युद्ध और जम्मू कश्मीर में अनेक आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। 29 अगस्त सन 2002 को जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में आतंकवादियों के विरुद्ध एक अभियान के दौरान उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया। अपने घायल साथियों की सुरक्षा करते हुए उन्होंने आतंकवादियों का मुकाबला किया और मिशन को सफल बनाया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी और राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। हम नमन करते हैं इस वीर सपूत को।

श्रोताओं, मेजर विवेक सिंह भंडराल का जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य, साहस और देश प्रेम किसी सैनिक की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। और इसी के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। यह आकाशवाणी देहरादून है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मुद्दता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से जुड़े मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शिक्षक संगठनों से वार्ता कर व्यावहारिक और सुसंगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे धामों में कैमरे से यात्रियों की निगरानी के साथ ही उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान और यात्रा संचालन की सतत निगरानी की जा रही है। सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व के बाद नगर निगम हरिद्वार ने रात भर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर प्रमुख घाटों और सार्वजनिक स्थलों को साफ किया। इस दौरान 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित कर निस्तारण किया गया। पौड़ी के उप जिला निर्वाचन अधिकारी FR चौहान ने जिले में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को 17 जून तक गणना प्रपत्रों का 100% वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देहरादून जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं ताकि कार्यक्रम का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। चंपावत जिले में लगभग 3.5 महीने से चल रहा मां पूर्णागिरी मेला संपन्न हो गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस वर्ष मेले में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 3:02 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, गाने नए तराने।

उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी टशन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोहम चक्रवर्ती की आवाज में। फिल्म का नाम लाइफ इन मेट्रो। संगीत प्रीतम का, गीतकार सईद क्वादरी।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नेहा भसीन की आवाज़ में, फिल्म का नाम टाइगर जिंदा है, इरशाद कामिल की शब्द रचना है, संगीत विशाल शेखर का।

अभी आप सुन रहे थे पैपॉन की आवाज में ये गीत, फिल्म थी बजरंगी भाईजान। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, चिन्मय श्रीपर्दा और अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, आवाज थी उदित नारायण की। फिल्म का नाम था और प्यार हो गया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम सोल्जर।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म संगीत गाने नए तराने का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला तराना आप तक पहुंच रहा है उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या। समीर की शब्द रचना को संगीतमय किया है जतिन ललित ने।

आशा भोसले और अभिजीत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म का नाम वीर ज़ारा।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत गाने नए तराने FM 107.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 4 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्रता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब देने के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि विभाग इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें। गढ़वाल मंडलायुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि प्रदेश में चार धामों सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कैंप कार्यालय से स्वीप वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जन को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची संशोधन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। उत्तरकाशी जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोशियाड़ा में मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया। युवाओं को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के महत्व की जानकारी दी गई। पौड़ी जिले में राशन कार्डों का सत्यापन अभियान लगातार जारी। इसके तहत अपात्र, मृतक, स्थानांतरित और अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों की पहचान कर अब तक 7,799 राशन कार्ड निरस्त किए गए। देहरादून जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं ताकि कार्यक्रम का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। चंपावत जिले में लगभग 3.5 महीने से चल रहा मां पूर्णागिरि मेला संपन्न हो गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि इस वर्ष मेले में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: 107.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। समय 4:02 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में सुनिए अता हुसैन खान से तबला वादन। पहले आप प्रस्तुत कर रहे हैं झपताल। सारंगी पर आपके साथ संगत दे रहे हैं लियाकत अली।

FM 107.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अता हुसैन खान से ही तबला वादन। अब आप प्रस्तुत कर रहे हैं तीन ताल।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अता हुसैन खान से तबला वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 107.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम एक कलाकार में। श्रोताओं आज का कार्यक्रम केंद्रित है डिस्को किंग और महागुरु साथ ही दादा के नाम से विख्यात प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। आज मिथुन दादा का जन्मदिन भी है तो आकाशवाणी परिवार की ओर से मिथुन दादा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन्हीं की अभिनीत फिल्म प्यार झुकता नहीं है के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। उनका जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हुआ। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की और संघर्षों के बाद फिल्मी जगत में अपनी पहचान बनाई। बातें और भी करेंगे इनके बारे में, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं इन्हीं के द्वारा अभिनीत फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा से ये कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, मिथुन चक्रवर्ती ने सन 1976 में आई फिल्म मृगया से अपना करियर आरंभ किया और इसी फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। शुरुआती सफलताओं के बाद मिथुन दादा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली लोकप्रियता मिली सन 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार जिमी बहुत पसंद किया गया। साथ ही उनके शानदार डांस ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि रूस और कई अन्य देशों में भी सुपरस्टार बना दिया। तो आपको सुनवाते हैं वही गीत जिसने इन्हें दिया सुपरस्टार का दर्जा।

श्रोता, हम बात करें उनकी प्रमुख फिल्मों की, तो उसमें है डिस्को डांसर, डांस डांस, प्यार झुकता नहीं, गंगा जमुना सरस्वती, अग्निपथ, मृगया, गुलामी, स्वर्ग से सुंदर, परिवार, रोटी की कीमत, जीते हैं शान से, इलाका, प्रेम प्रतिज्ञा, कमांडो, दाता। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें हैं 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया। फिलहाल आपको सुनाते हैं इन्हीं पर फिल्माया एक और गीत, इन्हीं के द्वारा अभिनीत फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से।

श्रोताओं, अभिनय और नृत्य की दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद मिथुन दादा ने राजनीति में भी उपस्थिति दर्ज कराई। वो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और कला और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इसी के साथ सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत इन्हीं की अभिनीत फिल्म डांस डांस से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार FM 7.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेनदेन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में

0: बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य की में आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीता कुकरेती की काव्य पाठ, राजीव शर्मा की कहानी मेरे लाल और ज्ञानी रोहताश्रम की वार्ता, गुरु अर्जुन देव का जीवन दर्शन। कार्यक्रम सरकार के 12 साल प्रसारित किया जाएगा रात्रि 8:10 पर और रात्रि 7:50 पर। अब से कुछ ही पलों में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसके ठीक बाद संध्या 5:45 पर प्रसारित किया जाएगा पर्वत्यांचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोक कवि गोष्ठी, प्रतिभागी होंगे हेमवती नंदन भट्ट, मुकेश हटवाल और संजय सती। साय 7 बजे कार्यक्रम कृषि जगत में आज किसान साथी सुनेंगे पवन कोठारी से भेंट वार्ता, विषय रहेगा जेलों में व्यावसायिक गतिविधियां।

कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम वंदना और प्रातः 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। प्रातः 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में कल होगी डॉक्टर सुधांशु कालरा से विकास चमोली की बातचीत, विषय रहेगा COPD कारण लक्षण और उपचार। 8:30 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। 7:30 के स्वर में गाए कुमावनी लोकगीत आप सुनेंगे शैल संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और सुबह 10:35 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विजय सिंह सैलानी के स्वर में गाए गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम जनानों का वास्ता प्रसारित किया जाएगा 12:30 पर। कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे डॉक्टर अनीता रावत की वार्ता विज्ञान का क्षेत्र मां नौनी। 6:00 के कार्यक्रम में 4:02 पर सुनिएगा भगवान दास मिश्र का सारंगी वादन। 15 फिल्मी गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में प्रातः 11:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:11 पर, दोपहर 1:15 पर, अपराहन 3:02 पर, सायं 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:00 और सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: मंगलवार की ये खूबसूरत शाम नई उम्मीदों की रोशनी लेकर आए। दिन भर की व्यस्तता के बाद मन को सुकून दे और चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाए।
1: हफ्ते की रफ्तार के बीच ये ट्यूसडे की शाम कुछ पल ठहरने का अवसर दे, सपनों को नई उड़ान दे और आने वाले दिनों के लिए उत्साह से भर जाए। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके दोस्त और होस्ट, मैं शिवानी कंडवाल
0: और मैं आयुषी भट्ट। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी। और आज की इस शाम को और भी इंटरेस्टिंग और भी खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म गुजारिश से, जिसे आवाज़ दी है सुनिधि चौहान और साहिल हड्डा ने।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें।

0: bis.gov.in पर।
1: दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की असली पहचान उसके स्वाद और संस्कृति में छुपी होती है,
2: और हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन केवल भोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पहाड़ के जीवन की कहानी भी बताते हैं।
1: और आज के समय में यही पारंपरिक स्वाद लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार का नया और सफल माध्यम भी बनता जा रहा है।
2: सही कहा आयुषी, पर्यटन के बढ़ते प्रभाव और लोगों की ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड की ओर बढ़ती रुचि ने पहाड़ी व्यंजनों को देश विदेश में भी नई पहचान दिलाई है।
1: होम स्टे से लेकर क्लाउड किचन और ऑर्गेनिक पैक्ड फूड तक पारंपरिक पहाड़ी भोजन आज एक तेजी से उभरते नए बिजनेस बन चुका है।
2: दोस्तों, पहाड़ी व्यंजनों की बढ़ती लोकप्रियता, भट्ट की चुटकानी, काफुली, झंगोरे की खीर और भांग की चटनी जैसे हमारे जो पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन हैं, उनकी मांग पर्यटकों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच बढ़ती ही जा रही है।
1: और इन व्यंजनों में प्राकृतिक और पौष्टिक तत्व मजबूत होते हैं दोस्तों,
2: बिल्कुल,
1: जो इन्हें और भी खास बनाते हैं।
2: रोजगार और व्यवसाय के भी कई प्रमुख तरीके हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों बात करें होम स्टे और कैफेज की, तो लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित करके पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देने के साथ साथ पारंपरिक पहाड़ी थाली भी परोस सकते हैं। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और स्वाद का वास्तविक अनुभव मिलता है।
1: साथ ही स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग की जा सकती है। पारंपरिक स्नैक्स जैसे मंडवे के बिस्किट, अरसा और मसालों जैसे जखिया को और आकर्षक पैकेजिंग के साथ बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिलेगी।
2: वहीं दोस्तों, इसके अलावा क्लाउड किचन और डिलीवरी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। बिना बड़ा रेस्टोरेंट खोले केवल ऑनलाइन ऑर्डर्स और डिलीवरी के माध्यम से देहरादून जैसे बड़े शहरों में लोगों तक शुद्ध पहाड़ी भोजन पहुंचाया जा सकता है। ये कम लागत में शुरू होने वाला एक बहुत ही सफल व्यवसाय बन रहा है।
1: दोस्तों, फूड व्लॉगिंग भी एक अच्छा जरिया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों की रेसिपी और उनकी विशेषताओं को लेकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। विज्ञापन और प्रायोजन के जरिए अच्छी कमाई भी की जा सकती है।
2: बिल्कुल दोस्तों, उत्तराखंड के व्यंजन हमारी संस्कृति और परिवेश की झलक दिखाते हैं, जिन्हें पर्यटन के माध्यम से एक नया और ग्लोबल मंच मिल रहा है।
1: साथ ही पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन केवल स्वाद तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि ये रोजगार, आत्मनिर्भरता और संस्कृति संरक्षण का मजबूत माध्यम भी बन रहा है।
2: बिल्कुल, यदि सही दिशा, मेहनत और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए तो पहाड़ का ये पारंपरिक स्वाद लाखों लोगों के लिए स्वरोजगार का सफल अवसर बन सकता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को अपनाकर उन्हें दुनिया तक पहुँचाएं,
2: क्योंकि जब स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचता है तब केवल भोजन नहीं बल्कि पूरी संस्कृति पहचान बन जाती है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम में एक खूबसूरत ट्रैक, मोहित चौहान की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी क्रूक।

0: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और भारतीय सेना से बड़ा कोई गर्व नहीं।
1: हर युवा के दिल में एक सपना होता है दोस्तों, वर्दी पहनकर देश की रक्षा करने का।
0: और भारतीय सेना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक है।
1: और आज के समय में भारतीय सेना युवाओं को उनकी योग्यता और शिक्षा के अनुसार कई शानदार अवसर प्रदान करती है, जिनके माध्यम से वे एक अफसर बनकर देश की सेवा कर सकते हैं।
0: भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए ग्रेजुएट्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग एंट्री स्कीम्स उपलब्ध हैं दोस्तों।
1: सबसे पहले दोस्तों, 12वीं पास छात्र किसी भी स्ट्रीम से पास हुए हों, संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन के बाद उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देकर सेना में अफसर बनने का मौका मिलता है।
0: इसके अलावा दोस्तों, वे छात्र जिन्होंने 12वीं में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विषयों के साथ निर्धारित परसेंटेज प्राप्त किया है, TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से सीधे SSB इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: साथ ही दोस्तों, ग्रेजुएट छात्र जो हैं वो UPSC द्वारा आयोजित CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और SSB इंटरव्यू के माध्यम से भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC प्राप्त कर सकते हैं।
0: इसके अलावा दोस्तों, वे छात्र जिनके पास NCC का सी सर्टिफिकेट है और ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक हैं, वो बिना लिखित परीक्षा के सीधे SSB इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: इंजीनियरिंग डिग्री BE BTech के अंतिम वर्ष के छात्र या ग्रेजुएट छात्र TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स या SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री स्कीम्स के माध्यम से सीधे SSB इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों।
0: और दोस्तों, LLB ग्रेजुएट छात्र JAG एंट्री यानी कि जज एडवोकेट जनरल के माध्यम से भी भारतीय सेना में अफसर बनने का अवसर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों, भारतीय सेना युवाओं के लिए सिर्फ करियर नहीं देती बल्कि जीवन में अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और देश सेवा का गौरव भी बनती है।
0: बिल्कुल, चाहे आप 12वीं के छात्र हों, ग्रेजुएट हों, इंजीनियर्स हों या डॉक्टर, भारतीय सेना हर योग्य युवा को देश के लिए कुछ बड़ा करने का अवसर देती है।
1: साथ ही दोस्तों, MBBS पास डॉक्टर्स के लिए आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एक बेहतरीन अवसर है, जिसके माध्यम से वे सेना में मेडिकल ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर सकते हैं।
0: दोस्तों, भारतीय सेवा में आवेदन करने, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस या लेटेस्ट डेट्स की जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है joinindianarmy.nic.in।
1: यदि आपके अंदर साहस, समर्पण और देशभक्ति की भावना है तो भारतीय सेना आपका इंतजार कर रही है दोस्तों,
0: क्योंकि कुछ सपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जिए जाते हैं। और इसी के साथ आइए सुनते हैं दलेर मेहंदी और शाश्वत की आवाज में ये खूबसूरत गीत फ्रॉम द मूवी उरी।

0: दोस्तों कहते हैं पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ी समझदारी। और अब हम इसी समझदारी के बारे में बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आयुषी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो किताबों में कम और ज़िंदगी में ज़्यादा काम आता है, और वो है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस।
0: वैसे शिवानी, अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन इनमें एक बारीक अंतर है। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आर्थिक साक्षरता, जिसका मतलब है पैसे से जुड़े बुनियादी ज्ञान और कौशल का होना।
1: मतलब आपकी राय और खर्च का हिसाब रखना, बजट बनाना, बचत करना, निवेश के विकल्प समझना, बैंकिंग सेवाओं का सही उपयोग करना और दोस्तों भविष्य की आर्थिक योजना बनाना।
0: बिल्कुल, उदाहरण के लिए अगर किसी युवा को ये पता है कि हर महीने अपनी आय का कितना हिस्सा बचत में रखना है, EMI लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या निवेश करते समय जोखिम और लाभ को कैसे समझना चाहिए, तो ये है फाइनेंशियल लिटरेसी।
1: बिल्कुल, और वहीं दूसरी ओर दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी आर्थिक जागरूकता, जिसका मतलब है आर्थिक दुनिया में हो रहे बदलावों, अवसरों और खतरों के प्रति सजग रहना।
0: जैसे कि डिजिटल पेमेंट करते समय सावधानी बरतना,
1: बिल्कुल
0: साइबर फ्रॉड के नए तरीकों के बारे में जानना, बैंक की नई सुविधाओं की जानकारी रखना, सरकारी योजना से परिचित होना और ये समझना कि कौन सी निवेश योजना भरोसेमंद है और कौन सी नहीं।
1: यानी कि अगर सरल शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बताती है कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे करें, जबकि फाइनेंशियल अवेयरनेस हमें ये सिखाती है दोस्तों कि बदलती हुई आर्थिक दुनिया में सजग और सुरक्षित कैसे रहना है।
0: और आज के समय में ये दोनों किसी भी युवा के लिए उतनी ही जरूरी है दोस्तों, जितनी अच्छी शिक्षा और सही करियर की दिशा।
1: सही कहा, क्योंकि डिग्री हमें नौकरी दिला सकती है, लेकिन आर्थिक समझ हमें जीवन भर सही फैसले लेने की ताकत देती है दोस्तों।
0: तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या है और इनमें क्या अंतर है, लेकिन क्या ये केवल बड़े लोगों के लिए ज़रूरी है या हम युवाओं के लिए भी ये ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे गाने के बाद। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। गाने के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर युवाओं के लिए आर्थिक समझ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना सुनते हैं।

0: दोस्तों, गाने के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं 100.5 MHz पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और आपके साथ बने हुए हैं मैं यानी शिवानी, और मेरे साथ
1: आयुषी।
0: तो दोस्तों हम गीत से पहले बात कर रहे थे फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में।
1: शिवानी, वैसे अगर आज आपके खाते में अचानक 10,000 रुपये आ जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? खर्च, बचत या निवेश?
0: आयुषी, मैं तो बचत के लिए

0: थोड़े पैसे साइड रखूंगी।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे शिवानी, आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं की दुनिया पहले से बदली है या वैसे ही है?
0: आयुषी, मुझे लगता है कि आज का युवा पहले से कई अधिक अवसरों से घिरा हुआ है, जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन कमाई, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल लेन देन, और काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं भी बढ़ रही हैं और चुनौतियां भी।
1: बिल्कुल, लेकिन सोचिए, अगर किसी युवा के हाथ में पहली सैलरी आए और उसे ये पता ही ना हो कि खर्च कितना करना है, बचत कितनी करनी है, भविष्य के लिए क्या योजना बनानी है, तो कमाई होने के बावजूद आर्थिक तनाव पैदा हो सकता है, क्यों, है ना?
0: बिल्कुल, युवावस्था में अक्सर हम अपनी इच्छाओं को ज़रूरत समझ बैठते हैं। नए गैजेट्स, फैशन, ऑनलाइन सेल, आसान EMIs, ये सब हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन बिना योजना के किया गया दोस्तों ये खर्च बाद में परेशानी का कारण भी बन जाता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि कमाई शुरू होते ही 3 आदतें विकसित करनी चाहिए, जैसे सबसे पहले बजट बनाना, दूसरा नियमित बचत करना और तीसरा आपातकालीन निधि के लिए तैयार करना।
0: बिल्कुल सही कहा आयुषी, और निवेश के बारे में भी शुरुआती जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़े आर्थिक सहारे में बदल सकती है।
1: बिल्कुल, और आज के डिजिटल इंडिया के दौर में अधिकांश युवा UPI और ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ साइबर सेफ्टी की समझ भी होनी उतनी ही आवश्यक है।
0: बिल्कुल दोस्तों, किसी अनजान लिंक पर बिल्कुल हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लालच देने वाली निवेश योजनाओं से भी बचना चाहिए, और जानकारी जो है उसकी पूरी पुष्टि करनी चाहिए। ये छोटी छोटी सावधानियां जो हैं दोस्तों, ये हमें बड़ी सुरक्षा देती हैं।
1: फाइनेंशियल अवेयरनेस हम युवाओं को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के आर्थिक निर्णयों में भी सहभागी बनने का आत्मविश्वास देती है दोस्तों।
0: दोस्तों, जब युवा आर्थिक रूप से जागरूक होते हैं तो वे कर्ज के जाल से भी बचते हैं, भविष्य के लिए तैयारी भी करते हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
1: साथ ही दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी उन्हें नए रास्ते दिखाती है।
0: बिल्कुल, दरअसल दोस्तों, आर्थिक शिक्षा का संबंध केवल पैसों से नहीं बल्कि जिम्मेदार निर्णय लेने से भी होता है, और ये हमें सोच समझकर आगे बढ़ना भी सिखाती है, जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत काम आता है ना आयुषी?
1: बिल्कुल, तो प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अच्छी कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है अच्छे आर्थिक समझ, क्योंकि पैसा कमाना सफलता की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसकी सही प्रबंधन स्थायी सफलता यानी लास्टिंग सक्सेस की पहचान बनती है।
0: बिल्कुल सही कहा आयुषी, और आज ही अपने आर्थिक भविष्य की नींव दोस्तों मजबूत कीजिए। खर्च करने से पहले ज़रा सोचिए, बचत की आदत डालिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड जानकारी जुटाइए और जागरूक भी बनिए, और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए।
1: क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त युवा ही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है, और हम युवाओं के सपनों को उड़ान तभी मिलती है जब मेहनत के साथ आर्थिक समझ भी जुड़ती है। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल अवेयरनेस सशक्त भविष्य की मजबूत बुनियाद है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, आनंद राज आनंद, श्वेता पंडित की आवाज़ में, फिल्म वेलकम से।

0: दोस्तों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का।
1: मगर जाने से पहले दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम कैसा लगा। आप हमें पत्र द्वारा ज़रूर बता सकते हैं। हमारा पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युवाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, और हमारा पिन कोड है 2480001। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731।
0: साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youddn@gmail.com।
1: इसी के साथ आप मुझे यानी शिवानी कंडवाल
0: और मुझे यानी आयुषी को दीजिए इजाज़त।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युफानी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम का सभी सुनदारों तय आपका दगड़िया जयप्रकाश पवार की तरफ बिटिन सेवा स्वामी नमस्कार। कभी बरखा बतवाणी कभी फुल पटांग घाम और मैनु जून को होती अंत होनी च भाई हैं फंड फूका कम से कम बीच बीच में बरखा होनी रहो तो जो बौण फूकेणा छा जंगल फूकेणा छा कहीं स्कूलों पर आग लगनी कहीं मकानों तक आग पहुँचनी तो कम से कम कुछ राहत मिली। अब मौसम को यो बदलाव जो होनो च यो पूरी दुनिया में होनो चो और बतौड़ा जिनके लगभग 2 डिग्री को जो च तापमान बढ़ने की संभावना च बल भविष्य में। अब आप लगा 2 डिग्री तापमान बढ़ने को मतलब च कि पूरी धरती में तापमान अधिक होने से न सिर्फ धरती जंगल से लेके और समुद्र तक, अगर समुद्र के पानी में भी 2 डिग्री तापमान बढ़ गए तो पता नहीं कितने जो मत्स्य संपदा ची वो समाप्त हो सकती और पानी का छोया सूख सकदन। बहुत सारी समस्याएं छिन लेकिन वे का वास्ता वैकल्पिक उपाय करने की भी जरूरत है। अब आजकल देखा आप कि पेट्रोल डीजल गैस की जो चीज मारा मारी हुई है पूरी दुनिया में है और वे का बाद भी हम लोग सोचना नहीं चाहे कि हर एक आदमी एक एक कार लेते जानो चु अकेला मोटरसाइकिल में जानो चु स्कूटर में जानो चु ये नहीं भाई कि विदेश अगर कोई और भी जानो तो दगड़ा में जाओ भाई कोई ऑफिस में जाना चाह दगड़े तो सभी लोग मिली जुली तय जावा एक कार को इस्तेमाल कर ला 5 कार नहीं चल ली तो कम से कम ये से जो हमारो जो ऊर्जा वे माँ जो बचत हो सकती है। अभी देखा जब आजकल आपन सुनी बोले कई कहानी होनी चाहिए कि भाई कि लोग ये डीजल पेट्रोल से बचने का वास्ता गैस से बचने का वास्ता गोबर गैस प्लांट से अपनों काम चलाना चाहिए। अब जब जो लोग गाँव में छिन्न जख गोर भैंसा पालना चाहिए भाई कम से कम वक्त गोबर गैस तो पैदा कर ही जा सकती है। ये छोटा छोटा उपाय छिन्न जैसे कि जनकी बना आप मोबाइल ते भी जो अपना सोलर ऊर्जा जो मतलब सूर्य ऊर्जा का बहुत सारा उपाय छिन्न वहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं कर दे छिन्न जो डोखरा बाखरा तोड़ छिन्न जंगलों में दूर दराज इलाकों में छिन्न वो लोग जो छिन्न मोबाइल चार्ज वहीं से करना छिन्न हैं तो वो भी एक उपाय छी। छोटी छोटी बात छिन के अब घरे में देख ला जो मोटी दाल होंगी अगर वह थोड़ा पानी में भिजाई तो रख ला तो 2-3 सिटी में ही काम हो जा लेकिन लोग ये चीज़ तो ध्यान नहीं देना। तो ये छोटी छोटी बात छिन जो पर बहुत बड़ो फायदा जो चाहे हम तय मिल सकदो और ये प्रयास रहो कि भाई की जो बात विचार छिन वो आपस में हमारा श्रोता छिन वो सुन और वो पर विचार करून और अपना सुझाव भी दून। तो यही वजह से हम बार बार धैर्य भी लगाना भाई कि आप चिट्ठी पत्र भेजा हम तय अपना विचार भेजा और अपनी जो पसंद नापसंद वे के बारे में अभी लिखा तो आदान प्रदान जब हम श्रोताओं से जुड़ ला श्रोता हमसे जुड़ ला तो बहुत सारी जानकारियों को आदान प्रदान हो सकते और वैसे सभी लोग फायदा उठा सकता। कार्यक्रम में आज बात कर ला आज कार्यक्रम में शामिल करना छा एक लोक कवि गोष्ठी जयमा भाग ले ला कवि गीतांग श्री हेमवती नंदन भट्ट हेमू श्री मुकेश हटवाल और श्री संजय सती और कवि गोष्ठी को संचालन कर ला श्री मुकेश हटवाल। तो कार्यक्रम तो अंगना बढ़ोना और चलना कुमाऊं का छोड़ सुनना एक सुंदर से कुमाऊनी गीत स्वरची गोकुल बिष्ट और दगड़ियों।

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: The all-new Nissan Revive अब CNG में
3: ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ पाइए थर्ड रो में भरपूर स्पेस, 24 किलोमीटर पर केजी की शानदार माइलेज और पूरे सुकून के लिए 3 साल की वारंटी। लाइफ को अपग्रेड कीजिए Nissan Revive CNG के साथ 7 सीटर, जो है 140 करोड़ भारतीयों से प्रेरित।
2: सिर्फ 6.48 लाख से शुरू। आज ही अपने नजदीकी निशान डीलरशिप पे जाएं। शर्तें लागू।
4: संपर्क करें पाल निशान शोरूम हल्द्वानी, मोबाइल नंबर 8477008200।
5: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
6: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
7: तो दगड़ियों, अभी आप सुनना चाह कुमाऊनी गीत स्वर छो गोकुल सिंह बिष्ट और दगड़ियों को। तो हम कार्यक्रम में मौसम बदलाव की बात करना चाह कुछ देर पहले, और आजकल एक मतलब वैज्ञानिकों नए नए तरीका खोज लेने की भाई, कि कृषि का साथ साथ जो छ उद्यान भी, यानी कि फल फ्रूट वाला डाला भी लगा सकते हैं। बल अब हमारा पहाड़ में 12 अनाज बोल चाह, मैंने एक खेत में साल भर में 12 किस्म अनाज बन चाह, यानी कि अगर कखी गेहूँ बोतना छ तो उदगड़ी वे टाइम पर जो फसल पात और वे सक दिन वे का साथ साथ। यही तरीके से जब धान की फसल लगाना वक्त हों तो वे टाइम पर और भी बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारा जो छ दाल वगैरह कई चीज़ पैदा हो जाते हैं। तो 12 अनाज जो छ एक खेत में छा। और यही तरीके से अब बताए उन्होंने चाहिए भाई कि अब मौसम बदलाव होगी तो कई बीज समाप्त होगी ना, कहीं जो सूख होगी, कहीं जो जख पानी की सिंचित खेती चाहे वो खेती नहीं होनी, अब सूखी खेती होनी चाहिए। तो वे का साथ साथ अब बदलाव की भी जरूरत है, और आप अपना जो परंपरागत जो खेती चाहिए वे का साथ साथ वो दगड़ी आप फल फ्रूट का डाला लगा सकते हैं। जो गर्म इलाका छिन भाई, वह गर्म वाला जो आम का पेड़ होगी ना, आपका अमरूद होगी ना, या कुछ यही तरीका का जो कि आपका खेती का हिसाब से जो काम हो सको, जय मैं फल फ्रूट हो सकूँ, और दुई काम हो जाऊँ, अनाज भी मिल जाओ और उद्यान भी आपको एक साथ चल सको। तो कई तरह का यानी खेती का बारह माह, उद्यान का बारह माह बहुत सारा विशेषज्ञ हमारा गांव गांव तक पहुँचना छ। और कई बार इन कि लोग जो छ बगल में जो डाला बूटा बेचना छ, लेकिन कई लोग डर का मारगा भाई कि ना ना ना, मन तो बदन नहीं चाप होता है। तो बदलाव जरूरी है, और समय के साथ बदलाव यानी कि जन की मौसम बताएं लगातार बदलना चाहिए, खेती का तौर तरीका बदलने की जरूरत है, नई प्रजातियों तय जो लगाने की जरूरत है। तो ये दिशा में भी हम तय जरूर सोचना पड़ लो। तो कार्यक्रम तक नहीं बढ़ाना, जन की हम कार्यक्रम शुरुआत में बताना चाह कि आज एक लोक कवि गोष्ठी लिखते आया चाह। तो यही लोक कवि गोष्ठी की शुरुआत कर रहा है, ये माँ भाग लेना चाहिए श्री हेमवती नंदन भट्ट, मुकेश हटवाल और संजय सती, और गोष्ठी को संचालन कर रहा मुकेश हटवाल।
8: आकाशवाणी का सुंदर होते हैं सादर सेवा सोनी, आज की लोक कवि गोष्ठी माँ न्यूति आया कवि छन श्री संजय सती जी, ग्राम छिन का दसोली चमोली बटिन आप लेखक और कवि छन। उनका बगल में छन वरिष्ठ कवि ऋषिकेश बटियाया, श्री हेमवती नंदन भट्ट हेमू जी, आर्मी मुकेश हटवाल ग्रामगढ़ दसोली चमोली हाल देहरादून बटिन। आकाशवाणी की स्थापना का 90 साल पूरा होने पर मेरी हार्दिक सेवा सोनी, बहुत बहुत बधाई शुभकामना। यूं 4 पंक्तियों दगड़ी में न्यूतोण छो श्री संजय सती जी तें, 90 सालों बटे बगणी गंगा जसी पानी, खबर सार अर बात विचार मीठा गीत सुनानी, तेरी गाणी तेरी बाणी सबका मन मा स्वादी, तेरी गाणी तेरी बाणी सबका

0: तो प्यारी आकाशवाणी।
1: बहुत सुंदर। नमस्कार, मेरी रचना च मन की और मोबाइल, मोबाइल फोन की खुशी माँ सुइणों का शहर बसया छन, भीड़ भरी ये दुनिया माँ मन की अकुली हंसना छन। रील देखण की खुशी बहुत छ पर आंखियों में छुपी दर्द चा, आजकल की नई पीढ़ी चुप रह के भी बहुत घबरोल मच।
2: बहुत सुंदर।
1: रात रात भर उठण वाला पता नहीं कख बचाना च, हमारू नसीब बल हमुन लिखण तुमते क्या मतलब च।
2: बहुत बढ़िया।
1: तुमते क्या मतलब च,
2: सुंदर।
1: मन में तो की पीड़ा भी बहुत पर स्टेटस में हैसी चा, भीतर दुख भी बहुत च बल तो का प्यार में घेल चा।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: मोबाइल फोन की खुशी माँ सुइणों का शहर बसया छन, कंदूड़ों माँ ईयरफोन लग्या तो का हुईया दुनिया से दूर छन, बातों में कुछ छुपोना पर मन में कुछ गुणगुनाना छन। प्यार मिली जो सच्चो बल, प्यार मिली जो सच्चो बल, बस इतका सी चाह च, झूठी दुनिया ते देखी की सच्ची बात की राह च। मोबाइल फोन की खुशी माँ सुइणों का शहर बसया छन।
2: सुंदर।
1: न छुई बात न पुरानी अनुहार, न कैसे मेल मिलाप चा, अरे ऑनलाइन दिल धड़को दू ऑफलाइन चुपचाप चा।
2: सुंदर।
1: फोन मा फोटो अपड़ी देखी की अफी हैसण लग्या चा, आज का मन की हैसणा बहुत पर मेल मिलाप भी कम है चा। मोबाइल फोन की खुशी मा सुइणों का शहर बसया छन, भीड़ भरी ये दुनिया मा मन की अखुली हैसणा छन। बल पहाड़ों की ठंडी हवा मा सुपनियों की उड़ान भोरदा, बल पहाड़ों की ठंडी हवा मा सुपनियों की उड़ान भोरदा, अपड़ू नो दुनिया भर मा हो आजकल रीलों मा खुजोंदा।
2: बढ़िया।
1: आजकल सभियों का होंदा बड़ा बड़ा सुपनिया च, आग बहुत च भीतर तो का पर सुलकोण वाला चेंदा च।
2: बहुत बढ़िया।
1: मोबाइल फोन की खुशी मा सुइणों का शहर बसया जा, पर एक दिन फिर जरूर ओलू यनु में ते विश्वास चा, दिल से दिल जुड़ी जाला आपस मा फिर सभी बचाला, कि मोबाइल फोन को रोग छूटी जोलू फिर सब अपड़ा जन लगला, बुजुर्गों की आस भी यही च मेरी पुकार भी यही च।
2: बहुत सुंदर।
1: मोबाइल फोन की खुशी मा सुइणों
2: का शहर। अच्छा सती जी, बहुत सुंदर। अब मीनू तोणो च वरिष्ठ कवि है मुझी ते।
3: धन्यवाद हटवाल जी। मेरी कविता छ गौ माता की स्थिति पर। गौ माता डबखणी छन गाँव गाँव शहर शहरों सड़क्यों सड़क्यों देली देलियों माँ पुटगियों माँ की भूख का खातिर पर निराश हुए जानी छन लोगों की देली देलियों माँ डबकी डबकी।
2: सही बात।
3: गौ माता डबखणी छन गाँव गाँव शहर शहरों सड़क्यों सड़क्यों देली देलियों माँ पुटगियों माँ की भूखा खातिर पर निराश हुए जानी छन लोगों की देली देलियों माँ डबकी डबकी। अर तिरस्कृत हुए की फिटकार दे की लौटनी छन भूखा पेट।
1: सही बात।
3: तिरस्कृत हुए की फिटकार दे की लौटनी छन भूखा पेट, हेरा पहल्या मन की कंछा जोमु दया धर्म छो। पहल्या मन की कंछा जोमु दया धर्म छो।
2: बहुत बढ़िया।
3: जो का हिया पीड़ छे तबार लोखू माँ मनख्यात छे, गौ माता माँ बास कन वाला देव देवताओं को सम्मान छो।
2: बहुत बढ़िया।
3: उबी क्या मन की रह होला कन रह होली उमा मन ख्यात पितरों का दिन्या संस्कार।
1: बहुत सुंदर।
2: बहुत बढ़िया भाई साहब।
3: जो का हिया पीड़ छे तबार लोखू माँ मनख्यात छे, गौ माता माँ बास कन वाला देव देवताओं को सम्मान छो। उबी क्या मन की रह होला कन रह होली उमा मनख्यात पितरों का दिन्या संस्कार। वो रुपया पैसों से गरीब दिल का अमीर छा, वो रुपया पैसों से गरीब दिल का अमीर छा, 33 कोटि देव देवताओं को मंदिर मणेंदी, 33 कोटि देव देवताओं को मंदिर बोलेंदी मणेंदी पूजेंदी छे गौ माता घर घरु।
2: बहुत बढ़िया भाई साहब।
3: पूजेंदी छे गौ माता घर घरु, तब का लोग हमारा पुरखा पुराना घर घरु माँ गौशाला बने करदा छा गौ माता की सेवा, बण्या रांदा छा गौ माता का सेवादार, हमारा धर्म ग्रंथों माँ गौ माता की सेवत है पुण्य और मोक्ष जानो बाटू मणे केवल। गौ माता की सेवा सी भगवान श्री कृष्ण गोपाल बुलेनी बल, गौ माता का प्रताप सी द्वापर का द्वारिकाधीश बनिन।
2: बहुत बढ़िया। सही बात।
3: सी द्वारिकाधीश बनिन पर हमारी प्रगति विकास जमने मार भगत का दगड़े दगड़ी, हमारी आस्था हमारा संस्कार दया धर्म बात, हमें खुणे जबाल बन गए बल और जिंदगी बबाल हुए गए।
2: बहुत बढ़िया भाई।
1: सुंदर।
3: हमी खुणे जिवाल बन गए बल और जिंदगी बबाल हुए गे अब कखिनी दिखे इंदु लोखों मा गौ सेवा को संस्कार। पुरखों जन गौ सेवा को दया धर्म छुट गए बगते मार हमारा मुंड मात इन पोड़ी कि हमारे जीणो लंग ढंग ब्यूत विचार दया भव शुभ संस्कार सभ्या सभी बदलिए। अब हम गौ माता थे धुतकार देना छा और घोरम कुकर पालना छा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: अब हम गौ माता थे धुतकार देना छा और घोरम कुकर पालना छा। गौ माता की सेवा खुणे हमारी गौशाला हरचनी छन, हमारी गौशाला हरचनी छन और कुकर बिराला हमारा सिराना बैठे छन।
2: वाह।
3: कुकर बिराला हमारा सिराना बैठे छन शुद्ध मुदे विकास है रोल बॉल मा।
1: बहुत सुंदर।
3: शुद्ध मुदी विकास है रोल बॉल मा बिना सो चांठ चढ़ी आगाज लो फ्याणे मन की श्यानिल वे की दुर्मति कह दे वे थे दुर्दिना बाटू पठे दे।
1: बहुत सुंदर।
3: गौ माता की सेवा खुणे हमारी गौशाला हरचनी छन और कुकर बिराला हमारा सिरना बैठे छन शुद्ध मुदे विकास है रोल बॉल मा बिना सो चांठ चढ़ी आगाज लो फ्याणे मन की श्यानिल वे की दुर्मति कह दे वे थे दुर्दिना बाटू पठे दे। गौ माता को इन निरादर वहीं को निरादर नी गौ माता को इन निरादर वहीं को निरादर नी इतेतीस कोटि देव देवताओं को रुष्ट होनो संकेच।
2: बहुत सुंदर भाषा।
3: यु गौ माता को ही निरादर नी ये तेतीस कोटि देव देवताओं का रुष्ट होने संकेत छन। इन खजात है हमारा संस्कार गैनी तो सब विधानी चल गए।
2: ठीक बात है।
3: इन खजात है कि हमारा संस्कार गैनी तो सब विधानी चल गए विधाता रूठ गए काल बोलेगे मनखियों का निचवात करनो खातिर कल जुगो प्रभाव होलू निपटन का दिन नजीक एगिन मिजान। कल जुगो प्रभाव होलू निपटन का दिन नजीक एगिन मिजान दिखेन बैठकेन कल जुगया संकेत मनखियों का स्वभाव मा काम का जो लंग ढंग मा बात विचारों मा संस्कारों का हरचन अगने बढ़ने रौस मा दिखेना छन हमारी बुद्धि विवेक को विनाश।
2: बहुत बढ़िया।
3: दिखेना छन हमारी बुद्धि विवेक को विनाश।
2: बहुत बढ़िया।
3: धन्यवाद।
2: बोले विजान गावो विश्व मातर
3: जी। अब मैं आमंत्रित कर दो जो अभी तक हम थे न्योतना छा हटवाल साहब कविता का खातिर।
2: मेरी कविता को शीर्षक पेपर लीक
3: स्वागत।

0: पढ़े लिखे।
1: बिल्कुल सही।
0: सोची छो डाक्टर बनल सु मन माया धाप न धोरी के निर्बिजु हो तो बैरियों को पेपर जुलीक हुए।
1: बहुत सुंदर।

0: सुंदर।
1: गद्दार छन मक्कार छन धिक्कार छन दुश्मन बड़ा।
0: बहुत सुंदर सुंदर।
1: गद्दार छन मक्कार छन धिक्कार छन दुश्मन बड़ा। कन कनो मवासी उजड़ी गे पेपर कुलीक
0: सुंदर
1: हुए।
0: बहुत सुंदर बहुत
1: कन
0: सुंदर।
1: कनो मवासी उजड़ी गे पेपर कुलीक हुए। वे बाबू की आस टूटी गे परीक्षार्थियों विश्वास छूटी गे।
0: सुंदर बिल्कुल बिल्कुल।
1: वे

0: छायातों की आजों तक नींद नी टूटी।
1: सुंदर
0: जों की जिम्मेदारी छायातों की आजों तक नींद नी टूटी। अस धारियों असगार दे
1: सुंदर
0: अस धारियों असगार दे पेपर।

0: अपुन पढ़े लिखे
1: सुंदर
0: सोची छो बणलू डाक्टर मन माया धाप न धोरी के निर्बीज हो तो बैरों को पेपर कुलीक हुए।
2: अब मैं दोबारा निजोण छु अपनी एक सुंदर रचना का साथ फिर आदरणीय संजय सती जी ते
3: जी रचना जे शीर्षक सी एगी बस गया घोणी कुएड़ी लगी गे बरखा का बूंद छुम छुम पड़ी गे बड़ों मां काफल बुरास की डाली हैसन लगी गे हाँ बस ग्याल एगे घुगुती कफू रेवार लेके एगी आहा कन बस ग्याल लगी गे आहा कन बस ग्याल लगी गे छुम छुमिया बरखा पड़ी गे गाड गदिना गीत सुनोन लगी गे फ्योली का रंग ढली गे पर फ्योली का रंग ढली गे पर बस ग्याल नई उमंग भी जगेगे घुगुती बैठी चौक का कोरा मैत्यों को रेबार सुनोन लगी गे।
2: बहुत
1: सुंदर बढ़िया
2: बहुत सुंदर
3: नंदा रानी कैलाश बटी मैत्यों की सुध ल्योंदी चा लोंक दी कुयड़ी रेबार ल्योंदी छुम छुम कह की बरखा का बूंद ढोल दी।
2: बहुत बढ़िया
3: धरती माता ते सेवा लगौंदी हरी भरी सभ्यों ते कह जांदी
1: सुंदर
3: हौल लगौंदा बल्दों की घांडी बजी गे रोपणियों का दिन फिर लौटी की ऐगी हैसी खेली गौ की बेटी बुआरी झुमेला लगौंदा दूर कखी सुनेंदा दूर कखी ढोल दमो की थाप भी सुनेंदी दूर कखी ढोल दमो की थाप भी सुनेंदी धरती माता ते खुशमन कह जांदी पोथला गीत सुनोना चा निन्यारा गुणमुनाना चा सोजन लगी गे धरती को साज हरी भरी चुनरी ओड़ी की आज पहाड़ दिखोंदा अपड़ू हरी भरी साज हाँ मिछो पर्वत राज हाँ बस ग्याल एगी कन बस ग्याल एगी ऐसू बस ग्याल सभी प्रेम प्रकृति से बढ़ोला आवा एक एक डाली सभी मिली के लगोला डाली लगे की धरती को सिंगार बढ़ोला
2: बहुत सुंदर
3: फिर नया नया गीत लगोला आवा एक एक डाली सभी मिली के लगोला
2: बहुत सुंदर ई धरती को सिंगार को सजोण को सुंदर गीत का दगड़ा सती जी बहुत सुंदर रचना सुने। अब मैं दोबारा न्यूतणु छो हेमवती नंदन भट्ट हेमुजीते
1: मेरी ई कविता को शीर्षक चा अशांत पहाड़ मा पर्यटने लालसा
3: स्वागत
1: पहाड़ मा अशांति की कीमत फरे हम थे पर्यटन चेणु पहाड़ मा अशांति की कीमत फरे हम थे पर्यटन चेणु चा ऊ यख खंदवार कह जाऊन पण हम थे पर्यटन चेणु
2: वाह
1: बल हमारा पहाड़ मा रोजगार नी इले रोजगार नी इले किले की हमारा नीति नियंता भाग्य विधाता कै काम का निछन नीति नियंता भाग्य विधाता कै काम का निछन हम थे देवताओं की धरती थे अशांत कन्नो वालू पर्यटन चेणु इले हम थे देवताओं की धरती थे अशांत कन्नो वालू पर्यटन चेणु हम थे यख जगह जगहों का दरोलिया भंगलिया कुंडा बदमाश निर्लज बिना जमीर का कलुषित जया बित्या विकृत मानसिकता वालों की भीड़ चेणी छ
2: बहुत बड़े भाई साहब
1: किले की हम निकमा हो गया हमारे जमीर मोरगे हमारा हथ खुटा अलेगे नी खुटिलुलेगे नी लकवा का मोरिया छा हम इले हम उत्तराखंड की संस्कृति संस्कारों थे विकृत गनला कन्नो पर्यटन चेणु हम थे यख है साफ हवा छोया पानी न भैर वालों की गाड़ियों की लंगार चेणी धूल धुआं की रोल बोल चेणी हम थे यख औन वाला मेहमान उखड़े सड़कों का किनारा जंगलों का बीच नदियों का ओर धोर नेड़ नजीक होटल रिजॉर्ट छनछेणा उनकी ऐस मौजे खातिर
2: सुंदर
1: हम थे यख जंगलों का बीच नदियों का ओर धोर नेड़ नजीक होटल रिजॉर्ट छनछेणा उनकी ऐस मौजे खातिर और देसी अंग्रेजी विदेशी दारू का ठेका छनछेणा सड़कियों में ही गाँव गुठियार सड़कियों में ही ना गाँव गुठियार बाटा घाटा रौला पाखा और जख निखुले सकेंद सी सरकारी शराबिया ठेका उख भी हम थे चाय पानी की दुकानियों गल्ला का व्यापारियों की दुकानियों मा चैनी चराब
2: सुंदर
1: अपनी इन लालसा मा हमुन और हमारी सरकार नि सोची कि यूं न्यूत्या लोगों का स्वागत सत्कार मा शराबिया दगड़ी सवाब का ख्यालू ठुंगार का ख्यालू
2: वाह
1: किले अबनी नि बची हम्मा लखपति करोड़पति बढ़ने रोस और अपनी जई बीती मानसिकता का फेरम सोच विचारे क्षमता तब हमारी माँ बहनों को क्या होली, उनका सम्मान इज्जत रखवाली कने होली, हमारा पहाड़े मान मर्यादा को क्या होलू, किले की हम थे रुपया संचैना छकोए अपनी जमीर ईमान बीच। धन्यवाद।
2: पर्यटन पर यह सुंदर रचना अपन हेमवती नंदन हेमू जी की सुनी।
1: अभी आमंत्रित कर दो कवि और गीतकार हटवाल जी थे,
2: जन की आपने पता ची आकाशवाणी का 90 साल भेगिन 8 जून 1936 बटिन आप लोग सतत हम सब ते अपनी सेवा देना छन। तो आकाशवाणी का और सभी सुनदरा और जो जो चलने वाला लोग छन उनते बधाई का साथ मेरी एक रचना 90 साले आकाशवाणी।
1: सुंदर स्वागत।
2: 90 सालों बटी बगणी गंगा जसी पानी, खबर सार अर बात विचार मीठा गीत सुनानी, तेरी गाणी तेरी बाणी सबका मन मा स्वांदी, जुगराजी रे त्वे ते बधे जय जय आकाशवाणी। 90 सालो वेगे अब तू प्यारी आकाशवाणी, सुख दुखो कुरंत रे बार तेरा गिचान सुनी, शहरों बाजारों को खोला देश विदेशों गूंजी बाणी, जन जागरण समाचार संचार बनी बनी की धानी, जुगराज रे।

लोक गीत दा कुड़ी चाछड़ी थले चौंपला सुनाई, लोक गीत दा कुड़ी चाचड़ी थले चौंपला सुनाई, ज्ञान विज्ञान की छुई बाती दुनिया रंगीली दिखाई, ज्ञान विज्ञान की छुई बाती दुनिया रंगीली दिखाई, गीत संगीत खेती बाड़ी पाती लोक संस्कृति सजोनी, गीत संगीत खेती बाड़ी पाती लोक

गे अब तू प्यारी आकाशवाणी। गीत गजल सुनाई अबल दुखियारों मन बुथियाई, यकुलासों को दगुड़ निभे तुन हंसी खुशी फैलाई। घरों घरों रे राज तेरो तेरी हम घट घट पानी, घरों घरों रे राज तेरो तेरी हम घट घट पानी। जुगराज रे आकाशवाणी प्यारी आकाशवाणी, 90 सालों हो गए अब तू

0: सारी शान छतु अर मान छतु मिन बते भी सब नी जानी जुगराज रहते ते बदे जय जय हो आकाशवाणी नब्बे सालो भेगी अब तो प्यारी आकाशवाणी तुम ते बदे हो तुम ते बदे जय जय हो आकाशवाणी।
1: बहुत सुंदर
0: तो यह छे आज की लोक कवि गोष्ठी मी दगड़ा जो हम अपनी कविता बाँची श्री संजय सती जी छिनका दसोली चमोली बटीन ऋषिकेश बटीन हेमवती नंदन हेमू भाई साहब आर्मी मुकेश अटवाल आप सभी ते सादर नमस्कार।
2: तो दगड़ियों अभी आप सुनना चाह लोक कवि गोष्ठी और ये कवि गोष्ठी को संचालन करना चाह श्री मुकेश अटवाल। और अब कविता पाठ से अंगने बढ़ना और आप ते ली चलना गढ़वाल का छोड़ और सुनना एक सुंदर सी गढ़वाली गीत स्वर्च।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो दगड़ियों, अभी आप सुनना चाह गढ़वाली गीत स्वर छ सौरभ मैठाणी को, और अब एक बार फिर चलना जौनसार का छोड़ और सुनना एक सुंदर सी गीत, जौनसारी गीत जैत स्वर देणी छिन्न मीना।

0: दगड़ियों अभी आप सुनना चाह जौनसारी गीत स्वर छ मीना को। और अब घड़ी किसी बतानी चाहिए कि कुछ ही देर में वक्त होनु चाहिए उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो कुछ ही देर में सुनना आप उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान के जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ। स्वामी विवेकानंद। हिंदी का प्रयोग करें, इससे कार्यक्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भाषा है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में राशन कार्ड सत्यापन अभियान जारी, 7,000 से अधिक अपात्र कार्ड निरस्त। और नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने आज प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना प्रपत्र वितरण कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही इस कार्य को पूरा करने वाले जिलों को डिजिटाइजेशन पर ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को स्वयं बूथवार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घर पर अनुपस्थित मतदाताओं के सत्यापन के लिए बीएलओ और बीएलए संयुक्त रूप से जाएं और अनिवार्य रूप से 3 बार विजिट करें। डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि जिन बूथों पर वितरण और डिजिटाइजेशन की प्रगति धीमी है उन स्थानों पर अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए। बैठक में उप निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में फॉर्म वितरण पूरा हो चुका है और मतदाता अनुपस्थित मिले हैं वहां डिजिटाइजेशन के बाद ऐसी सूचियां संबंधित बूथ लेवल एजेंट्स के साथ साझा की जाएं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने खेल विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए भी जल्द से जल्द नियुक्तियां करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती आर्या ने नई खेल नीति बनाने और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने के काम को भी तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
6: आज जो है खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई। इसी प्रकार से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसको इसकी विज्ञप्ति जारी करें। इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। इसके साथ ही नई खेल नीति बननी है और नई खेल नीति में पुरानी खेल नीति में जो भी ड्रॉबैक्स रखे हैं उन ड्रॉबैक्स को पूर्ण करते हुए नई खेल नीति का भी हम जल्द से जल्द उसे कैबिनेट में हम टेबल निर्देश दिए हैं।
5: चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे धामों में कैमरे से यात्रियों की निगरानी करने के साथ ही उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान और यात्रा संचालन की सतत निगरानी की जा रही है। उपनिदेशक पर्यटन अमित लोहनी ने बताया कि अभी तक 45,000 से अधिक कॉल प्राप्त की जा चुकी हैं, साथ ही उनका निस्तारण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा में पंजीकरण करा चुके यात्रियों को व्हाट्सएप से मौसम का अपडेट भी दिया जा रहा है।
7: इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। अभी तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। और इसमें जो भी आंकड़े आते हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ, जैसे पुलिस, हेल्थ, आपदा, इनके साथ भी इनको हम साझा करते हैं और उनकी मदद से उनको उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी आती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है ये सभी विभागों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। पौड़ी जिले में राशन कार्डों का सत्यापन अभियान लगातार जारी है। इसके तहत अपात्र, मृतक, स्थानांतरित और अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों की पहचान कर अब तक 7,799 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं, जिनसे संबंधित 31,268 यूनिट भी समाप्त कर दी गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि पिछले साल सितंबर माह से राशन कार्ड सत्यापन अभियान के तहत अपात्र, मृतक और अन्य अयोग्य लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। वहीं पात्र और जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए नए राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सितंबर माह से अब तक 3,347 नए राशन कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। चंपावत जिले के विभिन्न निकायों में स्वनिधि महोत्सव के तहत लोक कल्याण मेले और शिविरों का आयोजन कर केंद्र सरकार की स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय की नगरपालिका में लोक कल्याण मेले का आयोजन कर रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी व कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि रेहड़ी पटरी वालों के परिवारों को भी सरकार द्वारा 5 विभागों की 8 योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जा रहा है।
8: एक बहुत ही लोकप्रिय जो हमारी योजना है पीएम स्वनिधि, जिसके अंतर्गत जो रेहड़ी पटरी व्यवसायी हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए लोन देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और इस योजना के साथ साथ ही हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके सभी परिजनों को 5 विभागों की 8 योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है, जिसको पीएम स्वनिधि समृद्धि स्कीम हम कहते हैं। तो इन दोनों ही जो हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसके अंतर्गत आज नगर पालिका परिषद चंपावत के सभागार में 2 दिवसीय कैंप का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और है कि जो भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक क्रेडिट कार्ड की स्कीम लॉन्च की गई है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, उसका वितरण भी हम लोग यहाँ बैंक प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित है उनके माध्यम से कराना सुनिश्चित कराएंगे।
5: हरिद्वार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान को गति देने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने आज कैंप कार्यालय से स्वीप वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप कार्यक्रम के तहत संचालित यह वाहन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आमजन को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची संशोधन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए अगस्त माह तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में राशन कार्ड सत्यापन अभियान जारी, 7,000 से अधिक अपात्र कार्ड निरस्त। और नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
10: TLI है ना?
11: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर ग्राम जगत कार्यक्रम में आप सभियों को हार्दिक स्वागत छ। मिछू आपको दगड़िया जयप्रकाश पवार। और अब चलना गद्य से पद्य की ओर और सुनना एक सुंदर सी कुमाऊनी गीत स्वर्च दीवान कनवा।

तो दगड़ियों, अभी आप सुनना चाह दीवान कर्णवाल का स्वर मायू सुंदर से कुमाऊनी गीत, और एक बार दह लगाना चाह कि भाई कि आप कार्यक्रम में जुड़ सकते, चिट्ठी gramjagat@gmail.com पर आप हमते झटपटाग वाली चिट्ठी भेज सकता, और बोल चिट्ठी पत्री कार्यक्रम भी चाहिए तो आपकी चिट्ठी होते हुए माँ भी जरूर शामिल करला। तो जानदू जानदू अब कार्यक्रम को वक्त भी होने चुप है, जान जानदू एक गीत और आपते सुने देना, स्वर्च रेखा उनियाल को।

दगड़ियों, आप अभी सुनना चाह गढ़वाली गीत स्वर और रेखा उनियाल को, और ये गीत का साथ ही अब आज को ग्राम जगत कार्यक्रम अब यकीमु संपन्न हों दो। बोल फिर मिलला, नमस्कार।

0: पर्वत्यंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी। पहली मुख्य समाचार। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोली सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को शीघ्र समाधान करे जालू। चारधाम यात्रा थे सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाण खुण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाणो छ। सोमवती अमावस्या स्नान का बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान। 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित करवे को निस्तारण करे जालू। और चंपावत जिला में मां पूर्णागिरी मेला संपन्न, ये वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करें। अब समाचार विस्तार से। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोली कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता से जुड़िया मुद्दों थे शीघ्र समाधान करे।

0: चलो यहां खुने विभागीय अधिकारियों तथा शिक्षक संगठनों से वार्ता कर व्यवहारिक और सुसंगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिया गया छे। ये संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में डॉ. रावतन बोली कि राज्य में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाला करीब 20,000 शिक्षकों की ये वर्ष महत्वपूर्ण समस्या से जुड़े सभी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन करे जालू। उन अधिकारियों थे अन्य राज्यों में टीईटी अनिवार्य था थे लेकर अपनाए गए मॉडलों पर और लिया गया निर्णयों को विस्तृत अध्ययन पर रिपोर्ट प्रस्तुतकरण को बोली। बैठक में शिक्षकों की उन पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने उच्च न्यायालय से लंबित पदोन्नति संबंधित मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करण का निर्देश दें ताकि शिक्षकों थे जल्द प्रमोशन का लाभ मिल सकुन। चारधाम यात्रा तय सुरक्षित सुगम और सुव्यवस्थित बनाण खुण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाणो छ। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये कंट्रोल रूम में 24 घंटा धामों में कैमरा से यात्रियों की निगरानी करण का दगड़ उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान और यात्रा संचालन की सतत निगरानी की जाने छ। उप निदेशक पर्यटन अमित लोहनिन बताए कि अभी तक 45,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुए चुकिन दगड़ा ही उनका निस्तारण भी करे जा चुकिन। उन बताए कि चारधाम यात्रा में पंजीकरण कर चुकिन यात्रियों थे व्हाट्सएप से मौसम का अपडेट भी दिए जाना छ।
1: इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अपने पंजीकरण हेली सेवाएं रहने की व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। अभी तक लगभग 45,000 से अधिक कॉल प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है और इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ जैसे पुलिस हेल्थ आपदा इनके साथ भी इसको हम साझा करते हैं और उनकी मदद से उनको उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी आती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है ये सभी विभागों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके।
0: हरिद्वार जिला में मतदाता जागरूकता अभियान तय गति देने का उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित आज कैंप कार्यालय बैठे स्वीप वाहन थे हरी झंडी दिखाकर रवाना करी। यह अवसर पर उन बोली कि लोकतंत्र की मजबूती खुण प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नौ दर्ज होण और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी अवश्य छ। स्वीप कार्यक्रम का तहत संचालित युवाहन जिला का सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आमजन थे मतदाता पंजीकरण मतदाता सूची संशोधन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदान का महत्व के प्रति जागरूक करलो। वही उत्तरकाशी जिला में स्वीप कार्यक्रम का तहत आज जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोशियाड़ा में मतदाता जागरूकता शिविर लगाए गए। ये दौरान युवाओं थे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण गणना प्रपत्र भरण की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नौ बने रखने की महत्व की जानकारी दिए गए।
2: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानो जे। ताजा समाचारों खुणे आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: भोल सोमवती अमावस्या का अवसर पर हरिद्वार में आयोजित स्नान पर्व में 76 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन का कारण विभिन्न गंगा घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्रित हुए जैसे नगर निगम की टीम ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर साफ करी। नगर निगम रात भर लगातार कार्य करते हुए लगभग 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित कर वे कुल निस्तारण करी। आज सुबह 4 बजे तक सभी प्रमुख घाटों और आसपास का क्षेत्रों से कूड़ा हटाकर व्यापक सफाई कार्य पूरा करेंगे। नगर निगम का अधिकारियों का अनुसार श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या का बावजूद निर्धारित समय पर सभी प्रमुख घाटों और मार्गों की सफाई पूरी करेंगे जो नगर निगम की सुव्यवस्थित कार्य योजना और कर्मचारियों की अथक मेहनत को परिणाम छ। चंपावत जिला में लगभग 3.5 महीना बटे चलणु मां पूर्णागिरी मेला संपन्न वेगे। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ये वर्ष मेला में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुन माता का दर्शन करे जबकि वर्ष भर में मां पूर्णागिरी धाम आने वाला श्रद्धालुओं की संख्या 25 लाख से अधिक रहे। उन बोली कि मेला का दौरान श्रद्धालुओं थे सुरक्षित सुगम और सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता छ जो विगत वर्ष से अच्छी रहे।
3: इस बार का मेला जो है विगत वर्षों की अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है, ये 100 दिन से ज्यादा ये मेला चला है और इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेला जो है वो बड़ा निर्बाध रूप से चला है और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी, जो जो कमियां थी उसको सुधार किया गया, उनको सभी सुविधाएं प्रदान की गई और जो श्रद्धालु सुविधाएं थे उनको और भी बेहतर किया गया। इसमें भारतीय रेल ने भी हमारा सहयोग किया, नगर पालिका और जो जिला पंचायत जो इसकी जो मूल संस्था है जो इसको चलाती है उन लोगों के द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो एक बड़ा ही अच्छे क्रियान्वयन जो है मेले का यहाँ पर किया गया है और वो मेला समाप्त हुआ, लेकिन जो हमारा जो दर्शन का कार्य है वो अभी भी निरंतर चलता रहेगा।
0: उधम सिंह नगर जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफी सफल रहे। जिला में लिंगानुपात में निरंतर सुधार वेच और बालिका शिक्षा थे बढ़ावा देण खुण जिला प्रशासन थे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जा चुकी छ। लिंगानुपात में निरंतर उन्नति का कारण उधम सिंह नगर जिला का देश का शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की सूची में शामिल करे जा चुकी छ। जिला में लिंग अनुपात बढ़ीकर 957 वेगे जो कि पहली काफी कम छो। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी ने बताया कि जिला में लिंगानुपात में क्रांतिकारी बदलाव दिखने को मिलनो छ।
4: बेटियों की संख्या अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 1000 पुरुषों पर 957 का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हमारे यहाँ आ गया है, तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हुई है, तो बदलाव तो बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हमने जो गाँव से लेकर के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सेकेंडरी विद्यालय डिग्री कॉलेजों में हमने प्रत्येक स्तर पर ये महिलाओं से बालिकाओं से टीचर्स से एक अभियान चलाया गया था कि बेटियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो, बेटी को भार न समझा जाए और बेटी को शिक्षा में उतनी प्राथमिकता दी जाए जितना एक बेटे को देते हैं, तो उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
0: गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी नागदेव रेंज का कमंद गांव में एक गुलदार पिंजरा में कैद हो गए। गुलदार थे रेस्क्यू कर स्वास्थ्य परीक्षण खून रेंज कार्यालय ले गए। गढ़वाल वन प्रभाग की एसडीसी आयशा बिस्टन बताई कि गत 15 मई थे ग्राम सभा थली का कमंद गांव में गुलदारन एक व्यक्ति पर हमला करी और वे का बाद वे की मृत्यु होगी, जैके बाद क्षेत्र में गुलदार थे कैद करण खून पिंजरा लगाए गए। साथ ही क्षेत्र में लगातार गश्त करे जाने चे उन बताई कि आज सुबेर कमंद गांव का पास लगाए गए एक पिंजरा में गुलदार कैद हुए जैथे स्वास्थ्य परीक्षण खून रेंज कार्यालय लाए गए। उन ग्रामीणों थे सतर्क रहने की अपील करी। अंत में मुख्य समाचार एक दा फिर। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतन बोली की सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को शीघ्र समाधान करे जलू। चारधाम यात्रा थे सुरक्षित सुगम और सुव्यवस्थित बनाण खुण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को देहरादून स्थित कंट्रोल रूम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाणु छ। सोमवती अमावस्या स्नान का बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान, 90 ट्रैक्टर कूड़ा एकत्रित कर वे को निस्तारण करे जालो और चंपावत में मां पूर्णागिरी मेला संपन्न, ये वर्ष 25 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करी। या के दगड़ी ही गढ़वली प्रादेशिक समाचारों को यो अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे गढ़वाली प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत मेरे यानी चंदा मलासी के साथ। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी फसल की चर्चा से जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, बेहतर पोषण और किसानों की बढ़ती आय तीनों को एक साथ जोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामदाना यानी चौलाई की खेती की। तो साथियों, रामदाना केवल एक फसल ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक समृद्धि की एक नई राह है। कहते हैं जो खेत में रामदाना बोता है वो स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों काटता है। चौलाई को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग रामदाने के लड्डू, आटा, बिस्किट और कई अलग अलग उत्पादों को खूब पसंद करते हैं। मांग बढ़ रही है तो किसानों के लिए आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, रामदाना की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये फसल कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती है, इसीलिए जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है। बुआई का सही समय जून से जुलाई का महीना होता है। खेत की अच्छी तरह जुताई कर उसे भुरभुरा बना लेना चाहिए। बीज बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें रेत या मिट्टी में मिलाकर छिड़काव विधि से या फिर कतारों में बोया जाता है। दोस्तों, किसी भी फसल की सफलता उसकी देखभाल पर निर्भर करती है। चौलाई की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है ताकि खरपतवार पोषक तत्वों की चोरी ना कर सकें। यदि बारिश कम हो तो सिंचाई का प्रबंध करना जरूरी है। विशेष रूप से फूल आने और दाना बनने के समय नमी का ध्यान रखना चाहिए। बुआई के लगभग 3 से 4 महीने बाद जब पौधों की बालियां सुनहरे रंग की दिखाई देने लगें और दाने सख्त हो जाएं, तब कटाई का समय आ गया समझो। कटाई के बाद अच्छे तरह से सुखाकर दानों को अलग अलग किया जाता है। दोस्तों, मोटे अनाजों की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में रामदाना किसानों के लिए नकदी फसल का एक अच्छा विकल्प बन सकता है। कम लागत, कम पानी और बेहतर बाजार मूल्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। तो देर किस बात की है, एक बार आप भी अपने खेतों में सोना उगा कर देखिए। दोस्तों, आइए, अब वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो सुनवाते हैं आपको ये लोकगीत।

0: सुनील घर तो चमक रहा है भाई, नई नई लाइटें।
1: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है,
0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब, प्लग, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI,
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: दोस्तों, मेरा मानना है कि जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र भी है। यदि बंदियों को विभिन्न व्यावसायिक और कौशल आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं और समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित हो सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आइए सुनवाते हैं आपको जेलों में व्यावसायिक गतिविधियां विषय पर भेंटवार्ता, जिसमें पवन कोठारी दे रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी और उनसे बातचीत कर रहे हैं मेरे सहयोगी विनय ध्यानी।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेहमान जो कि दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हुए और मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र भी उन्हें मिला है। आप हैं सुद्धोवाला जेल के जेलर श्री पवन कोठारी। स्वागत है कोठारी साहब कार्यक्रम में।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
4: आपको इतने सारे सम्मान मिलना इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं आप बंदी गृहों में एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि किस तरह के प्रयोग आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं जिनको कि आप सीधा ज़मीन पर उतारते हैं।
5: मैं काफ़ी लंबे समय से एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ 2004-05 से, कि जेल में कैदी नहीं है, मानव श्रम है। मानव श्रम भी अनुशासित मानव श्रम है। जेलों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियाँ कुशलतापूर्वक चलाई जा सकती हैं, ये शायद मेरे कार्यों का बेसिक थीम पॉइंट है
4: जी। तो आज की हमारी बातचीत का मुख्य विषय यही है कि बंदी गृहों में, जेलों में किस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, क्या जो बंदी है वो स्वेच्छा से इन व्यवसाय में जुड़ रहा है या आप लोग उसको प्रेरित कर रहे हैं।
5: हाँ, काफ़ी बंदी तो स्वेच्छा से जुड़ जाते हैं, कुछ बंदियों को हमें प्रेरित करना होता है। जब उसको हम प्रेरित करते हैं तो वो देखता है कि एक तो मेरे हाथ में हुनर आ रहा है, साथ में उसको आजीविका के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ जाता है।
4: किस तरह की खासकर व्यावसायिक गतिविधियाँ इस समय जेल में संचालित हैं?
5: बड़े स्तर पर तो हमारे यहाँ फर्नीचर का कार्य चल रहा है, हमारे यहाँ गमले निर्माण का कार्य चल रहा है। गमले IMA गमले हमसे ही लेता है, फर्नीचर हमारा शासन में जाता है, विभिन्न न्यायालयों में फर्नीचर जा रहा है हमारे जेल का बना हुआ। हमारे यहाँ शर्ट स्टिचिंग का काम चल रहा है, हमारे यहाँ सिलाई की एक बहुत बड़ी यूनिट है। हर तरह के हम कपड़े, लेडीज सूट, जेंट्स सारे कपड़े, यूनिफॉर्म, उस सिलाई का कार्य चल रहा है। लेटेस्ट अभी हमने कुछ दिन पहले ही जेल में लेदर के सैंडल और चप्पल बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। तो इस तरह की सब गतिविधियां चल रही हैं।
4: एक अभिनव प्रयोग के बारे में अभी हाल ही में हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो बंदी हैं उन्हें आप रचनात्मक कार्यों से भी जोड़ रहे हैं, यानी उनके लेखन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं
5: जी। अभी भारतीय डाक विभाग और अमर उजाला के सहयोग से जेल में पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य बंदियों के मन की भावना को पत्रों पर उकेरना था। उसकी प्रतियोगिता का विषय था, वो था मन की बात। 38 बंदी विद्यार्थियों ने, मैं विद्यार्थी बोलता हूँ बंदियों को, 38 बंदी विद्यार्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है और वो एक शायद मुझे लगता बहुत ही सार्थक पहल थी।
4: एक पत्रिका भी आपके यहाँ से निकलती है जिसमें कैदी अपनी बातों को लिखते हैं, अपने मन की जो भी उनका सृजनात्मक पक्ष है या जो कुछ भी है वो लिख देते हैं, तो ये शुरुआत कैसे और किस तरह से हुई?
5: ये हमारे यहाँ एक प्राणिक हीलिंग की डॉक्टर गिरबाला जुहैल हैं, उनका आइडिया था। तो हमने दास्ताने कारागार के नाम से पुस्तिका निकाली, जिसमें विभिन्न बंदियों ने अपनी अभिव्यक्ति को पत्रों पर और पोस्टर पर उतारा है, वो एक हमारा प्रयास रहा।
4: अब फिर बात हम कौशल की करते हैं, स्वरोजगार की करते हैं, इस कौशल को जो जांचने का, परखने का काम आप कैसे कर सकते हैं कि ये जो बंदी है, ये जो कैदी है, इसमें ये हुनर है तो इसको इस व्यवसाय से लगा दिया।
5: हाँ, जब बंदी शुरू में आता है तो हम पूछते हैं कि बाहर वो क्या कार्य करता था। बंदी बताता है कि साहब मैं सिलाई का कार्य करता था। बंदी ने बताया कि मैं प्लम्बरिंग का काम करता था। बंदी ने बताया कि मैं फैब्रिकेशन का कार्य करता था। वो जिस हुनर का होता है उस हुनर के साथ उसको अटैच करने की कोशिश करते हैं। बंदी ने बताया मैं शिक्षक था, MCA था, तो उसको हम कंप्यूटर कार्य पर लगा देते हैं। बंदी ने कहा साहब मैं बाहर MSc माइक्रोबायोलॉजी से था, तो उसको हॉस्पिटल में नर्सिंग अर्दली के कार्य में लगा देते हैं। बंदी के बाहर की एजुकेशन, बंदी बाहर क्या कार्य करता था और बंदी की अब क्या अभिरुचि है, इन सब के ब्लेंड बनाकर फिर बंदी को कार्य में नियोजित किया जाता है।
4: कितने तरह के इस समय हम चरण मान सकते हैं या वो घटक मान सकते हैं जिसमें कि व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं? जैसे आपने बताया था कि ज्यादातर फर्नीचर का, कंप्यूटर का, इसके अलावा और कुछ बेकरी का भी कुछ है?
5: हाँ, 8 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जेल में बेकरी यूनिट का उद्घाटन किया था। बेकरी की बहुत ज़बरदस्त यूनिट चल रही है। देहरादून जेल की बेकरी यूनिट के सफलतापूर्वक एक वर्ष संचालन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की सभी कारागारों में बेकरी यूनिट लगाने के निर्देश दिए। बेकरी में हमारे सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बिस्कुट है, रस्क है, बन है, पेटीज हैं, पेस्ट्रीज हैं। और एक अच्छी खबर यह भी है कि जब यहाँ न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है तो हमारी जेल से ही स्नैक्स के पैकेट बन के जाते हैं, वो हमसे परचेज करते हैं।
4: क्या बात है। चलिए, इन तमाम गतिविधियों के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब हम जब मानते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, कोई उद्यम है, कोई कुटीर उद्योग चल रहा है, उसके लिए बाजार बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो व्यवसाय बनेगा। बाजार की तलाश या उसकी खपत किस तरह से समन्वय बनाते?
5: सबसे बड़ा जो हमारा उद्योग है वो फर्नीचर है। फर्नीचर की हमारा मार्केट इतना पहले से बना हुआ है कि फर्नीचर का हम पूरे साल का हमारे पास कार्य रहता है और हमारे उसमें करीब 17 कैदी लगे हुए हैं, समय नहीं रहता है। कोर्ट है, विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान है, विभिन्न देहरादून के प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं जो अपनी बेंच वगैरह बनवाती हैं। ONGC जो CSR के तहत सरकारी स्कूलों में बेंचेस देता वो हमारे यहाँ से बन के जा रही हैं। विभिन्न प्राइवेट लोग, निजी लोग जिनको जानकारी है वो अपना व्यक्तिगत फर्नीचर बनवाते हैं, तो लगातार हमारे पास डिमांड है। फर्नीचर का ऐसा होता है, गमले जिन जिन लोगों को पता, IIM हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है, IIM हर साल हमसे गमले लेता है। इसी तरह से स्टिचिंग का है, हमारे से विभिन्न कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो अपने स्टाफ की यूनिफॉर्म हमसे सिलवाती हैं। एक सिटकुल हरिद्वार की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की यूनिट है जो लगातार मास्क हमसे सिलवा रही है। एक और बहुत अच्छी खबर मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा अपने श्रोता भाइयों को, लबासना मसूरी
4: जी,
5: वहाँ के जो बैग, कपड़े के बैग, वो हमारी देहरादून जेल बना रही है।
4: क्या बात,
5: तो इससे भी हम जुड़े हैं। तो धीरे धीरे लोगों के सहयोग से जब लोगों को जानकारी मिल रही है, ऑर्डर की कमी नहीं है। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस पर कपड़े के थैले बांटे थे वो देहरादून जेल में ही बने हैं।
4: इसके अलावा बहुत व्यापक फलक है काम का, तो कुछ कह नहीं सकते कि बहुत सारे नए नए अभिनव प्रयोग किए जा सकते हैं आगे भी। लेकिन क्या इन सब बंदियों को, हम इनकी कौशल को बढ़ाने के लिए समय समय पर जेल प्रशासन क्या जो प्रशिक्षण है उस तरह के कार्यक्रम भी संचालित करता है?
5: निश्चित तौर पर, बिना प्रशिक्षण के तो हम अप टू द मार्क प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलते हैं, ITI के उससे चलता है, विभिन्न जो टेक्निकल संस्थाएं हैं उनके सहयोग से चलता है। तो बिना प्रशिक्षण के तो हम अच्छा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारी सतत अनवरत प्रक्रिया है।
4: आजीविका से सीधा सीधा हम जब जोड़ते हैं तो मुद्रा को जोड़ते हैं कि भाई कमाई कैसे हो रही है इन लोगों की, तो वो जो कमाई का गणित है वो किस तरह से आप व्यवस्थित करते हैं?
5: जी, जेल में, देहरादून जेल में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लाभांश होता है, जो हमें प्रॉफिट होता है, वो बंदियों में वितरित किया जाता है। और साथ में हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो 12% प्रॉफिट पे बेचते हैं, वो जितना प्रॉफिट होता है बंदियों में वितरित किया जाता है। सरकार कैदियों को काम करने के एवज में एक निर्धारित वेजेस देती है।
4: अच्छा।
5: और वो जो वेजेज है वो करीब 72 रुपये पर डे है, और जो हमारे कैदी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनको 72 रुपये पर डे से हमेशा ज़्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए कैदी भी खुश रहते हैं।
4: तो इस खुशी को अगर वो बाहर तक पहुंचाना चाहें तो उसके लिए भी कभी कुछ प्रयोग हुए कि चलिए इन लोगों को सब हम एक ऐसे तकनीकी

0: संस्थान में या एक व्यावसायिक संस्थान का भ्रमण कराते हैं जहाँ ये कुछ और नया सीख के आए सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए।
1: ये आपने बहुत भविष्य की और अभिनव और दूरगामी प्रश्न लिया है। आज नहीं तो कल ऐसा जरूर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं कल जरूर होगा।
0: आम जो लोग हैं जो आपसे रोज मिलते हैं या हमारे सामान्य जीवन जो लोग जी रहे हैं उनकी सोच भी आपने देखी होगी कि इस तरह की गतिविधियों में उन लोगों का क्या कहना है।
1: नहीं, मैं जब भी समाज के संपर्क में आता हूँ, समाज के संभ्रांत लोगों से मिलता हूँ, समाज जेल के प्रयासों को अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है, बशर्ते कि हम अपना पक्ष रख सकें। मैं निश्चित तौर पर अपना जेल का पक्ष रखता हूँ, अपने कैदियों का पक्ष रखता हूँ, तो समाज एक्नॉलेज करता है।
0: चलते चलते क्या मैसेज है, क्या संदेश है आपका तमाम उन बंदी जो हैं आपके जेल के या जो समाज आपको सुन रहा है कि देखिए एक अपराधी अपराध ठीक है वो हो गया जैसे कि आप हमेशा कहते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्या उसकी जीवन की दशा को हम रोजगार से एक भले आचरण से पूरा कर सकते हैं?
1: मैं आकाशवाणी के श्रोताओं के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि एक कैदी जो जेल में है, उसने अपराध किया है, तो उसको दंड माननीय न्यायालय ने दे दिया है, उसको दंड ईश्वर अल्लाह या जो भी ऊपरी शक्ति है वो भी दे रही है। वो अपने समाज परिवार से दूर है, अब वो दया का पात्र है अगर वो नियमों के अंतर्गत रह रहा है। तो श्रोताओ, निश्चित तौर पर कैदियों के साथ एक अच्छी भावना के साथ अगर वो परिवर्तन की भावना अपने दिल में रख रहा है, तो हमें भी सकारात्मक भावना रखनी चाहिए। मैं अपनी बात को यह कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा जो हमारे राष्ट्रपिता ने कहा है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं।
0: बिल्कुल ठीक, और यही एक नवाचार है जो कि जेल में कोठारी जी प्रयुक्त कर रहे हैं और लोगों को और बंदियों को सीधा सीधा व्यवसाय से जोड़ रहे हैं जिससे कि उनकी आजीविका में भी उन्हें मदद मिल सके। कोठारी जी आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जेलों में व्यावसायिक गतिविधियों विषय पर भेंटवार्ता, जिसमें पवन कोठारी जी दे रहे थे जानकारी और उनसे बातचीत कर रहे थे विनय ध्यानी। जेलों में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना केवल बंदियों के कौशल विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि उन्हें नई पहचान और बेहतर भविष्य प्रदान करने का अवसर भी है। ये पहल सुधारात्मक न्याय की भावना को मजबूत करती है और समाज के समग्र विकास में योगदान देती है। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनवाते हैं आपको ये लोकगीत।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर रहे और मौसम की मार, कीटों के प्रकोप या फिर बाजार में कीमतों की गिरावट के कारण नुकसान हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में मिश्रित खेती किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। मिश्रित खेती का अर्थ है एक ही कृषि प्रणाली में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या फिर दूसरी कृषि गतिविधियों को भी शामिल करना है। सरल शब्दों में कहें दोस्तों, तो जब खेत और पशुधन एक दूसरे के पूरक बनकर काम करते हैं तो उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। मान लीजिए किसान अपने खेत में धान और गेहूं उगाता है, साथ ही उसके पास कुछ गायें भी हैं। खेत से निकलने वाला भूसा पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है और पशुओं से प्राप्त गोबर खेत के लिए जैविक खाद बन जाता है, तो ऐसे में मिश्रित खेती बन जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ आय के अनेक स्रोत हैं। यदि किसी वर्ष एक फसल से कुछ लाभ ना हो तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई तो नहीं पर आय प्राप्त होती रहती है और आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहती है। इसके अलावा मिश्रित खेती प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी मदद करती है। पशुओं का गोबर जैविक खाद बनकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और खेती अधिक पर्यावरण अनुकूल बनती है। किसान भाइयों, आज के समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में मिश्रित खेती लगातार लागत कम करने का काम भी करती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मिश्रित खेती रोजगार के अवसर भी बढ़ाती है। परिवार के सदस्य वर्ष भर किसी न किसी कृषि गतिविधि में लगे रहते हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है और पलायन की समस्या भी कम हो सकती है। दोस्तों, बदलते हुए कुछ समय में खेती में भी बदलाव की आवश्यकता है। केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आय को स्थिर और सुरक्षित बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिश्रित खेती इसी दिशा में एक प्रभावी कदम है। ये खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। तो दोस्तों, मिश्रित खेती को अपनाइए और अपनी कृषि को अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाइए। आइए अब चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी कर रही है कार्यक्रम को समाप्त करने का इशारा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना ना भूलिएगा। आप हमसे अपने विचार और जानकारियां भी पत्रों के माध्यम से साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने का हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी चंदा मलासी को दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमावनी में प्रादेशिक समाचार नक दगड़ में श्याम भट्ट। पहले मुख्य समाचार। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कौच, सेवारत मासाबूक लिजी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता जल्दी समाधान करी जालू, चार धाम यात्रा के सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदक देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहा, सोमवती अमावस्या स्नान के बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान, 90 ट्रैक्टर कूड़ इकट्ठे कर बेर वीक निस्तारण करेगो, और चंपावत जिले में मां पूर्णागिरी में संपन्न ये साल 25 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं दर्शन करियान। अब समाचार विस्तार। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल कौश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर काम करने मासाबों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता से जुड़ियक मुद्दक जल्दी समाधान करी जालो, एक लिजे विभागीय अधिकारियों के शिक्षक संगठनों से बातचीत करवेर व्यवहारिक और सही प्रस्ताव तैयार करनक निर्देश दी जा रही। इस संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में डॉक्टर रावतल कौश की राज्य में कक्षा 1-8 तक पढ़ोने लगभग 20,000 मासाबों के ये महत्वपूर्ण समस्या से जुड़िया सब पहलुओं का गंभीरता अध्ययन करी जालू, उन्होंने अधिकारियों के और राज्यों में TET अनिवार्यता के लिए

0: अपनाई गई मॉडल और ली गई निर्णयों के विस्तृत अध्ययन कर बे रिपोर्ट प्रस्तुत करने थाले कोच बैठक में मासामों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर चर्चा ले भेज शिक्षा मंत्री उच्च न्यायालय में लंबित पदोन्नति संबंधी मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जैल की मासामों के जल्दी प्रमोशन का लाभ मिल सको। चारधाम यात्रा के सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून स्थित कंट्रोल रूम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहा है। अत्याधुनिक तकनीकल सुसज्जित एक कंट्रोल रूम में 24 घंटे धामों में कैमरों द्वारा यात्रियों की निगरानी करने के दगड़ उनों की समस्याओं का तुरंत समाधान और यात्रा संचालन की लगातार निगरानी करी जन्ने उप निदेशक पर्यटन अमित लोहनी बतास की आज तक 45,000 से ज्यादा कॉल मिल रहे हैं एक अधगढ़ उन्होंने निस्तारण ले करी जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में पंजीकरण कराया यात्रियों के व्हाट्सएप बैठे मौसम की जानकारी ले लगातार दे जने
1: इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अपने पंजीकरण हेली सेवाएं रहने की व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। अभी तक लगभग 45,000 से अधिक कॉल प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से और उनका सफल निस्तारण किया जाता है और इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ जैसे पुलिस हेल्थ आपदा इनके साथ भी इसको हम साझा करते हैं और उनकी मदद से उनको उनके उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी आती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है ये सभी विभागों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके।
0: हरिद्वार जिले में मतदाता जागरूक अभियान के गतिदिनक उद्देश्य जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षितल आज कैंप कार्यालय बठी स्वीप वाहन के हरी झंडी दिखावे रवाना करी। ये अवसर पर उन्होंने कौश की लोकतंत्र मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज हुन और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता जरूरी छे। स्वीप कार्यक्रमक अंतर्गत संचालित युवाहन जिलक सब विधानसभा क्षेत्रों में जाबेर आम जन के मतदाता पंजीकरण मतदाता सूची संशोधन विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और मतदानक महत्व के लिए जागरूक कर लू। वहीं उत्तरकाशी जिले में स्वीप कार्यक्रमक अंतर्गत आज जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोशियाड़ा में मतदाता जागरूकता शिविर लगाई गो। ये दौरान युवाओं के मतदाता सूचिक विशेष गहन पुनरीक्षण गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया और मतदाता सूची में नाम बनाई रखने के महत्व की जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड मेले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपुलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। ब्यावी सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में आयोजित स्नान पर्व में 76 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं आस्था की डुबकी लगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं उनक कारण अलग अलग गंगा घाटों और सार्वजनिक स्थलों में ठुली मात्रा में कूड़ एकत्रित भौज जयकर नगर निगम की टीम युद्ध स्तर में अभियान चलाबेर साफ करी। नगर निगम रात भर लगातार काम करते हुए लगभग 90 ट्रैक्टर कूड़ एकत्रित कर बेर वीक निस्तारण करी। आज रत्ते 4 बजे तक सब प्रमुख घाटों और आसपास क्षेत्रों है कूड़ हटाबेर सब जगहों की सफाई काम पूर करीगो। नगर निगमक अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालुओं की असाधारण संख्या के बाद ले निर्धारित पखत में सब प्रमुख घाटों और बाटों की सफाई पूरी करी गई जो नगर निगमक काम करने के सुव्यवस्थित तरीक और कर्मचारियों की अथक मेहनत का परिणाम छे। चंपावत जिले में लगभग 3.5 महीने बठे चल्यक माँ पूर्णागिरी म्याव आज संपन्न हगो। जिलाधिकारी मनीष कुमार बतास की ये साल म्याव में 25 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं माता के दर्शन करियान जबकि साल भर में माँ पूर्णागिरी धाम उन्ने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख है ज्यादा रहे। उन्होंने कौश की म्यावक दौरान श्रद्धालुओं के सुरक्षित सुगम और सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था दिलुण प्रशासनिक प्राथमिकता छी जो पिछले सालों हले भल रहे।
2: इस बार का मेला जो है विगत वर्षों की अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है। ये 100 दिन से ज्यादा ये मेला चला है और इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेला जो है वो बड़ा निर्बाध रूप से चला है और जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको जो सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी जो जो कमियां थी उसको सुधार किया गया उनको सभी सुविधाएं प्रदान की गई और जो श्रद्धालु सुविधाएं थे उनको और भी बेहतर किया गया। इसमें भारतीय रेल ने भी हमारा सहयोग किया। नगर पालिका और जो जिला पंचायत जो इसकी जो मूल संस्था संस्था है जो इसको चलाती है, उन लोगों के द्वारा भी बहुत बढ़िया काम किया गया है। तो एक बड़ा ही अच्छे क्रियान्वयन जो है मेले का यहाँ पर किया गया है, और वो मेला समाप्त हुआ लेकिन जो हमारा जो दर्शन का कार्य है वो अभी भी निरंतर चलता रहेगा।
0: उधम सिंह नगर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत सफल रहो, जिले में लिंगानुपात में लगातार सुधार है रहो और चली शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के राष्ट्रीय स्तर पर ले सम्मानित करी जा रहो। लिंगानुपात में लगातार बढ़त के कारण उधम सिंह नगर के देशक शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की सूची में शामिल करी जा रहो। जिले में लिंग अनुपात बढ़ बेर 957 है गो, जो पहले बहुत कम छो। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुकुल चौधरी बताश की जिले में लिंगानुपात में क्रांतिकारी बदलाव देखने के मिलने लग रहा।
3: बेटियों की संख्या अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में देखें तो 1000 पुरुषों पर 957 का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हमारे यहाँ आ गया है, तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हुई है, तो बदलाव तो बिल्कुल स्पष्ट से दिखाई दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हमने जो गाँव से लेकर के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के सेकेंडरी विद्यालय डिग्री कॉलेजों में हमने प्रत्येक स्तर पर ये महिलाओं से बालिकाओं से टीचर्स से एक अभियान चलाया गया था कि बेटियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक परिवर्तन हो, बेटी को भार न समझा जाए और बेटी को शिक्षा में उतनी प्राथमिकता दी जाए जितना एक बेटे को देते हैं, तो उसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
0: गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी नागदेव रेंजक कमंद गांव में एक गुलदार पिंजर में कैद है गो। गुलदार के रेस्क्यू करबेर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रेंज कार्यालय लाई जा रो। गढ़वाल वन प्रभाग एसडीओ ऐसा बिस्टल बताश की पिछले 15 मई इनके ग्राम सभा थलीक कमंद गांव में गुलदारल एक मनखे पर हमल करबेर वी के मार दे छो। जैक बाद क्षेत्र में गुलदार के कैद करने के लिए पिंजर लगाई जा रो छे। दगड़ा क्षेत्र में लगातार गश्तले करी जन्ने छे। उन्होंने बताया कि आज रत कमंद गांव में नजक पिंजर लगाई जा रही हो, एक पिंजर में गुलदार कैद हरो। जैक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रेंज कार्यालय लाई गो। उन्होंने गांव वालों से सतर्क रहने की अपील करी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अलकोच सेवारत मासाबों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता जल्दी समाधान करी जालो। चार धाम यात्रा के सुरक्षित सुगम और व्यवस्थित बनने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषदक देहरादून स्थित कंट्रोल रूम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रहा। सोमवती अमावस्या स्नान के बाद हरिद्वार में रात भर चली सफाई अभियान, 90 ट्रैक्टर कूड़ एकत्रित कर बेर वीक निस्तारण करी गो। और चंपावत जिले में माँ पूर्णागिरि म्याव संपन्न, ये साल 25 लाख है ज्यादा श्रद्धालुओं दर्शन। एक दगड़ कुमावनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त भय। नमस्कार।
4: कुमावनी प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में साय के 7:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

यार यहाँ फिल्म से आप सुन रहे थे कि अरिजीत सिंह की आवाज़ में प्रीतम का संगीत था अरशाद कामिल के बोल। साथ ही फिल्म से अगला गीत आवाज़ है के शान कुणाल और प्रवीण माही की। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है ए आर रहमान ने।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, आपको पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम खेल दर्पण, और रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम साहित्यिकी में आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीता कुकरेती की काव्य पाठ, राजीव वर्मा की कहानी मेरे लाल, और ज्ञानी रोहताश सिंह की वार्ता गुरु अर्जुन देव का जीवन दर्शन।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
3: आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम मोदी सरकार के 12 वर्ष उत्तराखंड में आयुष एवं उज्ज्वला योजना से सशक्त होता मध्यम वर्ग में आप सभी श्रोताओं का मैं नीता कांडपाल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में पिछले 12 वर्ष अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों और नीतिगत पहलों के साक्षी रहे हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के साथ शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन कल्याण को केंद्र में रखने का संकल्प प्रस्तुत किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ शुरू हुई ये यात्रा आज 12 वर्षों का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुकी है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं में से आयुष्मान योजना और उज्ज्वला योजना से उत्तराखंड में मध्यम वर्ग सशक्त होता नजर आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना को देश की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य पहलों में गिना जाता है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही देश भर में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास किया गया। श्रोता, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के चंपावत जिले में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना की। उत्तराखंड में केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चंपावत जिले में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत बीते 12 वर्षों में आयुष्मान कार्ड से सैकड़ों लोगों को योजना का लाभ मिला है। जिले में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 27 प्रमुख बीमारियों के लिए 5,00,000 तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत पांडे ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आरोग्य मिशन के तहत 2,31,332 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 1,54,776 कार्ड अभी बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर इंद्रजीत पांडे ने बताया कि जिले में जिला अस्पताल चंपावत, उप जिला अस्पताल टनकपुर, उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में अभी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जल्द ही जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए शासन से दिशा निर्देश का इंतजार है। डॉक्टर इंद्रजीत पांडे ने कहा कि आयुष्मान कार्ड का लाभ व्यक्ति जिले के सभी चिकित्सालय के साथ चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी ले सकते हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलने से लोगों ने सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ये योजना गरीब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिले के पाटी विकास खंड के पटन गांव के निवासी मीना ने बताया कि उनकी सासू माँ का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा बच्चेदानी के इन्फेक्शन की शिकायत बताई गई और ऑपरेशन की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि उनके पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड बने होने के चलते उनका मुफ्त में इलाज हो गया, जिसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद किया।
4: जी, मेरा नाम मीना है। मैं पाटी तहसील के जो है दूरस्थ गांव पटन गांव से हूँ। मेरी सास को पेट दर्द की समस्या हो गई थी। जब हमने जिला अस्पताल में दिखाया तो उनके बच्चेदानी में घाव था, जिसके लिए डॉक्टरों द्वारा उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई, क्योंकि हमारे परिवार में सबका आयुष्मान कार्ड बना हुआ, तो उनका जो है आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज हो गया। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई गई, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद
3: श्रोताओ। इसी प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उत्तराखंड के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन की नई कहानी लिखी है। पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी और गोबर के उपयोग से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। धुएं से होने वाली बीमारियां, ईंधन जुटाने में लगने वाला समय और पर्यावरणीय नुकसान लंबे समय से चिंता का विषय थे। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इससे रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ा और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा सम्मान दोनों में सुधार हुआ। घरों में धुएं की समस्या कम हुई और खाना पकाने की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनी। श्रोता, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका परिवार और कृषि दोनों में महत्वपूर्ण होती है। पहले ईंधन एकत्र करने के लिए उन्हें प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। उज्ज्वला योजना के कारण इस श्रम में कमी आई, जिससे महिलाओं का समय बचा और वे शिक्षा, स्वरोजगार तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए अधिक समय दे सकी। ये परिवर्तन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। श्रोता, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बागेश्वर जिले में उज्ज्वला योजना की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ बागेश्वर जिले की महिलाओं तक पहुंच रहा है। जिले की गृहिणी भावना देवी और दीपा देवी ने इस योजना को महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे रसोई में लकड़ी और धुएं पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन मिलने से खाना बनाना आसान हुआ और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा और पहली रिफिलिंग की सुविधा दी जाती है। इसका लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को मिलता है। श्रोताओ, वर्ष 2021 में शुरू किए गए उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से छूटे हुए परिवारों को भी योजना से जोड़ा गया। बागेश्वर की महिलाओं का कहना है कि ये योजना उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। श्रोताओ, आइए सुनते हैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी दीपा देवी और भावना देवी को।
5: नमस्कार, मेरा नाम भावना रावत है। पहले हम लोग लकड़ी वगैरह लाते थे तो चूल्हे में खाना बनाते थे, उस टाइम धुआं वगैरह भी लगता था, लेकिन जब से हमने उज्ज्वला योजना के से हमने सिलेंडर लिया है तो अभी हम लोग खाना जो बनाते हैं बहुत जल्दी बन जाता है। अभी हमें जंगल जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिलेंडर हमें अच्छे से मिलता है, आराम से मिल जाता है। पहला सिलेंडर हमें जो मिलता है वो फ्री मिला था,

0: अब हम जब महीने में हम सिलेंडर भरते हैं तो उसका हमें पे करना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए उन्होंने जंगल जाना, दिन भर लकड़ी लाना, उससे मुक्ति दिलाई है। और खाना भी बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि खेत में जाना होता है तो हमें चूल्हे में बहुत टाइम लग जाता है, अभी गैस से हम जल्दी खाना बना लेते।
1: मेरा नाम दीपा देवी है, मैं ग्राम भिटाल गाँव रहती हूँ। और मुझे पहले जंगल जाना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी, अब गैस सिलेंडर मिला जब से, क्या कहते हैं ये उज्ज्वला, तब से हमें बहुत आसानी से खाना बनाने में आसान होता है। और बहुत सी मतलब महिलाओं को इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि वो आग से बच गई हैं, उनकी आंखें बच गई हैं, और क्या कहते हैं जंगल जाने से बच गई हैं, मैं हो जाती थी तो उससे हमें बहुत मदद मिली है उज्ज्वला से। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इतनी मदद दी है, धन्यवाद।
2: श्रोताओं, मोदी सरकार के 12 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में आयुष क्षेत्र के विस्तार और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की नई संभावनाएं पैदा की हैं। इन पहलों ने स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देकर मध्यम वर्ग तथा सामान्य नागरिकों के जीवन को अधिक सुविधाजनक और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। उत्तराखंड की विकास यात्रा में इन योजनाओं का योगदान आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण बना रहेगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपने सुना मोदी सरकार के 12 वर्ष, उत्तराखंड में आयुष एवं उज्ज्वला योजना से सशक्त होता मध्यम वर्ग। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे किसी नई योजना को लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति कार्यक्रम सरकार के 12 साल। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर।
4: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
3: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं संस्कृत वार्ता। व्याकरण भाषा दर्शनस्य सामान्य स्वरूपम्। वार्ताकार हैं वासुदेव दास।
5: व्याकरण भाषा दर्शनस्य सामान्य स्वरूपम्। सर्विद व्यवहारस्य मूले शब्द तिष्ठति, तम विना कश्चन व्यापारः भवितुं नार्हति। असौ शब्दानः केवलं मनुष्याणां व्यवहारे मूलभूतः, अपितु पशुपक्षीणां व्यवहार निर्वाहकः श्रूयते। पुराणादिषु स्थावराणां पर्वतादीनां वाग्व्यवहारः एव शब्दः। व्यवहारशिरोमणि न केवलं जाग्रत अवस्थायाम्, अपितु स्वप्नावस्थायां शब्दज्ञानं सर्वानुभव सिद्धम्। सुसुप्तावपि न शब्द अनुवेद्य शून्यं ज्ञानं भवति, किन्तु शब्दानुविद्धम् अतएव मुख्य व्यवहार से किंचित अवेद्यमिति सर्वानुभव सिद्धः विदुषां वादः। अन्यथा तस शब्दानुवेद्य शून्यत्वे सुप्तोत्थिते नायं व्यवहार न स्यादिति तस शब्दानुगमत्वम् इति सिद्ध्यति। अस्य शब्दस्य आदि स्रोतोस्ति श्रुतिः, व्याकरण शास्त्रस्यापि मूलवेदः। इत्थं च भारतीय दर्शनस्यापि स्वरूपं विस्तृतं वर्तते, यथा शास्त्र सांख्ययोगमीमांसा न्यायादयः दर्शनग्रन्थाः सन्ति, तेषां च कर्तारः कपिलादयः मुनयः वर्तन्ते। आदिकालात् वर्तमानकालं यावत् भारतभूमौ यावन्तो विद्वांसः सञ्जाताः सन्ति तेषां मतमिदं वर्तते। व्याकरणशास्त्रस्यापि मूलं वेद इति। किं नाम व्याकरणं? विङ् आङ् उपसर्गो क्रि धातु ल्युप् प्रत्ययेन व्याकरणस्य शब्दस्य निर्माणं जायते। तद्यथा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दज्ञानं जनकं व्याकरणं। संस्कृतवाङ्मये तु व्याकरणं विना किमपि नैव कर्तुं क्षमः। भाषा अवलोकेन अधुना यद् भाषाशास्त्रं प्रवृत्तं तत्रापि अयमेव शब्दार्थ संबंधस्य सांकेतिकत्व सिद्धान्तः देवार्थ प्रतिपादनाय ग्रीक भाषायां थेयोस शब्दः दृश्यते, आंग्ल भाषायां गाड शब्दः, गीर्वाण्यापि ऋक् संहितायां बाहुलेन असुर शब्दस्य देवार्थत्वं क्वचिद् दानवार्थत्वं, ब्राह्मण ग्रंथेषु न असुर शब्दस्य दानवार्थत्वमेव सुस्थितम्। प्राकृत भाषासु नवीन भारतीय भाषासु च संस्कृत शब्दानां रूप विकारो दृश्यते, संस्कृते अपि अर्थे बहुनाम शब्दानां प्रयोगो दृश्यते, अतो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शब्दार्थयोः संबंधः नित्यो वर्तते। व्याकरण शास्त्राणां प्रयोजनम् इदम् एव अस्ति यत् प्रकृतभाषायाः साध्वा साधुत्व विवेके, किन्तु यदा व्याकरण शास्त्रस्य दृष्टिः शब्दानां चिंतने पदार्थ निरूपणे च वर्तते तदा शास्त्रमिदं दर्शन शास्त्र स्वरूपे परिणमति। व्याकरण शास्त्रस्य संबंधः दर्शनेन सह वर्तते, व्याकरण दर्शनस्य संबंधो अत्र भवति यथा परोक्ष ज्ञानम् एव अस्ति। भारतीय दर्शनानां पर्यवसान दर्शनात् आत्म साक्षात्कार एव दर्शन शास्त्र परिशीलने प्रवृत्तिं पश्यामो वयम्। भौतिक विज्ञानाय परोक्ष शब्द ज्ञानम् वा उक्तम ही आंतरम ही तमस्येतु शब्द बोधो नहीं चमह, यद्यपि दर्शन शब्दस्य मुख्यतया वृत्त्या चाक्षुषम ज्ञानम एविति ज्ञायते। इत्थं च व्याकरणस्य दर्शनम च ऐतिहासिकत्वं वर्तते, संबंध यत् एको हम भविष्यां प्रजाये इति स एव विचार सृष्टेः सर्वासु शाखासु संभावेन वितस्तार अनमैव दिशा ब्रह्मैव प्रायः सर्वासु विद्यासु प्रथमः प्रथते। अत्रापि आरभ्य गार्ग्य गालव शाक्तायन साकल्य प्रवृत्तीनां समलभ्य पाणिनीय कात्यायन पतंजलि मुनित्रयाणाम अधिष्ठा शास्त्रमिदं सर्वलौकिक सार्वभौमिक सार्वजनीयं च स्वकीयं स्वरूपं सुस्थिरी चकारः। दर्शनस्यापि स्थिति करणमिव प्राचीनतम वर्तते, ब्रह्मण पुत्रादयः जैमिनीय कपिल प्रभृतयः प्राचीन दर्शनस्य आचार्यः सन्ति। एहि दर्शनस्य ज्ञानं स्थापितम् अत्र सांख्य योग मीमांसा न्याय वेदान्तादयः यथा सांख्यं कपिल पतंजलि जैमिनीय प्रभृतयः पाणिनीयस्य परमाणु नाम अपि अनित्यं मन्यते तथा च आकाशमपि अनित्यमेव, तस्य करणं च शब्दः एव अखिलस्य जगतः कारणम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षणं वितर्थे अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः भर्तरि हरिदृष्टो शब्दद्वैतवादः प्रथम सिद्धः। शुक्लयजुर्वेदस्य चत्वारि शृङ्गाणि अस्य पादाद्वयशीर्षे सप्तहताशो अस्य त्रिधावद्धो वृषभोरोरुवीति महादेवो मर्त्योऽविशेषः इति मंत्रस्य व्याख्यायेन उबट्महीधराभ्यां प्रकाशितः शब्दद्वैतवादः साम्यं सायुज्यं चोक्त यथा वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेद अद्भुत अनेकतीर्थभेदास्यात्रया वाचः परं पदम् अत्र स्पष्टमेव भवति व्याकरणस्य ऐतिहासिकत्वमपि। इत्थं चात्र महावैयाकरणानां सिद्धान्ते स्फोटः मन्यमानः पक्षो अस्ति। स्फोटशब्दस्य स्फुटार्थोऽर्थ जाति उत्पत्ति जायते, स्फुटतीर्थे आदि स्फोटः शब्द व्युत्पत्त्यादि स्वरूपः अभिधीयते। ध्वनि व्यंग्ये सति अर्थप्रतीति जनकत्वं स्फोटस्य स्वरूप व्याकरण दर्शन ग्रंथेषु उपवर्णितं विद्यते। स्फोट अन्वेषणं कुर्वता भर्तरिहरि द्वावुपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानां अप्रोक्षे परियुज्यते। उपदान शब्देषु दो शब्दो भवतः एकः स्फोटात्मनिमित्तभूतः अपरश्च अर्थप्रत्ययकरः, अर्थात् एकः स्फोट द्वितीयः ध्वन्यात्मश्चेति स्फोटोऽयं नित्यं भेदरहितः तथापि औपाधिक निमित्तं शास्त्रप्रक्रियां निर्धारञ्च भेदस्य परिकल्पना क्रियते। परम लघु मंजूषायाम आरभ्य

0: एव स्फुटस्य निम्नरीत्या भेदप्रदनस्य कृतम् अस्ति। अत्र स्फोटं त्रिविधं वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटश्च इति। जातिव्यक्तिभेदेन पुनः षड्विधः स्फोटवर्णितः, अखण्डजातिपदस्फोटः, अखण्डजातिवाक्यस्फोटः, सङ्कलनया अष्टोस्फोटः। वस्तुतः स्फोटयमे भेदः काल्पिकः। यथेच शून्यस्फोट कदापि भेदो नैव भवितुमर्हति। उक्तञ्च वाक्पदीये स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः ग्रहणोपाधिभेदेन वृत्तिभेदं प्रचक्षते। ब्रह्मकाण्ड तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतादिकालिकव्यवहारेऽपि उपचर्यते। नागेशेन मञ्जूषाप्रभृतिषु ग्रन्थेषु विशदतः स्फोटविचारः कृतः। तत्रोक्त सर्वप्रथमं चतुर्विधवाच्यः परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी चेति। तत्र परावाक्य मूलाधारस्थित पवन संस्कारः भूता बिन्दुरूपिणी या किल स्पन्दशून्या विद्यते। स्वयं नुत्तर शिव इति उच्यते। पश्यन्ति वाक् नाभिदेशम् आगच्छता तेन वायुनाभिव्यक्ता मनोगोपरिभूता। मध्यमा वाक् तु हृदये समागच्छता तेन अभिव्यञ्जते। या तदर्थ वाचक शब्द स्फोट रूपा श्रोत्री ग्रहण योग्या सूक्ष्मबुद्धिग्राह्या भवति। वैखरी तु अस्य देशमागता तेन वायुना ऊर्ध्वमाक्रान्ता मधुरमहात्यक्षता प्रशृणोति ग्राह्या भवति। तदिदम् उक्तं प्राङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिताम् हृदयस्था मध्यमा गेय वैखरी कण्ठदेशगा। तत्र मध्यमा वैखरी युगपदेनात्र उत्पद्यते। मध्यमानास्तु तत् अर्थवाचक स्फोटशब्दविव्यञ्जक। वैखरी तु ध्वन्यात्मा ध्वन्यात्मका सकलश्रोत्रीग्राह्यभेदनावीर्थिका। शब्दोऽपि ब्रह्मरूपा स्फोटव्यञ्जकः वैखरीनादयः भवति। व्याकरणशास्त्रस्य इत्थं रूपेण सम्यक् रूपेण प्रतिपादनीयं व्याकरणदर्शनस्य सामान्यस्वरूपं वर्तते। तथा च व्याकरणं विना वाणी विनैव व्याकरणज्ञानेन वाण्याः सम्यक् रूपेण शुद्धिर्न भवति इत्येव।
1: अभी आप सुन रहे थे वासुदेव दास की संस्कृत वार्ता, जिसका विषय था व्याकरण भाषा दर्शनस्य सामान्य स्वरूपम। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सरकार के 12 साल।
2: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में, आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
4: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
3: जी,
4: विश्वास और जन कल्याण
3: जी,
4: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपये भेजेगी वो जनधन खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
3: जी।
4: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो, तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
3: बिल्कुल।
4: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
3: जी,
4: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण, ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बता रहा है।
3: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
4: विषय यह उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
3: जी।
4: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
3: जी।
4: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
3: जी।
4: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो, तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
3: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है अप्रूव की है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है। आप खुद भी EV में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
4: नहीं, सकारात्मक प्रयास है जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है, लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां PM 2.5 और PM 10, ये दो जो तत्व है, मतलब PM 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और PM 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
3: जी, प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
4: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं, नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन,

0: के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहां पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
0: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है, और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
1: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
0: जी।
1: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
0: जी।
1: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से री इंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाया ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया गया, मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि

0: जहां ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है, उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर, तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है। अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं, उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूं कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा, बचाने के लिए नहीं होना चाहिए पेड़ लगाना, ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था, तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहां पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं, लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं, लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
1: जी।
0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए
1: जी।
0: और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
0: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
1: जी,
0: पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहां से बनाओगे
1: जी?
0: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में

0: ब्रेड बना सकते हो, लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है, लेकिन वो तो नेचर से आता
1: बिल्कुल
0: है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा।
1: जी
0: आप एक बात बताइए
1: जी
0: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहां से आती है?
1: जी
0: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
1: जी
0: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे। कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन,
1: जी
0: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफ स्टाइल, और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे की विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
1: जी हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की। तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
0: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो के है,
1: जी
0: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है, जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है, जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है, जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है, जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है, जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बड़ा है, तो वो नेट जीरो के लिए है।
1: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इम्पोर्टेंट आप एक रोल देखते
0: अभी
1: हैं?
0: हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए,
1: जी
0: अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है। तो
1: जी
0: ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए,
1: जी
0: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी
1: पृथ्वी
0: कभी
1: भी कभी
0: जीवन
1: जीवन
0: था।
1: था। क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: पहला तो एक फिर माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरकार के 12 साल। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5।

0: megahertz पे।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 10 बजे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम साहित्य के में आज आप सुनेंगे डॉक्टर नीता कुकरेती की काव्य पाठ, राजीव वर्मा की कहानी मेरे लाल और ज्ञानी रोहताश सिंह की वार्ता गुरु अर्जुन देव का जीवन दर्शन।

कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्तिभाव से परिपूर्ण कार्यक्रम वंदना और प्रातः 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।

प्रातः 9:45 पर सेहत कार्यक्रम में कल होगी डॉक्टर सुधांशु कालरा से विकास चमोली की बातचीत। विषय रहेगा COPD, कारण, लक्षण और उपचार।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। विभिन्न कलाकारों के स्वर में गाए कुमावनी लोकगीत आप सुनेंगे शैल संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर और सुबह 10:35 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विजय सिंह सैलानी के स्वर में गाए गढ़वाली लोकगीत। कार्यक्रम जनानों का वास्ता प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे डॉक्टर अनीता रावत की वार्ता विज्ञान का क्षेत्र मां नौनी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में दोपहर 4:02 पर सुनिएगा भगवान दास मिश्र का सारंगी वादन।

भूपेश कैंदुरा के सुर में गाई चंद गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:12 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे आप सुनेंगे सुबह 10:02 पर। अपने पसंदीदा फिल्मी गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में प्रातः 11:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10:11 पर, दोपहर 1:15 पर, अपराह्न 3:02 पर, सायं 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:00 और सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा दोपहर 2:30 पर।

0: ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए।

0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित

0: प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad announced for Senior Asian Fencing Championships 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in a high-level working session at the ongoing G7 summit in Evian, France today. The session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity brought together leaders of the G7 nations, partner countries and senior representatives from the World Bank and the African Development Bank. The meeting began shortly after French President Emmanuel Macron formally welcomed Prime Minister Modi and other participating leaders. Following a group photograph, PM Modi shared the picture on social media, stating that India and the G7 countries would continue to work closely to promote global prosperity, sustainability and human well-being. Our correspondent Ankit Kumar, who is covering the Prime Minister's G7 visit, joins us live from Evian for the latest updates. Well, Ankit, what are the key outcomes India expects from G7 discussions?
6: Yes, Saira. India is looking at this G7 summit as an important opportunity to advance both its national interest as well as priorities of the global south. From India's standpoint, one key outcome would be deeper cooperation in areas such as trade, technology, innovation and resilient supply chains, particularly at a time when countries are seeking reliable economic partners. Another important area is collaboration on emerging technologies, including artificial intelligence, where India is increasingly playing a significant role in global discussions. At the same time, India is expected to push for greater international focus on issues that directly affect developing nations, including sustainable development,

0: unified economic policy, especially about exploring the markets and exporting our stuff there or to other nations, and promoting micro and small enterprises, MSMEs, especially in the areas of textiles and chemicals that were facing a challenging situation when, in particular, US imposed tariffs upon us, is what, you know, we worked upon. And that's where, by market diversification, by internationalization of rupee through, you know, different currency conversion mechanisms, direct currency conversion mechanisms that we applied with UAE, for example, with Indonesia, to minimize reliance on US dollar and shield our economy from exchange rate volatility. We did that. And apart from that, we also enhanced sectoral competitiveness, and we also established supply chain partnerships. So here I would like to give you an example of G7. So that's where India brought its engagement with Japan, UK and other G7 nations, which focused on securing critical supply chains, and it also enhanced export areas, and we also boosted value addition rather than just volume of our business. And apart from that, India also is working on strategic energy management to counter added external challenges like crude oil price fluctuations, any disruptions in supply chains. So that's where India is also having supply agreements with member nations of G7 to have diversified energy partners.
1: Professor Anshul Joshi, thank you so much for being with us.
0: Thank you so much, Rajesh. Namaskar.
1: Namaskar.
2: You were listening to a discussion on G7 Summit, Key Issues and Priorities. The participants were Professor Anshu Joshi, International Affairs Expert, and Rajesh Lake, Anchor.
3: Spotlight. यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य की।
4: नमस्कार, हिंदी पत्रिका कार्यक्रम साहित्य की में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में आप सुनेंगे श्रीमती नीना कुकरेती से उनका काव्य पाठ, श्री राजीव वर्मा की कहानी मेरे लाल, और ज्ञानी रोहतास सिंह से वार्ता गुरु अर्जुन देव का जीवन दर्शन। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं श्रीमती नीना कुकरेती से उनका काव्य पाठ।
5: मेरा विचार है कि आज का जो मानव स्वयं का स्वार्थी हो गया है, वो अपने भविष्य की तरफ कोई चिंता नहीं कर रहा है। यही कारण है अपने निज हित के आगे बौने सारे काम हुए। अपने निज हित के आगे बौने सारे काम हुए। कोई काट रहा चंदन को सूने नंदी ग्राम हुए। अपने निज हित के आगे बौने सारे काम हुए। कोई काट रहा चंदन को सूने नंदी ग्राम हुए। चूक जाएगी प्राण वायु जब हाथ मलोगे खड़े खड़े। चूक जाएगी प्राण वायु जब हाथ मलोगे खड़े खड़े। पीले पीले पादप क्यों हैं बिन पल्लव के ठूंठ खड़े। पीले पीले पादप क्यों हैं बिन पल्लव के ठूंठ खड़े। तो हम सब जगह देख रहे हैं कि वर्षा न होने के कारण वृक्ष जो हैं पीले पड़ रहे हैं, उनकी जो आभा है वो धूमिल हो रही है। तो एक चिंता है कवि के मन में, मेरे मन में एक चिंता है कि ऐसा दृश्य क्यों आ रहा है। शायद ये मौसम का परिवर्तन है, पूरा जो विश्व में एक मौसम परिवर्तित हो रहा है, उसी के कारण हमें पेड़ जो है सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन पर जो आभा होनी चाहिए वो आभा नहीं है। इसी दृश्य को मैंने एक रचना के माध्यम से, दूसरी रचना के माध्यम से भी, एक वर्षा के आस पर कि प्यासी धरती क्या चाह रही है, दूसरी रचना आपके सामने रख रही हूं। उसका शीर्षक है प्यासी धरती। प्यास

देखिए, जब कोई बटोही रास्ते पे चलता है तो उसके एक आस होती है कि कहीं मुझे छां मिल जाए, तो उसी भाव पर ये पंक्तियां रची गई हैं। क्लांत पथिक

0: अभी आपने श्रीमती नीना कुकरेती से काव्य पाठ सुना और अब प्रस्तुत है श्री राजीव वर्मा की कहानी मेरे लाल।
1: बेटा, इस समय तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और माथे पर आ गई पसीने की कुछ बूंदों से तुम्हारे बालों की एक लट चिपक गई है। मैं तुम्हारे कमरे में खड़ा तुम्हें निहार रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो विषाद की लहर मेरा दम घोटने लगी थी और मेरे हृदय में जगी अपराध भावना मुझे तुम्हारे कमरे में जगी अपराध भावना मुझे तुम्हारे कमरे में खींच लाई। इस समय मेरे हृदय में एक के बाद एक भावों का ज्वर उमड़ रहा है। आज मैंने तुमको काफी डांटा जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। तुमने अपना मुंह भी ठीक से साफ नहीं किया था। तुम्हारे जूतों में पॉलिश नहीं थी। मैंने देखा कि तुम्हारी सभी वस्तुएं कमरे में बेतरतीब बिखरी पड़ी थी। नाश्ते की मेज पर भी मैं तुम्हें गलतियों को बताता रहा और पकड़ता रहा। चम्मच ठीक से पकड़ो, यह ना करो, वह ना करो, तेजी से ना खाओ, जाओ हाथ धो, नाश्ता कहीं भागे नहीं जा रहा। फिर तुमने मेज पर कोहनियां टेकी। तुमसे कितनी बार मना किया, नहीं मानते तुम। कब समझ में आएगी तुम्हें? तुम चुपचाप खाते रहे। स्कूल जाते वक्त तुमने मुझे आवाज दी, टाटा पापा, और मेरे भवों पर बल पड़ गए। तुम्हारे हाथों में झूठन, तीसरे पहर यही सिलसिला फिर शुरू हो गया। जब मैं ऑफिस से आया तो तुम घुटने के बल बैठकर गोलियां खेल रहे थे। तुम्हारे मौजे में छेद थे। मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने ही तुम्हारी भर्त्सना की। रात को खाना खाते समय मैं जानबूझकर तुमसे नहीं बोला। तुम बार बार मेरा मुंह देख रहे थे, शायद मैं कोई बात या उपदेश प्रारंभ करूं, पर मैं चुप्पी मारे रहा, जानबूझकर अनदेखा करता रहा, मानो खाने की मेज पर तुम थे ही नहीं। खाने के बाद मैं एक पत्रिका लेकर पढ़ने ही जा रहा था कि तुम मेरे पास सहमे हुए से आए, पर कुछ बोले नहीं। अब क्या बात है, मैंने पूछा। तुम क्षण के लिए रुके, फिर दौड़कर मेरे पास आए और मेरे कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेटकर अपना बदन मेरे बदन से सटा कर कहा, पापा आप कितने अच्छे हो। मैं ठगा रह गया। एकाएक मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे निर्णय से हृदय में स्नेह का जो कुंड है वह अभी सूखा नहीं है। मेरी हर तरह की झिड़की, डांट, फटकार ने तुम्हारे मासूम दिल में मेरे प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आने दी और यह सच्चाई तुम्हारे निष्कपट व्यवहार से कितनी साफ झलकती है। मेरे लाल, बस इसके बाद से ग्लानि और पश्चाताप की जो भावना मुझे घेरी है उससे मैं छुटकारा नहीं पा सका हूँ। एकाएक मुझे ना क्या हो गया कि मैं तुम्हारे कमरे में आने के लिए बेबस हो गया और तुम्हें देखकर मैं सोच रहा हूँ तुम कितने महान हो। तुमने मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह में कभी कमी नहीं हुई। मेरा मन होता है तुमको जगाकर प्यार करूं, तुम्हारे हृदय के भाव तुमको बताऊं, पर मैं जानता हूं तुम मेरी बातें अभी समझ ना सकोगे। तुम बहुत छोटे हो, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल से मैं अपना व्यवहार बदलूंगा, तुमको एक आदर्श पिता बनकर

0: तुम्हारी परवरिश करूंगा। बेटा, माता पिता बनना केवल बच्चों को पालना नहीं है, बल्कि एक इंसान को गढ़ना है। अक्सर हम यह मान लेते हैं बच्चे का सम्मान हमें स्वतः मिल जाएगा क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह केवल हमारे पद माँ बाप को नहीं देखता, वह हमारे व्यवहार, हमारी आदतों, हमारी भाषा और हमारे चरित्र को देखता है। समय के साथ वह या तो हमें अधिक सम्मान देने लगता है या धीरे धीरे वह सम्मान कम होता जाता है। यह इसलिए नहीं कि बच्चा बदतमीज हो गया है, बल्कि इसलिए कि वह समझने लगा है सच्चा सम्मान किससे कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर भी आपको सम्मान दे, तो कुछ आदतों को छोड़ना आवश्यक है। कई आदतें हमें पुरानी पीढ़ियों से मिलती हैं और हमें सामान्य लगती हैं, लेकिन वही आदतें बच्चे के मन में दूरी, डर और अविश्वास पैदा करती है। मैंने बहुत कुछ सीखा जो अक्सर माता पिता के सम्मान में बाधा बन रही हैं। जैसे अनुशासन आवश्यक है, लेकिन अनुशासन और तानाशाही के बीच बहुत पतली रेखा होती है। कई माता पिता हर बात पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, बच्चा क्या पहने, क्या सोचे, किससे मिले, क्या पसंद करे और भावनाएं कैसे व्यक्त करे। शुरुआत में यह व्यवस्था जैसा लगता है, पर लंबे समय में यह दूरी बनाता है। जब बच्चे को लगता है कि उसकी बात कभी नहीं सुनी जाती, तो वह बोलना बंद कर देता है। वह डर से मान सकता है, लेकिन डर सम्मान नहीं होता। सच्चा सम्मान तब बनता है जब बच्चा स्वयं को मार्गदर्शित महसूस करे, दबाया हुआ नहीं। माता पिता का काम राजा बनना नहीं, गुरु बनना है। बच्चे शब्दों से अधिक हमारे कर्मों से सीखते हैं। हम उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और विनम्रता सिखाते हैं, लेकिन यदि हमारा व्यवहार वैसा नहीं होता तो बच्चा तुरंत समझ जाता है। हम कहते हैं झूठ मत बोलो, पर स्वयं बहाने बनाते हैं। हम कहते हैं चिल्लाओ मत, पर खुद ऊंची आवाज में बोलते हैं। हम कहते हैं सम्मान करो, पर दूसरों के साथ कठोरता से पेश आते हैं। बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही अपनी रुचियां विकसित करने लगते हैं। कभी वह हाथी, कार्टून या गानों में रुचि लेते हैं, तो कभी अंतरिक्ष विज्ञान, पहाड़ या खेल जैसे विषयों में। हमें ये रुचियां बचकानी लगती हैं। जब माता पिता इन रुचियों को नकारते हैं या मजाक बनाते हैं, तो बच्चा हतोत्साहित होता है। उसे लगता है कि उसके सपने, उसके विचार और उसकी पसंद महत्वहीन है। लेकिन जब आप उनकी रुचियों में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। यह स्वीकारता बच्चे के मन में सम्मान पैदा करती है। बच्चे के लिए माता पिता का वादा कानून जैसा होता, बच्चा उस वादे को पूरी सच्चाई से पकड़ लेता है। यदि आपने कहा कि रविवार को पार्क चलेंगे, फिर बिना कारण टाल दिया, तो बच्चा शायद बहस ना करे, लेकिन उसका विश्वास जरूर हिलता है। बच्चा विश्वसनीयता हमारे व्यवहार से सीखता है। जब हम वादे निभाते हैं, तो वह समझता है कि शब्दों का मूल्य है, और जब हम बार बार वादे तोड़ते हैं, तो हम उसे सिखाते हैं कि प्रतिबद्धता जरूरी नहीं। जहां विश्वास कमजोर होता है, वहां सम्मान भी कमजोर हो जाता है। कई माता पिता असहज विषयों पर बात करने से बचते हैं, जैसे जन्म, शरीर, रिश्ते, भावनाएं, असफलता, डर या व्यक्तिगत सीमाएं। जब बच्चा ऐसे प्रश्न पूछता है, तो माता पिता घबरा जाते हैं, टाल देते हैं। पर यह टालना एक बड़ा संचार गैप बनाता है। कठिन विषयों पर सही मार्गदर्शन नहीं देंगे तो कोई और देगा। वह व्यक्ति शायद उतनी संवेदनशीलता या सही दृष्टि से बात ना करे। जब आप उम्र के अनुसार ईमानदारी से उत्तर देते हैं, तो बच्चा सीखता है कि वह आप पर भरोसा कर सकता है। यही खुलापन सम्मान को मजबूत करता है। माता पिता का स्वभाव होता है बच्चे को कठिनाई से बचाना। हम चाहते हैं कि बच्चा दुख ना देखे, संघर्ष ना करे और हर परेशानी तुरंत दूर हो जाए। लेकिन यदि हम हर समस्या खुद हल कर देते हैं, तो हम अनजाने में बच्चे को यह संदेश देते हैं कि तुम सक्षम नहीं हो। बच्चे को आत्मविश्वास विकसित करने के लिए चुनौतियां चाहिए, समस्या हल करने की क्षमता सीखने के लिए उसे अवसर चाहिए। इसलिए हर बार फिक्स करने के बजाय उसे मार्गदर्शन दीजिए, प्रश्न पूछिए, सोचने में मदद कीजिए और उसे समाधान तक पहुंचने दीजिए। यह उसे स्वतंत्र बनाता है और आत्मसम्मान बढ़ाता है। और जब बच्चा खुद का सम्मान करता है तो वह उस माता पिता का भी सम्मान करता है जिसने उसे मजबूत बनाया। सबसे बड़ी और सबसे अनदेखी बात यह है, यदि आप सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले सम्मान देना सीखिए। बच्चे के समय भावनाओं, विचारों और व्यक्तिगत स्थान का सम्मान कीजिए। उसके डर या आंसुओं का मजाक ना बनाइए। उसे दूसरों के सामने अपमानित ना कीजिए। केवल उम्र के कारण उसे कम मत समझिए। जब आप बच्चे को गरिमा के साथ देखते हैं तो आप वही व्यवहार सिखाते हैं जो आप उससे चाहते हैं। जो बच्चा सम्मानित महसूस करता है वह स्वाभाविक रूप से सम्मान करना सीखता है। पालन पोषण का अर्थ बच्चे को नियंत्रित करना नहीं है, पालन पोषण का अर्थ बच्चे को सही दिशा देना है। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। प्यार, न्याय, निरंतरता और भावात्मक परिपक्वता से जब आप इन गलत आदतों को छोड़ते हैं तो आप अपनी अथॉरिटी नहीं खोते बल्कि विश्वास जीतते हैं। और जब बच्चा आप पर भरोसा करता है तो आपका सम्मान मजबूरी से नहीं, दिल से करता है।
1: मेरे लाल, अभी आप श्री राजीव वर्मा से उनकी ये कहानी सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है ज्ञानी रोहतास सिंह से वार्ता, गुरु अर्जुन देव का जीवन दर्शन।
2: गुरु अर्जुन देव महाराज का शब्द है, हर का नाम हृदय निध्याई, संगी साथी सगल तराई, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। हर का नाम मीठा लागे का भाव यह है कि ऐसे समय में भी गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने परमात्मा का ध्यान नहीं छोड़ा और परमात्मा के चरणों से जुड़े रहे। और ऐसे गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अपने प्राणों की आहुति, अपना बलिदान सब देश के लिए, कौम के लिए, लोक भलाई के लिए अपने आप का समर्पण कर दिया, अपने आपको कुर्बान कर लिया। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने शहादत दी है। शहादत का मतलब होता है शहादत देने का, कि किसी के लिए गवाही देनी, सच कर पहरा देना और सच के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी शहादत देके हमें शिक्षा दी है कि हमेशा इंसान को अपने धर्म पर अडोल रहना चाहिए और दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो तो परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए, परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। तीसरा ये संदेश गुरु अर्जुन साहब ने दिया कि हमें अपना जीवन मानवता के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए। और केवल गुरु अर्जुन देव महाराज ने ये सिखाया नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कमाया भी है। क्योंकि जब गुरु अर्जुन देव महाराज जी सन 1581 के बाद जब लाहौर के अंदर चेचक की बीमारी फैली थी तो गुरु अर्जुन देव महाराज अपने परिवार के साथ वहां जाकर जो लोग भलाई का काम किया, बीमार जो लोग चेचक की बीमारी से बीमार हो गए थे, जिन्हों शीतला निकल गई थी और लाशों के गलियों में ढेर लग गए थे, तो गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने ना किसी को धर्म देखा, ना अमीर और गरीब देखा। गुरु अर्जुन देव महाराज ने अपने सिखों को साथ लेके सबकी सेवा की, सबका इलाज कराया और जितना हो सकता था दूसरों की भलाई का काम किया। तो हमेशा गुरबाणी भी हमें ये सिखाती है कि इंसान को जो जीवन है केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, सभी लोग भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भी जीवन जीना चाहिए। और हमेशा जिंदगी में जो इंसान परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई के काम करते हैं, उनका जीवन ही सफल होता है। तो कहीं ना कहीं गुरबाणी से या गुरु उपदेश से हमें शिक्षा मिलती है कि जहां हम अपने लिए जीवन जी रहे हैं तो हमें दूसरों की भलाई के लिए भी जीवन जीना चाहिए और परमात्मा को हमेशा अपने याद रखना चाहिए। तो ऐसे गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह जी जिन्होंने ये शहीदी दी, अपने आप की कुर्बानी दी, ये हमारे सिखों के पांचवे गुरु हैं। और गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह जी अगर हम उनका संपूर्ण जीवन पढ़ते हैं तो गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अपने जीवन के अंदर सेवा की है, सेवा के साथ साथ सिमरन भी किया है और सत्संग भी किया है। यानी सिखी के ये जो स्तंभ हैं, सेवा, सिमरन और संगत। और जैसे गुरु नानक साहब जी ने हमें सिखाया था कि किर्त करना, नाम जपना और वंड छकना। किर्त करने का मतलब है कि आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो आपका कर्म जो है बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी कमाई करते हैं वो हमारी नेक कमाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद नाम जपना। जिंदगी में इंसान को परमात्मा के नाम का सिमरन ये भी बहुत जरूरी होता है। और सिमरन करने के लिए हमें सत्संग करना, और जो हमने नेक कमाई की है वो हमेशा वंड के छकने का मतलब होता है कि गरीब जरूरतमंद लोगों की अपनी नेक कमाई में से जरूर हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो ऐसे ये सिखी के तीन स्तंभ है, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको, सेवा, संगत और सिमरन, तो इन्हीं स्तंभों के ऊपर सिखी का जो मार्ग है वो चलता है। और आज समाज में जो सिख हैं ये इसको कमाते हैं, कीर्ति भी करते हैं, नाम भी जपते हैं और वंड के शक्ति भी हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं और लोक भलाई के काम भी करते हैं। इसी वजह से सिख धर्म जो है हमेशा चढ़ती कला में रहता है। आप कभी कभी देखते हैं जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो सिख सहायता करने के लिए सबसे पहले आगे आ जाते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि जिनकी हम सहायता कर रहे हैं वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म से आते हैं, क्योंकि हमारे इंसान के अंदर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस इंसान के अंदर इंसानियत है वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन सभी के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। और इंसानियत हमेशा ये सिखाती है कि अगर कहीं पर कोई आदमी मजबूर है, परेशान है, तो उसकी हमेशा हमें इंसानियत के तौर पर सहायता करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। जो उसकी मजबूरी है या परेशानी है जितना भी हो सकता है हम अपनी तरफ से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर इंसानियत का भाव पैदा होता है और यही हमें पहले गुरु नानक साहब जी, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज, 10 गुरु साहिबाना ने यही सिखाया है और जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर वाणी है यही उपदेश गुरु साहिब ने हमको दिया है। और गुरु साहिब की वाणी के साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो 15 भगत हैं, जैसे भगत कबीर जी हैं, भगत रविदास जी हैं, भगत तुरदास जी हैं, परमानंद जी हैं, रामानंद जी हैं, भगत बाबा फरीद जी हैं, भिखण जी हैं, ऐसे 15 भक्तों की वाणी जो गुरु नानक साहिब ने संकलित की, तो ये सब भक्तों की वाणी भी हमें यही सिखाती है। भगत रविदास जी आदि सभी गुरु ने भी यही उपदेश दिया है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब जिसकी संपादना गुरु अर्जन देव महाराज ने की थी, ये वाणी हमें यही परोपकार की भावना सिखाती है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर वाणी का उपदेश है गुरु अर्जन देव महाराज जी का, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। इसका भाव ये बनता है कि सभी धर्मों में जितने भी दुनिया के अंदर धर्म हैं, सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप। पहला है परमात्मा का नाम जपना। अब परमात्मा का नाम जपने के लिए आप उसको गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, अल्लाह कहें या खुदा कहें, लेकिन उसका नाम एक ही है। उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई गोपाल कहता है, कोई गिरधर कहता है, कोई मुरारी कहता है, कोई अलग अलग नाम से जैसे लोग पुकारते हैं, लेकिन नाम उसका एक ही है। तो क्या है कि आप कोई भी नाम से उसको पुकारें, परमात्मा का नाम जपें और जो आप जिंदगी में कर्म करते हैं निर्मल कर्म, आपके कर्म जो हैं निर्मल होने चाहिए। और जब आप निर्मल कर्म करते हुए और परमात्मा का नाम जपेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब हमें शिक्षा देते हैं। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आदि ग्रंथ साहिब जी की रचना की, हरमंदर साहिब जी की स्थापना की, सरोवर की स्थापना की, जिसको आज सिख समाज के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सिखों का जो सबसे बड़ा स्थान है अमृतसर साहिब जिसको माना जाता है, और आज वहां पे जो प्रचार हो रहा है गुरबाणी का या गुरबाणी का कीर्तन हो रहा है, आज भी आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट में चलता है कि जब भी दरबार साहिब इतनी दुनिया जाती है, सबको समान समझा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता और वहां पर कोई भी जा सकता है, क्योंकि चार दरवाजे हैं और चारों दरवाजे हर धर्म के मानने वाले के लिए खुले हैं। तो आप वहां जाएंगे और यहां तक कि आप किसी नजदीकी गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको वहां ये नहीं पूछा जाएगा आप कौन से धर्म से हैं, आप कहां से आए हैं। सभी को बराबर का अधिकार मिलता है, कोई भेदभावना नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई वितकरा नहीं होता। सब एक जगह बैठ के पाठ सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सब एक ही जगह बैठ के लंगर खाते हैं, प्रसाद छकते हैं, सब इकट्ठे मिलके सेवा करते हैं। तो इससे आपसी प्यार की भावना सबके अंदर पैदा होती है और ये अच्छा भी लगता है जब आप ऐसा करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है प्यार की भावना, आपसी प्रेम प्यार की भावना बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। तो हमारे यहाँ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो उपदेश है, उपदेश चौ वर्णा को साझा, जिसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ इसको सबको एक ही माना जाता है। क्यों? कि सबसे पहले हमें अपने अंदर ये देखना चाहिए कि सभी इंसान है, और दुनिया के अंदर कोई अगर धर्म है तो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का धर्म, क्योंकि दुनिया में अंदर दो ही जाति है। अभी तो माना जाता है इतने हजार जातियां, ये अलग अलग बांटा जाता है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अकॉर्डिंग दुनिया के अंदर दो जाति हैं और वो जाति है स्त्री और पुरुष की। सिर्फ दो ही जाति रहती है, स्त्री और पुरुष, और धर्म है सबके अंदर वह इंसानियत का धर्म। तो अगर हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमारे अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। और आपसी जो मतभेद है, जो हम विचकर एक दूसरे से करते हैं या ऊंच नीच का भेदभाव हमारे अंदर रहता है, तो ये सब हमको भुला देना चाहिए। और हम जो हम पढ़ते हैं वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब जी ने हमें समझाया है, उपदेश दिया है। और इसी चीज की रक्षा के लिए गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया।

0: पर लोगों को ये सिखा दिया कि धर्म से कभी डोलना नहीं, और किसी भी धर्म में हो तो अपने आप को परपक रखो और अपना ईमान पूरा अपने परमात्मा के ऊपर रखो। ऐसा गुरु अर्जन साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर भी उपदेश दिया है और उपदेश को जिन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया भी है। तो जैसा उन्होंने बोला वैसे करके दिखाया है। तो इस तरह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने शहीदी प्राप्त की और सच के लिए अपनी शहादत कबूल की।
1: गुरु अर्जुन देव का जीवन दर्शन, अभी आप ज्ञानी रोहतास सिंह से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्य की कार्यक्रम अब संपन्न होता है। रमेश चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य की। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।
3: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
6: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
7: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे मैदान की ओर।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थी और न ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है। डियोगो माराडोना, साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में।

इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था, वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं, जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

0: for Africa.
1: अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
2: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे
1: जी।
2: तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
1: जी।
2: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में
1: जी जी।
2: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है
1: जी जी।
2: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
1: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
2: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत फर्क आया हुआ है
1: जी।
2: पहले जो कुश्तियां थी हमारे पास मैट तो थे
1: जी।
2: मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी
1: जी।
2: उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी
1: जी।
2: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते
1: जी
2: थे
1: जी।
2: मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी हैं और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
1: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है, आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
2: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन
1: जी।
2: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है, तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे
1: जी।
2: तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं जिससे कि उसके हारने पर
1: जी जी।
2: उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव न पड़े और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं बेटा ये आखिरी नहीं है
1: जी।
2: ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा
1: जी,
2: तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई उसको आजकल आधुनिकता की जैसे मैंने बात की तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है, इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा, उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
1: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए। इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
2: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है
1: जी,
2: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, अब उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते। और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती है।
1: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
2: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है, आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीजों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही है तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
1: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
2: प्रॉपर यह है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है, हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो या मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है, उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं, अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं, जब गलतियां करेगा और उसका सबसे बड़ा जो चीज होती है मैंने जो बोला लोड, ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है, अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं अगर ओवरलोड है तो नहीं कर पाएंगे उस चीज को और गलतियां होती हैं, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
2: देखिए कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं, हम मैच चल रहा है कभी हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट से आगे हैं, 1-2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है, जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, 1 ओलंपिक में और 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी, हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रहे, मेंटली स्ट्रांग थी
1: जी।
2: उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश, तो एज ए कोच हम ये कहते हैं बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो जितनी आपके पास वो आप वहां पर लगाओ, साक्षी मलिक ने लगाया था मेडल लाया, नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

0: बस्ती में भेजना नहीं चाहते थे।
1: जी
0: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं,
1: जी
0: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी,
1: जी
0: मगर
1: जी
0: महिला और उत्तर प्रदेश आज के डेट में महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है,
1: जी
0: बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत
1: जी
0: ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर।
1: जी जी जी
0: और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं,
1: जी जी
0: कुश्ती बहुत अच्छा गेम है महिलाओं के, जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक
1: जी
0: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर
1: जी
0: आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
0: देखिए, एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
1: जी
0: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है। 10 साल तक बच्चा हर चीज को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना है कि 10-11 साल की उम्र से आप
1: जी
0: बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो
1: जी
0: वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अभी ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
1: जी जी
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है, ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं।
1: जी
0: इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
1: जी ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी
0: जी
1: जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
1: जी
0: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल, अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: दो अंकों के अंतर से
1: आ रहे रहे
0: मेडल से रह गए थे,
1: जी
0: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
1: जी
0: अंतिम पंगाल
1: जी
0: और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग
1: जी
0: करती
1: जी
0: हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है अभी एशियन गेम्स ट्रायल में, वो दीपक पुनिया से ही हारा।
1: जी
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियंस बहरीन में हुए थे, उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए,
1: जी जी
0: यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
1: जी जी
0: चंचल सिरोही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं हमारे पास, बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में
1: जी
0: जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में हम, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: जी ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ, कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया।
5: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिव्यानगी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। श्रोताओं, अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 7088000731 पर लिख भेजें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत की बोल। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में ये पहली फरमाइश हम तक पहुंच गई है और ये पहली फरमाइश है चंडीगढ़ से सतीश अनीजा और विमला अनीजा की। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से आप हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये फरमाइश हम तक पहुंची है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान की। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। भोपालगढ़ राजस्थान से ये फरमाइश है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से ये फरमाइश है मोहम्मद रफीक पवार, शाकिब पवार, कौशिक बी पवार और मोइनू छोटू पवार की। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप हैं रिजवान आयशा। फजालिका पंजाब से ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल, शालिनी, टिवाना, शिका। और मस्तानपुरा से आप हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत दिलजले फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है एकता कॉलोनी रोहतक से। आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता पोर्ट, निखिल कांगड़ा, तन्वी पोर्ट और अंकित कांगड़ा की। कस्बा चिलकाना से आप हैं नदीम अंसारी, आयशा, अजीम शान, आलिया अंसारी, अरहम अंसारी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से मुंगीसापुर से ये फरमाइश हम तक पहुंची है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरों निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश की। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। जलालाबाद वेस्ट से ये फरमाइश है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की। गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से ये मैसेज हम तक पहुंचा है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। शेरवानी स्कूल गंज रडवाड़ा यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से ये फरमाइश है बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सिफान, बिटिया आलिशा, शकील सिद्दीकी, मोहम्मद यासिन अंसारी और सुदेश चौहान की। अगला मैसेज रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे पास पहुंचा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का और ये फरमाइश है।

शांति निवास लेहगांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और दीपक कुरहाड़े। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से ये मैसेज है। रेखा रघुवंशी, पूजा बबीता, नंदिनी लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा, कुमारी वंदना का। सदर बाजार कुरावली से अगला मैसेज हमें मिला है। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत दोस्ताना फिल्म से। आवाज़ है किशोर कुमार और आशा भोसले की।

व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हमें मैसेज कर रहे हैं भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण पौरुष और रामगढ़ कैंट से ये मैसेज हम तक पहुंचा है महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल का। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना का ये मैसेज हम तक पहुंचा है लदावली जिला मुरादाबाद से। और ग्राम दुल्हापुर यूपी से हमें मैसेज कर रहे हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। पटियाला रोड गंजडवाड़ा से ये फरमाइश हम तक पहुंची है आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फाजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। जमशेदपुर झारखंड से ये फरमाइश है सुपाही साही, देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली देवेन जी की और दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं। भटिंडा रोड मंडी डब्बादी से ये फरमाइश है राजेश नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से ये फरमाइश हम तक पहुंची है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर की। सनावत से हमें मैसेज कर रहे हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। एमएलबी रोड ग्वालियर से ये फरमाइश हम तक पहुंची है सुरेश खुराना पंपी, किरण खुराना, लव्या आरफ खुराना और एसके पंपी। और अगली फरमाइश है कॉलोनी करगेना बरेली यूपी से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शुगन, शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह की। और अगला मैसेज हमें पहुंचा है करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से, आप हैं परेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजीत की। और ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं गांव व डाकघर निमानाबाद जिला जींद हरियाणा से, आप हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरमीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत खानदान फिल्म से, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से आप हैं। रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। गणेशपुर गंज नडवाड़ा एटा यूपी से ये फरमाइश है। एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। गांव खरकड़ा चौबीसी से ये फरमाइश है गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा की। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से आप हैं सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम। वड़िंगखेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से ये फरमाइश राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन जुवान और आर के राजा की। झज्जर हरियाणा से ये फरमाइश हम तक पहुंची है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। करूला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और सिंधौली बरेली से ये मैसेज है जिशान वारसी का। जैन मंदिर वाली गली कुरवाली से हमें फरमाइश पहुंचाई है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और ये फरमाइश है मुजफ्फरनगर यूपी से रशीद मंसूरी, अयान मंसूरी और सयान मंसूरी की। शेरकोट बिजनौर से ये मैसेज हम तक पहुंचा है नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल जी की। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत आपकी खातिर फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर और बप्पी लहरी की।
3: प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो,
4: गाड़ी में मेरे संग

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Makinam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. He emphasized that for international partnerships, needed to prioritize dialogue and diplomacy for ensuring peace and stability. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of G7 summit in Avignon, France. Tomorrow, a key engagement during the summit will be PM Modi's meeting with US President Donald Trump. The two leaders are expected to discuss ways to further strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, besides exchanging views on important regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today held a high-level agriculture review meeting in New Delhi and conducted a detailed review of preparations across the country for the Kharif 2026 season. The Agriculture Ministry said in a statement that in context of possible El Nino conditions, he placed special emphasis on increasing cotton production, achieving self-reliance in pulses and advanced contingency plans for low rainfall districts. Home Minister Amit Shah today chaired a crucial meeting in New Delhi during which consensus was reached among six states on the long-pending Kishar multi-purpose dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. The Home Minister said in a statement, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Kishar project will be placed before the Union Cabinet for approval. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today announced that the historic Eastern Frontier Rifles EFR will soon be revived with more than 1,000 Gorkha youths to be recruited into the force. Addressing a public rally in Kursiong under Darjeeling District to accord a grand welcome to the newly elected Chief Minister in the Darjeeling Hills, Mr. Adhikari paid tribute to the valour and sacrifices of Gorkha soldiers in defending the nation. India and Japan have adopted the rules of implementation for the Joint Crediting Mechanism or JCM under Article 6.2 of the Paris Agreement for enhancing cooperation on climate action, greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran today said that the deal to end the war with the United States would also require Israel to withdraw from Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. In the FIFA World Cup 2026, France will take on Senegal in Group 1 clash at New Jersey in the United States tonight. And that is the end of this news bulletin.